मातृवंदना के बाद प्रभाती वंदना कार्यक्रम की अगली भेंट में प्रस्तुत है मधुप मुदगल की गाई भजन, राम राम रोम रोम मन चित्त राम राम।

0: जगजीत सिंह के गाए इस कृष्ण भजन के साथ ही प्रभाती वंदना कार्यक्रम अब यहीं समाप्त होता है। ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। 5:55 हुए हैं। प्रस्तुत है अग्री टिप्स।
1: किसान भाइयों, आइए आज हम कुछ बातें करें एक ऐसे पौधे की जिसके बारे में हम सभी जानते हैं और हमारे इन द्वीपों में ये पौधा बहुतायत में पाया भी जाता है, लेकिन इसकी उपयोगिता से हम लगभग अनभिज्ञ हैं। जी हाँ, हमारा इशारा है रतनजोत यानी जमाल घोटे के पौधे के बारे में। जमाल घोटे के पौधे की खेती किसानों को ऊर्जा के बारे में स्वावलंबी बनाने में महत्वपूर्ण योगदान दे सकती है, किंतु इसके बारे में अभी आवश्यकता है अनुसंधान कार्यों की, लोगों में इसके महत्व को उजागर करने की तथा इसकी खेती को लोकप्रिय बनाने हेतु किसानों को प्रोत्साहित करने की। जमाल घोटे के पौधे की लगभग 9 प्रजातियां हमारे देश में पाई जाती है। ये एक बहुवर्षीय और शीघ्र बढ़ने वाला पौधा होता है। इसकी ऊंचाई 3 से 4 मीटर तक होती है। छाल बारीक कागज जैसी परत में सूखकर उतरती है। तने और पत्तियों को तोड़ने पर सफ़ेद रंग के दूध जैसा पदार्थ जिसे लैटेक्स कहते हैं निकलता है। इसकी पत्तियां 10 से 15 सेंटीमीटर लंबी, पीले हरे रंग की, चिकनी और हृदय के आकार की होती है। फूल शाखाओं के अंतिम सिरे पर खिलते हैं। इसका फल हरे रंग के कैप्सूल की तरह गोल होता है तथा फल का व्यास 2.5 से 4 सेंटीमीटर होता है। फल पकने पर इसका रंग पीला होकर काला हो जाता है। गुच्छों में लगभग 3 से 4 बीज होते हैं एक फल में। किसान भाइयों, रतनजोत यानी जमाल घोटे के पौधे के कई गुण होते हैं। इसके बहुत सारे उपयोग हैं। सबसे पहला, अखाद्य तेल के स्रोत के रूप में। इसके बीज से निकला तेल साबुन व मोमबत्ती बनाने एवं मशीन में ऑयलिंग करने के काम में आता है। इसका तेल प्रकाश करने के काम में भी आता है और ये धुआं नहीं देता। इसके विभिन्न उत्पादों को रासायनिक पदार्थ, रंग, कॉस्मेटिक्स, वार्निश, कीटनाशक, पशु व कुक्कुट आहार बनाने में प्रयोग में लाया जाता है। डीजल के विकल्प के रूप में भी इसका प्रयोग होता है। विभिन्न परीक्षणों से यह ज्ञात हो चुका है कि रतनजोत के तेल का उपयोग सीधा डीजल के रूप में भी किया जा सकता है, किंतु डीजल का भाव अपेक्षाकृत कम होने तथा कुछ तकनीकी कारणों से तेल का उपयोग डीजल के रूप में आमतौर पर प्रचलित नहीं हो पाया है। हालांकि आपातकाल में इसका डीजल के विकल्प के रूप में उपयोग कारगर है। खेत के चारों ओर इसे पास पास लगाने से ये एक जैव बाड़ का काम भी करती है, जो कि तारबंदी की अपेक्षा काफी किफायती भी है। इसके बीच में

0: अन्य फसलें बोकर जानवरों तथा तेज हवाओं से फसलों की रक्षा कर सकते हैं। जमालघोटा का पौधा शीघ्र वृद्धि वाला एवं झाड़ीनुमा होता है, अतः अत्यधिक ढलान वाली जमीन व वा बंजर भूमि पर सघन वृक्षारोपण से भूमि के कटाव को भी हम रोक सकते हैं। जमालघोटे के बीज से तेल निकालने के पश्चात बची हुई खली से बायोगैस संयंत्र सफलतापूर्वक चलाया जा सकता है एवं बायोगैस संयंत्र से निष्कासित खली को खाद के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। इसकी खली में नाइट्रोजन 3.2%, फास्फोरस 1.4% एवं पोटाशियम 1.2% उपस्थित होता है। वर्ष में एक बार ये पौधा अपने सारे पत्ते गिरा देता है, जो कि एक अच्छी खाद का कार्य करता है। किसान भाइयों, जमालघोटे में जेट्रोफिन नामक तत्व पाया जाता है, जिसमें कैंसर प्रतिरोधी क्षमता होती है। साहित्य में जमालघोटे का कैंसर संबंधी उपचार में उल्लेख किया गया है। इसका तेल त्वचीय रोगों जैसे दाद, खाज, खुजली, गठिया, पक्षघात आदि में उपयोगी पाया गया है। इसके दूध से असाध्य जख्म भरे जा सकते हैं। इसे दंत रोगों में तथा मसूड़ों पर लगने वाले मसूड़ों की सूजन दूर करने में भी काम में लाया जाता है। पत्ती के रस का उपयोग भी कुछ रोगों के उपचार में किया जाता है। हाँ तो किसान भाइयों, उम्मीद है कि अभी आप जमालघोटे की जो उपयोगिता है इससे ज़रूर वाकिफ हो गए होंगे। कल के हमारे अंक में हम चर्चा करेंगे जमालघोटे के फसल उत्पादन प्रौद्योगिकी के संदर्भ में।
1: आकाशवाणी के श्री विजयपुरम से अभी आप सुन रहे थे अग्री टिप्स। सवेरे के 6 बजने वाले हैं। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे समाचार, जिसे हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। कृपया प्रतीक्षा करें।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मनोज। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर आज नई दिल्ली में क्वाड देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक की मेजबानी करेंगे। बैठक में ऑस्ट्रेलिया की विदेश मंत्री पेनी वांग, जापान के विदेश मंत्री तोशीमित्सु मोतेगी और अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो हिस्सा लेंगे। बैठक में क्वाड सहयोग को आगे बढ़ाने, विभिन्न पहलों की प्रगति की समीक्षा करने और हिंद प्रशांत क्षेत्र से जुड़े ताजा घटनाक्रमों पर चर्चा होगी। खुले और समावेशी हिंद प्रशांत क्षेत्र के क्वाड के दृष्टिकोण के अंतर्गत विदेश मंत्री पिछले वर्ष वाशिंगटन में हुई चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से 3 दिन की सिक्किम यात्रा पर रहेंगी। राष्ट्रपति आज शाम गंगटोक में नामग्याल तिब्बत विज्ञान संस्थान जाएंगी। श्रीमती मुर्मू का कल नाथुला दर्रे का दौरा करने का कार्यक्रम है। यात्रा के अंतिम दिन राष्ट्रपति गंगटोक में सिक्किम पुलिस को राष्ट्रपति पुलिस ध्वज प्रदान करेंगी। श्रीमती मुर्मू ने कल राष्ट्रपति भवन में आयोजित नागरिक अलंकरण समारोह में वर्ष 2026 के लिए 66 जानी मानी हस्तियों को पद्म पुरस्कारों से सम्मानित

0: किया। इनमें से दो हस्तियों को पद्म विभूषण, 6 को पद्म भूषण और 58 को पद्मश्री से सम्मानित किया गया। गृह मंत्री अमित शाह अगले कुछ दिन सीमावर्ती क्षेत्रों का दौरा करेंगे। श्री शाह 2 दिन की यात्रा पर आज राजस्थान के बीकानेर पहुंच गए हैं। इस दौरान उनका सशस्त्र बलों से बातचीत करने और उनके लिए कल्याणकारी योजनाओं का उद्घाटन करने का कार्यक्रम है। 29 मई को श्री शाह गुजरात जाने का कार्यक्रम है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने पश्चिम एशिया संघर्ष के चलते ईंधन, उर्वरक और विदेशी मुद्रा पर विशेष ध्यान देने का आह्वान किया। श्रीमती सीतारामन ने मुंबई में लघु उद्योग विकास बैंक की 37वीं वर्षगांठ समारोह में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम क्षेत्र के व्यवस्था को मजबूत करने और ग्रामीण उद्योगों के आधुनिकीकरण में तेजी लाने के उद्देश्य से कई पोर्टल और पहलों का शुभारंभ किया। आयुष मंत्री प्रताप राव जाधव ने कहा है कि सरकार योग और प्राकृतिक चिकित्सा के माध्यम से चिकित्सा सेवाओं को मजबूत कर रही है। नई दिल्ली में आयुष मंत्रालय की संसदीय सलाहकार समिति की बैठक में श्री जाधव ने कहा कि योग और प्राकृतिक चिकित्सा भारत की प्राचीन पद्धति है और अब ये वैश्विक स्वास्थ्य अभियान का महत्वपूर्ण हिस्सा बन रहे हैं। श्री जाधव ने बताया कि देशभर में प्राकृतिक चिकित्सा और योग विज्ञान के 70 से अधिक कॉलेज तथा 5000 से ज्यादा योग प्रशिक्षण संस्थान हैं। नागर विमानन महानिदेशालय ने कांगो और युगांडा में इबोला संक्रमण फैलने के बाद एयरलाइन के लिए नई एसओपी जारी की है। महानिदेशालय ने कहा है कि इन देशों से आने वाले यात्रियों के लिए विमान से उतरने से पहले यात्री जानकारी फॉर्म भरना अनिवार्य होगा। उड़ान के दौरान यात्रियों को बुखार, कमजोरी, उल्टी या दस्त जैसे लक्षण होने पर तुरंत विमान कर्मियों और भारत पहुंचने पर स्वास्थ्य अधिकारियों को जानकारी देने के निर्देश दिए गए हैं। एयरलाइन को मास्क, पीपीई किट, दस्ताने और सैनिटाइजर जैसी जरूरी सामग्री का पर्याप्त भंडार रखने को कहा गया है। उत्तर प्रदेश सरकार ने नई ग्राम पंचायतों के गठन तक निवर्तमान ग्राम प्रधानों को ग्राम पंचायतों का प्रशासक नियुक्त किया है। राज्य की ग्राम पंचायतों का कार्यकाल आज समाप्त हो रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर ये प्रधान कल से प्रशासक के रूप में काम करेंगे। जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में गोंडोला रोप वे में तकनीकी खराबी आने के बाद फंसे सभी पर्यटकों को सुरक्षित बचा लिया गया है। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने घटना की जांच के आदेश दिए हैं। आईपीएल क्रिकेट के क्वालिफायर 1 मुकाबले में आज मौजूदा चैंपियन रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का सामना गुजरात टाइटंस से होगा। मैच धर्मशाला में शाम 7:30 बजे शुरू होगा। इस मुकाबले की विजेता टीम सीधे फाइनल में पहुंचेगी, जबकि हारने वाली टीम को क्वालिफायर 2 में एक और मौका मिलेगा। मोहाली में कल एलिमिनेटर मुकाबले में सनराइजर्स हैदराबाद का सामना राजस्थान रॉयल्स से होगा। और भारत ने कल गोवा में सैफ महिला फुटबॉल चैंपियनशिप के ग्रुप बी मुकाबले में मालदीव को 11-0 से हरा दिया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashvani. The news read by Nina Rakel. External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar will host the Quad Foreign Ministers meeting in New Delhi today. Foreign Minister of Australia Penny Wong, Foreign Minister of Japan Toshimitsu Motegi and U.S. Secretary of State Marco Rubio will participate in the meeting. The ministers will exchange views on advancing Quad cooperation across priority areas, review progress on ongoing Quad initiatives, and reflect on recent developments in the Indo-Pacific region and other international issues of mutual concern. The foreign ministers of Australia and Japan arrived in Delhi yesterday. U.S. Secretary of State Marco Rubio had arrived for a 4-day visit to India on the 23rd of this month. More from our correspondent.
2: The foreign ministers' meeting this year comes at a time of global uncertainty and West Asia crisis. The Quad, comprising India, the US, Australia and Japan, has emerged as a key grouping largely focusing on peace, security and stability in the Indo-Pacific region. The Quad nations have come together with a commitment to work as a force for global good and to support an open, free and inclusive Indo-Pacific that is prosperous and resilient. Quad has adopted

0: reached Bikaner in Rajasthan last night. Home Minister will visit the BSF Sanchu border outpost this morning, where he will interact with the security forces personnel and inaugurate welfare schemes for them. In the afternoon, he will review the security situation in the border region in Bikaner. Directorate General of Civil Aviation, DGCA, has issued a standard operating procedure for airlines following the World Health Organization's declaration of the Ebola disease outbreak in the Democratic Republic of Congo and Uganda as the public health emergency of international concern. The DGCA said airlines operating connectivity with Uganda and Congo are required to ensure mandatory filing and collection of self-declaration forms before passengers disembark. In Jammu and Kashmir, all tourists stranded in cabins of the Gulmarg gondola ropeway have been rescued safely after a major technical snag halted operations at the famous tourist resort. Officials said more than 300 tourists were trapped inside 65 cabins of the cable car, some hanging nearly 500 feet above the ground, triggering panic among tourists, including women and children. Emergency evacuation protocols were activated immediately. U.S. President Donald Trump has said that any agreement to end the Iran war should include a requirement for several additional countries, including Saudi Arabia, to join the Abraham Accords. In a post on Truth Social, U.S. President Donald Trump said negotiations with Iran are proceeding nicely. However, he warned it will only be a great deal for all or no deal at all, adding that failure to reach an agreement could mean back to the battlefront and shooting, but bigger and stronger than ever before. He also linked any potential deal with Tehran to the expansion of the Abraham Accords, calling it a possible historic event for West Asia. In football, India thrashed Maldives 11-0 in their opening Group B match of the SAF Women's Championship in Margao, Goa yesterday. India will now face Bangladesh in the next match on Sunday. In IPL playoff cricket, defending champions Royal Challengers Bengaluru will take on Gujarat Titans in qualifier 1 in Dharamshala today. And that is the end of this news bulletin.
1: ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है. समय हुआ है सवेरे के 6:11. अब सुनिए जहाज आने सेवा निदेशालय से प्राप्त सूचना के अनुसार जलियानों का यात्रा कार्यक्रम. जलियान सिंधु कल 27 मई को सवेरे 9 बजे श्री विजयपुरम से ननकौरी होते हुए कैमलबे के लिए रवाना होगा और 29 मई को सवेरे 8 बजे कैमलबे से चलकर ननकौरी होते हुए श्री विजयपुरम की वापसी करेगा. एमवी कालीघाट कल 27 मई को सवेरे 7 बजे श्री विजयपुरम से ननकौरी करचाल तरिसा चौरा कार्निकुबार और लिटिल नम्मान होते हुए कैमलबे की यात्रा करेगा और 30 मई को रात्रि 8:30 पर कैमलबे से छूटकर इन्हीं रास्तों से होते हुए श्री विजयपुरम पहुंचेगा. और अब आज होने वाली यात्राएं. एमवी बाराटांग शहीद द्वीप की यात्रा पर श्री विजयपुरम से आज दिन के 11 बजे प्रस्थान करेगा और दोपहर 1 बजे शहीद द्वीप से स्वराज द्वीप के लिए रवाना होगा. स्वराज द्वीप से श्री विजयपुरम के लिए इस जलयान की वापसी होगी आज ही दोपहर बाद 2:30. स्वराज द्वीप की यात्रा पर एमवी नॉर्थ पैसेज आज दिन के 11:30 श्री विजयपुरम से रवाना होगा और दोपहर बाद 2 बजे स्वराज द्वीप से शहीद द्वीप की यात्रा करेगा. श्री विजयपुरम के लिए इस जलयान की वापसी यात्रा होगी शहीद द्वीप से आज ही दोपहर बाद 3:30. एमवी रानीचंगा आज दोपहर बाद 2:30 शहीद द्वीप की यात्रा करेगा. जलयान श्री विजयपुरम से चलेगा और आज ही शाम 4:30 शहीद द्वीप से श्री विजयपुरम की वापसी करेगा. एमवी कमोटा आज शाम 5 बजे श्री विजयपुरम से स्वराज द्वीप के लिए रवाना होगा और कल सवेरे 5:30 स्वराज द्वीप से चलकर शहीद द्वीप होते हुए श्री विजयपुरम लौटेगा. अब सुनिए कल होने वाली यात्राओं की सूचना. एमवी जॉली बॉय कल सवेरे 6 बजे श्री विजयपुरम से लॉन्ग आइलैंड और स्वराज द्वीप होते हुए रंगत की यात्रा

करेगा और कल ही दोपहर 12 बजे रंगत से चलकर इन्हीं रास्तों से होते हुए श्री विजयपुरम की वापसी करेगा। शहीद द्वीप की यात्रा पर एमवी बाराटांग कल सवेरे 6:15 पर श्री विजयपुरम से रवाना होगा और कल ही सवेरे 8:30 पर शहीद द्वीप से श्री विजयपुरम लौटेगा। कल सवेरे 6:15 पर एमवी नॉर्थ पैसेज स्वराज द्वीप के लिए प्रस्थान करेगा। जलियान श्री विजयपुरम से चलेगा और कल ही सवेरे 8:45 पर स्वराज द्वीप से श्री विजयपुरम के लिए इसकी वापसी होगी। और एमवी रानी लक्ष्मी कल सवेरे 7 बजे श्री विजयपुरम से शहीद द्वीप स्वराज द्वीप स्ट्रेट आइलैंड कदमतला और लॉन्ग आइलैंड होते हुए रंगत के लिए रवाना होगा और परसों सवेरे 7 बजे रंगत से चलकर इन्हीं रास्तों से होते हुए श्री विजयपुरम की वापसी करेगा। ये था जहाजरानी सेवा निदेशालय से प्राप्त सूचना के अनुसार जलियानों का यात्रा कार्यक्रम।

0: ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। समय हुआ है सवेरे के 6:15। पेश है इंद्रधनुष कार्यक्रम।
1: इंद्रधनुष। नमस्कार, सुप्रभात। आप सुन रहे हैं कार्यक्रम इंद्रधनुष। श्रोताओं, इन दिनों अंडमान में मानसून ने धीरे धीरे अपनी दस्तक देनी शुरू कर दी है। सुबह की ठंडी हवाएं, बादलों से गिरा आसमान और कभी हल्की तो कभी तेज बारिश, मानो पूरा मौसम ही कोई प्यारी सी कहानी सुना रहा हो। और सच कहें, अंडमान का मानसून सिर्फ एक मौसम नहीं होता, ये एक एहसास होता है समुद्र की लहरों के साथ, भीगी सड़कों के साथ और उन बादलों के साथ जो कभी चुपचाप आते हैं और दिल को छू कर चले जाते हैं। वैसे बादल भी ना कभी बिना बताए आ जाते हैं और कभी बिना बताए चले भी जाते हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे हमारी जिंदगी के प्लान्स। तो चलिए आज बारिश और बादलों की इसी खूबसूरत मौसम के साथ कुछ दिल की बातें करते हैं, क्योंकि कभी कभी मौसम हमें वो सिखा जाती है जो बड़ी बड़ी किताबें भी नहीं सिखा पाती। कभी आपने ध्यान दिया है, बादल कभी एक जैसे नहीं रहते, कभी हल्के कभी घने, कभी बरसते हुए और कभी बस चुपचाप गुजर जाते हैं। जिंदगी भी कुछ ऐसी ही होती है, कभी सब कुछ अच्छा चलता है और कभी अचानक बहुत कुछ बदल जाता है। दोस्त दूर हो जाते हैं, बातें कम हो जाती हैं और मन थोड़ा उदास रहने लगता है, लेकिन शायद बदलाव ही जिंदगी की सबसे खूबसूरत सच्चाई है, क्योंकि अगर सब कुछ हमेशा एक जैसा रहे तो शायद जिंदगी भी बोरिंग हो जाए। और ऐसे ही मौसम में याद आता है एक प्यारा सा गीत।

कभी कभी सिर्फ एक अच्छा गीत चेहरे पर हल्की सी मुस्कान ले आता है और एहसास दिलाता है कि बादल बदलते हैं, तभी तो आसमान खूबसूरत लगता है। फिर बारिश शुरू होती है और हर बूंद जैसे मन का बोझ थोड़ा हल्का कर देती है, जैसे पहली बारिश जो गर्मी के बाद सुकून दे जाती है, और तभी दिल गुनगुनाने लगता है।

धीरे धीरे समय आगे बढ़ता है, नई बातें होती है, नए लोग मिलते हैं और हम खुद को फिर से संभालना सीख जाते हैं। फिर एक रात बारिश के बाद आसमान साफ हो जाता है और चांद बादलों के बीच छुप छुप कर खेलता हुआ दिखाई देता है, बिल्कुल वैसे जैसे बारिश के बाद रातें और भी खूबसूरत लगने लगती है।

0: तो दोस्तों, जैसे बादल बदलते रहते हैं वैसे ही जिंदगी भी बदलती रहती है। कभी खुशियाँ कभी उदासी, लेकिन हर बदलाव अपने साथ कुछ नया लेकर आता है। तो अगर आज आपकी जिंदगी में भी बादल छाए हुए हैं तो घबराइए मत, बस थोड़ा सा इंतजार कीजिए, क्योंकि हर बारिश के बाद मौसम साफ जरूर होता है। और हाँ, अगर आज सुबह आपके घर की खिड़की पर भी बारिश की बूंदे दस्तक दे रही हो तो एक गर्म चाय के साथ मौसम का मजा जरूर लीजिएगा। इसी खूबसूरत बारिश भरे मौसम और ढेर सारी मुस्कुराहटों के साथ, और अब मैं लेना चाहूंगी आपसे इजाजत। नमस्कार।
1: इंद्रधनुष। अभी आप बादल शीर्षक पर केंद्रित इंद्रधनुष कार्यक्रम सुन रहे थे। प्रस्तुत कर रही थी श्री विद्या। ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। 6:30 हुए हैं। सुनते हैं रामचरितमानस गान की 250वीं कड़ी।

पंचवटी में निवास करते हुए श्री राम ने अनुज लक्ष्मण को ज्ञान, वैराग्य, माया, ईश्वर और जीव के भेद आदि का रहस्य बताया। इस प्रकार नीति की कथाएं कहते सुनते कुछ दिन बीते थे कि एक दिन शूर्पणखा वहां पहुंची। वो लंकापति रावण की बहन थी, नागिन के समान भयानक और दुष्ट हृदया। पंचवटी में दो सुंदर राजकुमारों को देख धर्म ज्ञान रहित वो नारी काम से विकल हो गई। सुंदर नारी का रूप धारण करके शूर्पणखा ने श्री राम से प्रणय निवेदन किया। विनोद में राम ने उसे लक्ष्मण के पास जाने को कहा। लक्ष्मण ने अपने को दास तथा पराधीन बताते हुए उसे पुनः श्री राम के पास जाने को कहा। श्री राम ने एक बार फिर लक्ष्मण से प्रणय निवेदन करने को कहा। लक्ष्मण ने अब उसे वास्तविकता बताई। तुझे वही वरेगा जो निपट निर्लज्ज होगा। खिसियाकर वो श्री राम के पास गई और उसने अपना भयंकर रूप प्रकट किया। सीता जी को भयभीत देख श्री रघुनाथ जी ने लक्ष्मण को इशारा किया। श्री राम से इशारा पाकर लक्ष्मण ने शूर्पणखा को बिना नाक कान के कर दिया।

अभी आप सुन रहे थे उत्तरा केलकर के स्वर और सतीश भाटिया के संगीत संयोजन में रामचरितमानस गान की 250वीं कड़ी। ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। 6:40 हुए हैं। सुनते हैं वतन के गीत कार्यक्रम के तहत कुछ देशगान।

अभी आप वतन के गीत कार्यक्रम के तहत संवेद स्वरों में सुन रहे थे देशगान। ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। समय हुआ है सवेरे के 6:50। अब एक नज़र आज के मौसम के मिजाज पर।

कोलकाता स्थित मौसम विभाग से मिली जानकारी के अनुसार जन सेवाओं के लिए मौसम संबंधी चेतावनी में बताया गया है कि अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह के अधिकांश भागों में गरज के साथ बिजली चमकने की संभावना है। इस दौरान हवा की रफ्तार 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटा रहेगी, जबकि मछुआरों के लिए कोई विशेष चेतावनी नहीं है। कल सवेरे तक के मौसम संबंधी पूर्वानुमान में बताया गया है कि अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह में एक या दो स्थानों पर 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलने और बिजली गिरने के साथ साथ गरज के साथ वर्षा होगी। ये था आज का मौसम का मिजाज। अब सुनिए हमारे केंद्र से प्रसारित किए जाने वाले इस सभा के और सांदी सभा के कार्यक्रम की रूपरेखा। आज सवेरे 7:15 पर देशभक्ति गीतों पर आधारित कार्यक्रम आप सुनेंगे देश रागिनी, जबकि इसी समय एफएम 100.9 मेगाहर्ट्ज पर हम प्रसारित करेंगे विविध भारती मुंबई से प्रायोजित कार्यक्रम भूले बिसरे गीत। 7:30 पर प्राइमरी चैनल और एफएम 100.9 मेगाहर्ट्ज पर सुना जा सकता है गुड मॉर्निंग अंडमान के तहत खेल जगत कार्यक्रम में श्री कर्मा टोपो के साथ ली गई भेंट वार्ता का पुनः प्रसारण। चप्पू और खेल, हौसलों का मेल, भेंट करता होंगी जयशीला। सुगम संगीत के तहत 8:30 पर सुनेगा अनुराधा पौडवाल और हरिहरन को। तराने सुहाने कार्यक्रम होगा सुबह 9:00। 9:30 पर शास्त्रीय संगीत के तहत आज हम आपको सुनवाएंगे एन रमणी का कर्नाटक शैली में बांसुरी वादन। भरपूर आनंद लीजिएगा फिल्मी गीतों का। सुबह 10:00 कार्यक्रम होगा गीत गाता चल। प्रायोजित कार्यक्रम एनसीईआरटी सुनवाई जाएगी दिन के 11:00। आप सुनेंगे 11:30 पर कार्यक्रम चित्र गीत। दोपहर 12:00 का समय होगा कि तेलुगु कार्यक्रम का, जिसमें आप सुनेंगे फिल्मी गीत। मलयालम कार्यक्रम हम प्रसारित करेंगे दोपहर 12:30 पर, जिसके तहत सुना जा सकता है थीम पर आधारित फिल्मी गीत। सुनेगा दोपहर 1:10 पर सुगम संगीत के तहत जगजीत सिंह और चित्रा सिंह को। और दोपहर 1:30 पर होगा कार्यक्रम आपके नाम फिल्मी पैगाम। दोपहर 2:30 पर मौसम की जानकारी के बाद प्राइमरी चैनल पर हमारी पहली सभा समाप्त होगी, जबकि एफएम 100.9 मेगाहर्ट्ज़ पर

हमारी स्थानीय सभा जारी रहेगी, जिसमें पहले आप सुनेंगे नॉनस्टॉप म्यूजिक और 3:30 पर फिल्मी गीतों का विशेष कार्यक्रम यूं ही गाते रहो। हम आपसे पुनः जुड़ेंगे प्राइमरी चैनल पर शाम 4 बजे निकोबारी कार्यक्रम के साथ, जिसमें होंगी सूचनाएं और स्पेशल सिंगर्स द्वारा प्रस्तुत गीत। 4:30 पर सुगम संगीत के तहत आप सुन पाएंगे रूप कुमार राठौर, सोनाली राठौर, सविता चौधरी और सुलक्षणा पंडित को। हमारे केंद्र से प्रसारित किए जाने वाले कार्यक्रम का विवरण दिया जाएगा 4:40 पर, और 4:45 पर होगा कार्यक्रम बहारों की शाम। तमिल के तहत शाम 5 बजे आप सुन पाएंगे महिलाओं के लिए कार्यक्रम महालीर उलगम। 5:30 पर होगा बंगला कार्यक्रम। किसान वाणी कार्यक्रम के तहत न्यू वंडूर की महिला श्रीमती सुखलता पहन के साथ की गई बातचीत। कृषि और ग्रामीण विकास संध्या 6 बजे। फिल्मी गीतों का कार्यक्रम होगा शाम में बाहर 6:30 पर। मौसम की जानकारी, जलियानों का यात्रा कार्यक्रम और जन सूचनाएं दी जाएंगी 7:15 पर। इन कार्यक्रमों के अलावा हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे 8:45 पर समाचार संध्या, 9 बजे न्यूज़ एट 9, 9:30 पर मनी टॉक और 9:45 पर कार्यक्रम मंथन। ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। 6:55 होने को है। अब सुनिए संस्कृत में समाचार हमारे दिल्ली केंद्र से।

0: सार्वजनिक स्वास्थ्य आपातकालत्वेन घोषितम्। एतदन्तरं नागर विमानन महादेशालयेन विमान विपणीनां कृते एका मानक संचालन प्रक्रिया प्रसारिता। अत्रावधेयास्पदं वर्तते यत् विमानेषु अनिवार्य रूपेण पदक्षेपाः विहितव्याः भविष्यन्ति। यथा इबोला संकटं दृष्ट्वा यदि कस्यापि यात्रिणः ज्वरः, दौर्बल्यं, पीड़ा, शिरोवेदना, कंठदाहः, वमनम् इत्यादीनि लक्षणानि दृश्यन्ते तर्हि सः सद्यः एव विमान कर्मचारिभ्यः आगमानन्तरं चिकित्सा विभागेभ्यः सूचयेत्। महानिदेशालयेन स्पष्टीकृतं यत् भारते आगमनात् एकविंशतिदिनानां मध्ये यदि एतादृशानि लक्षणानि उत्पद्यन्ते तर्हि यात्रिणः निर्दिष्टचिकित्सालयेभ्यः चिकित्सासाहाय्यं प्राप्नुयुः। भारतीय ऋतु विज्ञान विभागेन अद्य यावत् मध्यप्रदेश, ओडिशा, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, विदर्भ क्षेत्रेषु उष्ण स्थितिमुद्दिश्य रेड अलर्ट इति रक्तवर्णीय संचेतना प्रसारिता। विभागेन आगामी द्वित्रि दिनेषु हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, पंजाब, उत्तर प्रदेश, राजस्थान राज्येषु तीव्र उष्ण तरंगस्य पूर्व सूचना प्रख्यापिता। एतादृशी एव स्थितिः अद्य यावत् छत्तीसगढ़, तटीय आंध्रप्रदेश, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, झारखंड, उत्तराखंड राज्येषु अपि भवितुं संभाव्यते। आयुष मंत्री प्रताप राव जाधवः अवदत् यत् सर्वकारः योग प्राकृतिक चिकित्सा माध्यमेन कृत्स्नेहि देशे निवारक स्वास्थ्य सेवाः सुदृढीकरोति। नवदिल्ल्यां आयुष मंत्रालयस्य संसदीय परामर्शदात्री समित्याः चतुर्थ उपवेशने अध्यक्षतां कुर्वन् श्री जाधवः अवचत् यत् योगः, प्राकृतिक चिकित्सा च समग्र निवारक स्वास्थ्य सेवायै भारतस्य शाश्वतं योगदानं वर्तते। अस्मिन् उपवेशने भारते योग प्राकृतिक चिकित्सा क्षेत्रस्य विस्तारे, स्वास्थ्य संवर्धन सम्बद्धेषु प्रयासेषु तथा च पारंपरिक चिकित्सा पद्धतीनां वैश्विक प्रसारे च विस्तरेण चर्चा अभवत्। सः अग्रे सूचितवान् यत् सम्प्रति विश्वस्य 90+ देशेषु अन्ताराष्ट्रिय योग दिवसः समारोहः आचर्यते। इति वार्ताः।
1: मीडियम वेव 438.6 मीटर अर्थात 684 किलोहर्ट्ज और एफएम 100.9 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। सवेरे के 7 बजे हैं जन सूचनाएं। आज सवेरे स्थानीय मौसम कार्यालय से मिली जानकारी के अनुसार पिछले 22 घंटों के दौरान श्री विजयपुरम और आसपास के क्षेत्रों में 6 मिलीमीटर वर्षा रिकॉर्ड हुई। आज सवेरे 5:30 बजे सापेक्ष आर्द्रता रही 93% और न्यूनतम तापमान 25.6 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जबकि कल श्री विजयपुरम का अधिकतम तापमान रहा 31.5 डिग्री सेल्सियस। आज सूर्योदय हुआ सवेरे 4:54 पर और सूर्यास्त का समय रहेगा 5:39। अब सुनिए एयर इंडिया से मिली जानकारी के अनुसार हवाई उड़ान संबंधी जानकारी। दिल्ली से आ रहा यात्री विमान संख्या 2937 आज दिन के 11 बजे श्री विजयपुरम पहुंचेगा और विमान संख्या 2936 श्री विजयपुरम से आज दिन के 11:40 पर दिल्ली के लिए अपनी उड़ान संचालित करेगा। ये थी एयर इंडिया से प्राप्त सूचना के अनुसार हवाई उड़ान संबंधी जानकारी। और अब कार्यक्रम संबंधी कुछ जानकारियां। आज सवेरे 7:15 पर देशभक्ति गीतों पर आधारित कार्यक्रम आप सुनेंगे देश रागिनी, जबकि इसी समय एफएम 100.9 मेगाहर्ट्ज पर हम प्रसारित करेंगे विविध भारती मुंबई से प्रायोजित कार्यक्रम भूले बिसरे गीत। 7:30 पर प्राइमरी चैनल और एफएम 100.9 मेगाहर्ट्ज पर गुड मॉर्निंग अंडमान तहत के तहत खेल जगत कार्यक्रम में श्री कर्मा टोपो के साथ ली गई भेंटवार्ता का पुनः प्रसारण आप सुनेंगे। चप्पू और खेल हौसलों का मेल, भेंट करता होंगे।

जयशीला। भरपूर आनंद लीजिएगा फिल्मी गीतों का। सुबह 10 बजे कार्यक्रम होगा गीत गाता चल। मलयालम कार्यक्रम हम प्रसारित करेंगे दोपहर 12:30 पर, जिसके तहत आप सुन सकते हैं थीम पर आधारित फिल्मी गीत। 1:30 पर होगा कार्यक्रम आपके नाम फिल्मी पैगाम।

0: संध्या 7:20 पर हम प्रसारित करेंगे कार्यक्रम दिल ने फिर याद किया। युवाणी में 7:30 पर होगा कार्यक्रम देश की शान। और रात्रि 10 होगा व्हाट्सएप मैसेजेस पर आधारित कार्यक्रम संदेशे आते हैं। ये थी कार्यक्रम संबंधी कुछ जानकारियां। श्रोताओं, 7:05 होने को हैं, कुछ ही पलों में सुनिए प्रादेशिक समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी श्री विजयपुरम से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। बारहवें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर प्रशासन की ओर से विभिन्न कार्यक्रमों के आयोजन किए जा रहे हैं। भारतीय रिजर्व बैंक ने शहरी और ग्रामीण सहकारी बैंकों के निदेशकों के लिए नए संशोधित दिशा निर्देश जारी किए हैं। भारतीय तेल निगम पूरे द्वीप समूह में पेट्रोल, डीजल और LPG की निर्बाध आपूर्ति बनाए हुए है। और MV कैंबल बे 2 जून शाम 4 कोलकाता से श्री विजयपुरम के लिए प्रस्थान करेगा।

सुबह के समाचारों के साथ मैं पूजा सिंह। 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर प्रशासन की ओर से विभिन्न कार्यक्रमों के आयोजन किए जा रहे हैं, जिसमें 21 जून को आयोजित होने वाला योग दिवस शामिल है। कार्यक्रमों में जंगली घाट स्थित आयुष अस्पताल में प्रशिक्षकों के लिए प्रशिक्षण, राष्ट्रीय स्मारक सेलुलर जेल में आज सुबह 8 बजे तक हेरिटेज योग, 28 मई को सुबह 10 बजे से प्रातःपुल जेल में कैदियों के लिए योग सत्र, 30 मई को शाम 5 बजे से मरीना पार्क में चंद्र नमस्कार, चिड़िया टापू में 6 जून को शाम 3:30 बजे से बीच योग, स्ट्रेट आइलैंड में 10 जून को जनजातीय योग शिविर, बम्बू फ्लैट में 12 जून तथा जंगली घाट और भातुबस्ती में 13 जून को सुबह 10 बजे से फ्लैश मॉब, 17 जून को सीआरसी वृक्षाबाद में ऑटिस्टिक बच्चों के लिए योग सत्र जैसी गतिविधियाँ शामिल हैं। 21 जून सुबह 7 बजे से द्वीप समूह के विभिन्न स्थानों पर सामूहिक योग प्रदर्शन किया जाएगा। अधिक जानकारी के लिए चिकित्सा अधिकारी प्रभारी डॉक्टर नंदिनी से संपर्क किया जा सकता है। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने शहरी और ग्रामीण सहकारी बैंकों के निदेशकों के लिए नए संशोधित दिशा निर्देश जारी किए हैं। इसके तहत लगातार 10 वर्ष तक बोर्ड में रहने वाले निदेशकों के लिए विराम अवधि लागू की गई है। इन संशोधन निर्देशकों में आरबीआई शहरी सहकारी बैंक शासन संशोधन निर्देश 2026 और ग्रामीण सहकारी बैंक शासन संशोधन निर्देश 2026 शामिल है। आरबीआई ने कहा कि ये कदम सहकारी बैंकों में बेहतर प्रशासन व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए उठाया गया है। दिल्ली के लाल किला मैदान में जनजातीय सांस्कृतिक समागम के अवसर पर गृह मंत्री अमित शाह ने लगभग 1.5 लाख जनजातियों को संबोधित करते हुए कहा कि ये समागम जनजातियों के महाकुंभ के नाम से जाना जाएगा। गृह मंत्री ने कहा कि ये सांस्कृतिक समागम आने वाले अनेक वर्षों तक जनजातियों के अस्तित्व, अस्मिता और संस्कृति के आंदोलन को नई पहचान देने के रूप में जाना जाएगा। उन्होंने भगवान बिरसा मुंडा के जल, जंगल, जमीन को संरक्षित करने की

प्रयास को सार्वभौमिक बताया। वनवासी कल्याण आश्रम के राष्ट्रीय अध्यक्ष सत्येंद्र सिंह ने कहा कि बिरसा समस्त जनजातियों के भगवान रूपी आदर्श पुरुष हैं। उन्होंने कार्यक्रमों को जनजाति समाज के लिए कुंभ की संज्ञा प्रदान की। इस सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती वर्ष के अवसर पर आयोजित किया गया। इसमें अंडमान निकोबार द्वीप समूह से विशेष प्रतिनिधिमंडल उपस्थित थे। पहाड़गांव थाना ने डॉलीगंज कब्रिस्तान में हुए कत्ल के मामले को सुलझा लिया है। सूचना के अनुसार पीड़ित और आरोपियों के बीच कहासुनी हुई, जिसके दौरान आरोपियों ने पीड़ित के साथ मारपीट की। 36 वर्षीय वीशंकर के बेहोश हो जाने के बाद दोनों आरोपी मौके से फरार हो गए। सूचना मिलते ही थाना पहाड़गांव के प्राथमिकी दर्ज कर तुरंत जाँच शुरू की गई। पुलिस ने एक विशेष जल जाँच दल का गठन कर दो संदिग्धों की पहचान की। पूछताछ के दौरान मायाबंदर निवासी के कृष्णा और हटबे निवासी सागर कुमार खाखा ने अपना जुर्म कबूल कर लिया। ये पूरा मामला थाना प्रभारी इंस्पेक्टर साहिल शमशुद्दीन के नेतृत्व में सुलझाया गया।

पर द्वीप समूह से विशेष प्रतिनिधिमंडल उपस्थित थे। पहाड़गांव थाना ने डॉलीगंज कब्रिस्तान में हुए कत्ल के मामले को सुलझा लिया है। सूचना के अनुसार पीड़ित और आरोपियों के बीच कहासुनी हुई, जिसके दौरान आरोपियों ने पीड़ित के साथ मारपीट की। 36 वर्षीय वीशंकर के बेहोश हो जाने के बाद दोनों आरोपी मौके से फरार हो गए। सूचना मिलते ही थाना पहाड़गांव के प्राथमिकी दर्ज कर तुरंत जाँच शुरू की गई। पुलिस ने एक विशेष जल जाँच दल का गठन कर दो संदिग्धों की पहचान की। पूछताछ के दौरान मायाबंदर निवासी के कृष्णा और हडबे निवासी सागर कुमार खाखा ने अपना जुर्म कबूल कर लिया। ये पूरा मामला थाना प्रभारी इंस्पेक्टर साहिल शमशुद्दीन के नेतृत्व में सुलझाया गया। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी श्री विजयपुरम से सुन रहे हैं। प्रादेशिक समाचार में आपका फिर स्वागत है। भारतीय तेल निगम ने कहा है कि तेल और गैस क्षेत्र को प्रभावित करने वाली मौजूदा वैश्विक अनिश्चितताओं के बावजूद पूरे द्वीप समूह में पेट्रोल, डीजल और एलपीजी की निर्बाध आपूर्ति बनाए हुए है। द्वीप समूह के सभी पेट्रोल पंपों पर निर्धारित सुरक्षा और परिचालन मानदंडों के अनुसार बिना किसी मात्रात्मक प्रतिबंध के सामान्य रूप से ईंधन का वितरण जारी है। नागरिकों तक निर्बाध ऊर्जा पहुंच सुनिश्चित करने के लिए इंडियन ऑयल सभी स्तरों पर इसकी निरंतर निगरानी कर रहा है। विभाग ने उपभोक्ताओं से अपनी आवश्यकता के अनुसार सामान्य रूप से ईंधन खरीदने और ईंधन की उपलब्धता के संबंध में सत्यापित जानकारी के लिए इंडियन ऑयल के आधिकारिक संचार पर ही भरोसा करने की अपील की है। एमवी कैंबल बे 2 जून शाम 4 बजे कोलकाता से श्रीविजयपुरम के लिए प्रस्थान करेगा। इस यात्रा के लिए टिकट आज सुबह 9 बजे से जारी किए जाएंगे। टिकटों की बुकिंग ई टिकटिंग पोर्टल के माध्यम से की जा सकती है। इसके अलावा टिकट स्टार्स टिकटिंग काउंटर से भी खरीदे जा सकते हैं। यात्रियों की सुविधा के लिए QR कोड भी उपलब्ध है। पुदुचेरी विश्वविद्यालय ने मई जून परीक्षा 2026 की समय सारणी जारी कर दी है। इसके अनुसार राष्ट्रीय शिक्षा नीति की परीक्षाएं 29 मई से, स्नातकोत्तर की परीक्षा 1 जून, जबकि CBCS की परीक्षाएं 3 जून से शुरू होंगी। इस संबंध में सभी छात्रों को कॉलेज के प्रवेश एवं परीक्षा शाखा से अपना हॉल टिकट प्राप्त करने को कहा गया है। इसके अलावा छात्र विश्वविद्यालय की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर समय सारणी देख सकते हैं। भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने खतरनाक और अन्य कचरे के सुनिश्चित प्रबंधन के लिए प्रबंधन और सीमा पार संचलन नियम 2016 अधिसूचित किए हैं। इन नियमों के तहत खतरनाक कचरे को उत्पन्न करने वाले, उसका रखरखाव करने वाले, संग्रहकर्ता, प्राप्तकर्ता, प्रसंस्करणकर्ता और परिवहनकर्ता को कचरे का उचित भंडारण, पुनः उपयोग, पुनर्चक्रण, उपयोग और निपटान सुनिश्चित करने को कहा गया है। ऐसी सभी संस्थाओं को नियमों के तहत प्राधिकरण प्राप्त करना आवश्यक है। साथ ही जल और वायु अधिनियमों के तहत स्थापना की सहमति और संचालन की सहमति प्राप्त करना भी अनिवार्य है। द्वीप समूह के भीतर ऐसी गतिविधियों में लगी सभी इकाइयों को ANPCC के ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से आवश्यक प्राधिकरण प्राप्त करना होगा। उल्लंघनकर्ताओं के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। अंडमान निकोबार प्रदूषण नियंत्रण समिति ने सभी हितधारकों से निर्धारित नियमों का कड़ाई से पालन करने की अपील की है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में एक या दो स्थानों पर वर्षा होने की संभावना है। इस दौरान हवा की गति 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलेगी। मौसम विभाग के अनुसार 29, 30 और 31 मई को द्वीपों के एकाध स्थानों पर भारी बारिश होने की संभावना है। खराब मौसम को देखते हुए मछुआरों को समुद्र में न जाने की सलाह दी गई है। आकाशवाणी श्री विजयपुरम से प्रसारित होने वाला ये प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप मीडियम वेव के साथ साथ FM 100.9 MHz पर भी सुन रहे हैं। प्रादेशिक समाचार के अलावा सुबह 9 बजे, 10 बजे और 11 बजे प्रति घंटा समाचार हेडलाइंस FM रेडियो पर भी उपलब्ध है। और अब समाचार पत्रों की सुर्खियां। द डेली टेलीग्राम्स ने राष्ट्रपति द्वारा पद्म पुरस्कार प्रदान करने के समाचार को अपनी बड़ी खबर बनाते हुए सचित्र प्रकाशित किया है। द्वीप समाचार ने भी इस खबर को प्रमुखता दी है। इसके अलावा अखबार ने वाइस एडमिरल अजय कोचर के भारतीय नौसेना में वाइस चीफ ऑफ द नेवल स्टाफ का पदभार ग्रहण करने के समाचार को भी प्रमुखता दी।

0: है। अंडमान एक्सप्रेस अंग्रेजी ने शिवपुरम ग्राम प्रधान द्वारा 80 से अधिक उम्र के पेंशन धारकों के लंबित पड़े पेंशन जारी करने को लेकर उठाए गए मांग के समाचार को अखबार में जगह दी है। इन्फो इंडिया ने जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया में अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस मनाए जाने के समाचार को अपनी पहली खबर बनाई है, जबकि द इको ऑफ इंडिया ने द्वीप समूह कोलकाता के बीच नियमित जहाज सेवा बहाल करने की मांग को प्रमुखता से छापा है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर प्रशासन की ओर से विभिन्न कार्यक्रमों के आयोजन किए जा रहे हैं। भारतीय रिजर्व बैंक ने शहरी और ग्रामीण सहकारी बैंकों के निदेशकों के लिए नए संशोधित दिशा निर्देश जारी किए हैं। भारतीय तेल निगम पूरे द्वीप समूह में पेट्रोल, डीजल और एलपीजी की निर्बाध आपूर्ति बनाए हुए है और एमवी कैंबल बे 2 जून शाम 4 बजे कोलकाता से श्री विजयपुरम के लिए प्रस्थान करेगा। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: मीडियम वेव 438.6 मीटर अर्थात 684 किलोहर्ट्ज पर यह आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। समय हुआ है सवेरे के 7:15। पेश है कार्यक्रम

नमस्कार श्रोताओं, देश रागनी एक ऐसा मंच जहां देशभक्त का एहसास दिलों में उतरती है। श्रोताओं, भारत एक ऐसा गुलदस्ता है जहां पर भाषा, हर संस्कृति, हर रंग मिलकर एकता की खुशबू फैलाते हैं। मज़हब अलग हो सकते हैं, पर तिरंगे के नीचे हर दिल हिंदुस्तानी हो जाता है। सांस है जब तलक न रुकेंगे कदम, चल पड़े हैं तो मंजिल को पा जाएंगे। जान प्यारी नहीं है वतन से हमें, मरते मरते सभी को बता जाएंगे।

जब तिरंगा लहराता है तब दिल में उतरता है केसरिया की वीरता, सफ़ेद की शांति और हरे की उम्मीद, जो हमारे सरों को, दिलों को और एहसासों को भी ऊंचा कर देता है, जो हर सुबह चुपचाप हमें देश के लिए अपनी मेहनत, ईमानदारी और वफादारी के बीज बोने के लिए प्रेरित करता है। हमारे त्याग और जिम्मेदारी की भावना हमें एक सच्चा हिंदुस्तानी बनाती है। हम चले दे चले अपना दिल अपनी जान, ताकि जीता रहे अपना हिंदुस्तान। हम जिए हम मरे इस वतन के लिए, इस चमन के लिए, ताकि खिलते रहें गुल हमेशा यहाँ।

हमारा भारत वो आवाज़ है जो कभी झुकती नहीं, भारत वो आग है जो मुश्किलों में भी बुझती नहीं, और भारत का तिरंगा सिर्फ हमारी पहचान नहीं, हमारी आन बान और शान है। इसी जोश और जुनून और देश प्रेम के एहसास के साथ जाते जाते बस इतना कहना चाहेंगे कि जिस मिट्टी ने हमें पहचान दी, उस मिट्टी का कर्ज कभी मत भूलना, तिरंगे की शान को और हमेशा दिल में हिंदुस्तान को जिंदा रखना। जय हिंद, जय भारत।

0: मीडियम वेव 438.6 मीटर अर्थात 684 किलोहर्ट्स और FM 100.9 मेगाहर्ट्स पर हम आकाशवाणी के श्री विजयपुरम केंद्र से बोल रहे हैं। सवेरे के 7:30 हुए हैं। पेश है गुड मॉर्निंग अंडमान कार्यक्रम।
1: गुड मॉर्निंग अंडमान।

धैर्य से मजबूत कोई शक्ति नहीं, प्रेम से सुंदर कोई भावना नहीं, सत्य से तेज कोई अस्त्र नहीं और ज्ञान से उज्जवल कोई प्रकाश नहीं। नमस्कार, सुप्रभात। मंगलवार की इस मंगल सुबह में गुड मॉर्निंग अंडमान कार्यक्रम के साथ मैं हूं आपकी प्रस्तोता फातिमा। श्रोताओं, आज मंगलवार है। शक संवत 1948 की ज्येष्ठ माह की पांचवी तिथि, तदनुसार 26 मई सन 2026।

श्रोताओं, खेल जीवन के सबसे बेहतरीन शिक्षकों में से एक है। ये हमें विपरीत परिस्थितियों में लड़ना और आगे बढ़ना सिखाता है। संघर्ष करना, गिरना, संभलना और फिर पूरे जोश के साथ आगे बढ़ने का के साथ साथ खेल में हमें सिखाता है अनुशासन, समय की कीमत और मेहनत का असली मतलब। तो चलिए गुड मॉर्निंग अंडमान के तहत खेल जगत कार्यक्रम में सुनते हैं श्री कर्मा टोपो के साथ ली गई भेंट वार्ता का पुनः प्रसारण। चप्पू और खेल, हौसलों का मेल, भेंट कर रही हैं जयशीला।

0: बात करेंगे एक ऐसे ही खेल की जिसमें लहरें होती हैं साथी भी और चुनौती भी, और चप्पू बन जाता है जीत की कुंजी। कयाकिंग और कैनोइंग, पानी पर खेला जाने वाला ये रोमांचक खेल न सिर्फ साहस की मांग करता है, बल्कि इसमें चाहिए धैर्य, संतुलन और जज्बा। इसी खेल को नई ऊंचाइयों तक ले जाने वाले आज हमारे साथ हैं खास मेहमान श्री कर्मा टुप्पो, जो खिलाड़ियों को तैयार कर रहे हैं राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हमारे द्वीपों का नाम रोशन करने के लिए। कर्माकर टुप्पो जी कयाकिंग और कैनोइंग के कोच है। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में।
1: धन्यवाद मैडम, आपने हमको आमंत्रित किया इस खेल को जानने के लिए।
0: तो आइए श्रोताओं जानते हैं कि आखिर चप्पू और खेल का ये मेल किस तरह सपनों को हकीकत में बदलता है। कर्मा टोपो जी, सबसे पहले तो आप बताएं कि ये कयाकिंग और कैनोइंग क्या फर्क है इसमें?
1: मैं आप सबको बताना चाहता हूँ, कयाकिंग और कैनोइंग खेल तो एक ही है, दोनों खेल पानी में ही खेला जाता है, लेकिन इसमें थोड़ा डिफरेंस है। जैसे कि कयाक, आपको मैं बताना चाहता हूँ, कयाक है जो कि सिटिंग पोजीशन में एक छोटी सी नाव होती है, उसमें बैठा जाता है, चप्पू लेते हैं और दोनों हाथ से पकड़ते हैं और इनको दोनों तरफ हम पैडलिंग करते हैं। पैडलिंग माने चप्पू चलाते हैं, नाव के दोनों तरफ चलाते हैं और दोनों तरफ चलाते हुए हम इसको आगे की तरफ धकेलते हैं,
0: जी
1: खींचते हैं और आगे हम अपने जहाँ तक हो सके हम कोशिश करते हैं कि उसको तेज चलाएं। उसमें रडार होता है और बोट को सीधे ले जाने में उसमें हमको मदद मिलता है। उसी तरह कैनोइंग है, कैनोइंग जो कि बहुत थोड़ा डिफिकल्ट है और उसमें रडार नहीं होता है। कैनोइंग ऐसा बोट है जो कि हम अपने ही चप्पू के द्वारा उसको दिशा दिखाना पड़ता है और हमें बैलेंसिंग और ताकत उसमें हमको बहुत कोऑर्डिनेशन करके आगे जाना पड़ता है। तो कैनोइंग नीलिंग पोजीशन में होता है और काफ़ी दिक्कत होता है, उसमें घुटनों के बल बैठ के चलाना होता है। सिंगल साइड ब्लेडेड होता है और बिल्कुल सिंगल साइड चलाया जाता है और उसी सिंगल पैडल से हमको दिशा भी दिखाना पड़ता है और आगे भी जाना पड़ता है। कैनोइंग थोड़ा सा डिफिकल्ट है, हमारे पास चप्पू है पर रडार नहीं है,
0: जी
1: सीधा
0: जी
1: हमको करना है।
0: आगे भी बढ़ना है और दिशा भी आपको खुद ही तय करना है।
1: बिल्कुल बिल्कुल मैडम, दिशा
0: जी
1: भी दिखाना है और आगे भी बढ़ना है
0: जी
1: और हमें तेज भी जाना पड़ता है। तो
0: जी
1: कंपटीशन में आपको पता ही होता है कि सबसे आगे निकलने के लिए तो जोर लगाना ही पड़ता है,
0: अब ये
1: डिफरेंस
0: बताइए
1: है।
0: कर्मा टोपो जी कि आप इस खेल से कब जुड़े?
1: मैं इस खेल में 1993 में एज ए स्पोर्ट्स पर्सन पोर्ट ब्लेयर साई, जबकि एसएजी था उसी टाइम, मैंने एक स्कूल से 7th क्लास का स्टूडेंट रहा था और लक्ष्मीपुर स्कूल में पढ़ता था, तो यहाँ से सिलेक्शन गया था। मुझे साई क्या है इतना तो मुझे नहीं पता था, बट मेरी रुचि खेल में इतना था कि जब भी स्कूल में भी मैं रहता था तो ग्राउंड में ही रहता था। पीटी सर लोग बोलते थे आप पढ़ लो पढ़ लो। फिर एक बार ट्रायल हुआ, हम यहाँ से आए तो चयन हो गया, मैं बहुत खुशी था और मैं पोर्ट ब्लेयर की तरफ आ गया।
0: अब ये बताइए जो नए खिलाड़ी हैं या जो बच्चे हैं जो कयाकिंग और कैनोइंग में आगे बढ़ना चाहते हैं, तो खिलाड़ी को ये शुरू करने के लिए किन बुनियादी बातों पर ध्यान देना जरूरी है?
1: शुरुआती दौर में जैसे कि उनका फिटनेस होता है मैटर रखता है, हाइट, शरीर, फिटनेस, अच्छा फिटनेस है तो अच्छा कर पाएंगे, अगर थोड़े से लेजी है तो फिर थोड़ा सा दिक्कत होता है। मैं कहना चाहता हूँ कि फिटनेस ज़्यादा बेटर है, अच्छा होना चाहिए।
0: आपने फिटनेस की बात की और
1: जी
0: इस खेल में टेक्निक भी बहुत ज़रूरी है, तो
1: टेक
0: देखिए फिटनेस और टेक्निक इन दोनों में कौन सा ज़्यादा अहम है?
1: फिटनेस और टेक्निक मैम, फिटनेस होना चाहिए तो हम काम ज़्यादा देर कर सकते हैं, प्लस हमको टेक्निक चाहिए मैडम। टेक्निक अगर हमको नहीं होगा तो हम बोट को ज़्यादा तेज नहीं दौड़ा पाएंगे, तो
0: जी
1: हमें टेक्निक और फिटनेस बहुत ही ज़रूरी है इस खेल में।
0: अब ये बताइए आपका कोच बनने का सफर कैसा रहा और इसमें क्या बड़ी चुनौतियां आईं?
1: मैंने तो कोच के लिए सोचा नहीं था बट कोच बन गया। जब मैं स्पोर्ट्स कर रहा था तो सबसे पहले नेशनल कैंप में मेरी सिलेक्शन हुआ था एज ए कोच, केरला में आलप्पी में, जो कि मैं भारतीय कायाकिंग कैनोइंग टीम को प्रशिक्षण करता था। तो जब मैं गया तो मुझे लगा कि अच्छा है, कोचेस बहुत, हम भी पहले सोचते थे कोचेस बहुत अच्छे हैं, बनना चाहिए कोचेस। जब हमने गया कोचिंग के लिए तो हमें पता चला कि कोचेस को बहुत ही दिक्कत है, हर प्लेयर को देखना पड़ता है, हर प्लेयर का इंटरेंस है या फिटनेस है, सब हमको पूरा एक
0: बारीकी
1: एक
0: से देखना होता
1: जी
0: है।
1: बारीकी से देखना होता है पहली बात तो। उसके बाद कौन प्लेयर कैसा है, कहाँ जा सकता है, उसकी टेक्निक क्या है, उसका स्ट्रेंथ क्या है, उसका फिटनेस क्या है, सब कुछ देखना पड़ता है मैडम। तो शुरुआत में काफी दिक्कत आई थी पर अभी हम कोचिंग करते करते करते हमको इतना एक्सपीरियंस हो चुका है, अभी लगता है कि हाँ हम कोचिंग कर सकते हैं।
0: जब आप छोटे रहे आपने सोचा कि मुझे इस क्षेत्र में आगे जाना है, तो किसको देखकर सीखा आपने या आपकी प्रेरणा?

खेल जगत कार्यक्रम में सभी खेल प्रेमियों का बहुत बहुत स्वागत है। श्रोताओं, कहते हैं लहरें चाहे कितनी तेज हो, अगर हौसला मजबूत हो तो चप्पू नाव को मंजिल तक पहुंचा ही देता है। आज हम

0: ना कौन रहे हैं?
1: जब हम इस गेम पे आए तो हमारे सीनियर्स हुआ करते थे, एक हुआ करता था जॉन वर्गिस, इसी साई के स्टूडेंट था और बहुत तेज चप्पू चलाते थे, तो हम देखते थे कि अरे यार हम भी इनकी तरह बनना है। और जितने भी हमारे साथी थे हमको भी दिखाते थे, उनकी पैडलिंग देखो, उनका चप्पू चलाने का तरीका देखो। उसके बाद हमारे पास एक जॉनी रोमल था, हमारा अंडमान निकोबार का ही था, एशियन गेम्स में फर्स्ट मेडलिस्ट हमारा अंडमान निकोबार, और इंडिया के लिए कायकिंग कैनोइंग खेलों में उन्होंने 2004 हिरोशिमा में लिया था। तो हम भी सोचते थे कि अब हम आए हैं तो हम भी एशियन चैम्पियनशिप, एशियन गेम्स, वर्ल्ड चैम्पियनशिप कोशिश कर रहे थे हम भी, तो काफ़ी हम लोगों ने ऐसा किया। तो मेरा जो मोटिवेशन रहा है जॉन वर्गिस और जॉनी रोमल जी।
0: अब बताएं कायाकिंग और कैनोइंग के प्रति यहाँ के जो बच्चे हैं, हमारे द्वीप समूह के बच्चे हैं, उनमें कितना रुझान है?
1: एक्चुअली हमारा द्वीपों में कायाकिंग एंड कैनोइंग रुझान तो काफ़ी है, बट कई जगह में ऐसे है बाहर में कायाकिंग कैनोइंग रोइंग हो गया, वाटर स्पोर्ट्स हमारा है मैडम बहुत ही, जैसे बाहर में जानते कम हैं, अभी बहुत लोग जानने लगे हैं कि बहुत सारे मेडल्स आते हैं, बहुत सारे बच्चों के टीवी में आते हैं, फोटो आते हैं, रेडियो में आते हैं, तो अभी देखते देखते बच्चों में ऐसा हो गया है मैडम कि काफ़ी पेरेंट्स भी अभी काफ़ी अवेयरनेस आ गया है उनमें कि हमको साई में बच्चों को वाटर स्पोर्ट्स में भेजना है। तो मैं कहूँगा कि आज हमारे कायकिंग कैनोइंग बहुत ही अच्छा पोजीशन में है और सभी चाहते हैं कि कायकिंग कैनोइंग में पार्टिसिपेट करें, कायकिंग कैनोइंग स्पोर्ट्स करें।
0: इस समय कितने बच्चों को आप प्रशिक्षण दे रहे हैं?
1: हमारे पास अभी साहिब में मैडम 86 है, बट मेरे पास अभी 30 बच्चे हैं कायकिंग एंड कैनोइंग में।
0: देखिए समुद्र या नदी, इसमें अभ्यास करते समय कौन कौन सी मुश्किलें आती हैं और या क्या फर्क है दोनों में?
1: जैसे कि हमारे पास बहुत सारे इवेंट होते हैं मैडम, समुद्र में भी होता है और नदी में भी होता है, तो मैं आप सबको बताना चाहता हूं कि जो समुद्र में होता है स्प्रिंट कायाक बोला जाता है, बहुत ही मतलब इनको चलाते वक्त हमारा टारगेट यही रहता है कि हमको कम से कम समय में दूरी तय करें, और उसमें बहुत सारी ऐसी बाधाएं आती है। हमारे अंडमान में देखा जाए तो मौसम कभी वेव्स होता है, कभी पानी डाउन होता है, कभी अप होता है, तो हम बच्चों को भी यही बताते हैं आप जाओगे आगे सिचुएशन को देखो और अपना वेव्स देखो कैसा जाना है कहाँ जाना है, तो काफी दिक्कत आती है मैडम, लेकिन फिर भी काफी अच्छा है।
0: आपकी नजर में एक सफल कायाकिंग या कैनोइंग खिलाड़ी में क्या खासियतें होनी चाहिए?
1: मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कायाकिंग एंड कैनोइंग खिलाड़ी में सबसे पहले तो अपनी जो इंटरेस्ट यानी उनकी खुद की जज्बा होना चाहिए,
0: दृढ़ निश्चय
1: होना चाहिए, उसको जीतने के लिए कोशिश करने वाला ऐसा होना चाहिए, मैं जीतूंगा खेलने का जज्बा होना चाहिए, प्लस उसका और बाकी स्ट्रेंथ बैलेंस कोऑर्डिनेशन वो तो बहुत ही जरूरी है, लेकिन जब एक खिलाड़ी अपने मन में जीतने का जज्बा रखता है तो सब कुछ उसके पास अपने आप आता है।
0: कहा भी जाता है जहां चाहा वहां रहा।
1: जी जी जी,
0: अगर व्यक्ति मन में ठान ले तो वो अपनी मंजिल तक पहुंच ही जाता है।
1: बिल्कुल।
0: अब हम यहाँ के बच्चों की बात करेंगे, तो कायाकिंग और कैनोइंग में यहाँ के खिलाड़ियों की क्या उपलब्धियां रही हैं?
1: काफ़ी हमारे मेडलिस्ट है, जैसे कि यहाँ पे जॉनी रोमल जी है, एशियन गेम्स मेडलिस्ट हो चुका है, वर्ल्ड ओलंपिक्स में क्वालिफाई कर चुका है, रजीना किरो है, संध्या किस्पोटा है, ममता है, अभी भी हमारे पास बहुत सारे ऐसे खिलाड़ी हैं जो अभी इंटरनेशनल के लिए तैयारी कर रहे हैं, नेशनल कैंप में हैं। मैं खुद के बारे में बताना चाहता हूँ, मैंने नेशनल चैम्पियनशिप या राष्ट्रीय स्तर पर मैंने 107 गोल्ड मेडल लिए हैं, और मेरी जो इंटरनेशनल मैंने 13 कंपटीशन में पार्टिसिपेट लिया है, उसमें एशियन चैंपियनशिप, वर्ल्ड चैंपियनशिप, वर्ल्ड क्वालिफाइंग एंड वर्ल्ड कप, जिसमें मैंने चाइना में, फिर ईरान में, फिर स्पेन में मैंने मेडल जीता है, 5 मेडल है मेरा, 3 सिल्वर है, 2 ब्रॉन्ज है मेरा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। और हमारे बच्चे भी कई ऐसे हैं, जैसे हमारे सीनियर्स थे श्रीमती जी, सुचित्रा जी, फिर रजीना जी अभी हैं, संध्या किस्पोटा जी अभी हैं, जैसे कि बता रहा हूँ कि मैं श्रीमती जी हैं वो बहुत सीनियर प्लेयर थे जब यहाँ पे साई खुला था, उन्होंने भी एशियन चैंपियनशिप में मेडल लिए हैं, और रजीना किरो एशियन चैंपियनशिप, एशियन गेम्स, वर्ल्ड चैंपियनशिप खेल चुके हैं, एशियन चैंपियनशिप में मेडल भी ले चुके हैं। संध्या और रजीना पार्टनर हुआ करते हैं, उन्होंने एशियन चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल लिया हुआ है, एशियन गेम्स में पार्टिसिपेट किया हुआ है दोनों ने। अभी हमारे पास जो अभी कायकिंग कैनोइंग में जितने भी एथलीट हैं, जो भी स्टूडेंट्स खिलाड़ी हैं, अभी परफॉर्मेंस बहुत ही अच्छा है। मेरे पास अभी साई में जूनियर लेवल, सब जूनियर लेवल के खिलाड़ी हैं, रिसेंटली उन्होंने बहुत ही अच्छा परफॉर्म किया है, जूनियर में सिल्वर मेडल, ब्रॉन्ज मेडल, प्लस हमारा

0: थोड़े से सीनियर थे वो एनसीओई में प्रमोट हो चुके हैं और आज का समय में उन्होंने बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस दे रहे हैं, नेशनल गेम्स, नेशनल चैंपियनशिप, एशियन चैंपियनशिप में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। अभी एशियन गेम्स में तो नहीं गए हैं, एशियन चैंपियनशिप में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, नेशनल गेम्स में मेडल ले रहे हैं और नेशनल चैंपियनशिप में मेडल ले रहे हैं।
1: अब बताइए द्वीपों में कायाकिंग और कैनोइंग का भविष्य कैसा है?
0: मैं चाहता हूँ मैडम द्वीपों में कायाकिंग, कैनोइंग और रोइंग वाटर स्पोर्ट्स हमारा बहुत ही अच्छा है। जैसे कि यहाँ का माहौल है, पानी है, समुन्दर है, नदी है, बैक वाटर बहुत सारे ऐसे जगह है, तो हमारे अंडमान में कायाकिंग, कैनोइंग, रोइंग का बहुत अच्छा भविष्य है और इसमें जैसे पुलिस के भी पास भी टीम है तो काफ़ी अच्छा ऐसे भविष्य है। लेकिन मैं बताना चाहता हूँ मैडम, इस गेम को अगर आगे लेके आना है तो स्कूलों में, कॉलेजों में और कई ऐसे संस्थाओं में इनको इंट्रोड्यूस करना चाहिए, रखना चाहिए और बच्चों को इनके बारे में थोड़ा बताना चाहिए कि ये आपका भविष्य है, भविष्य इसमें आप बना सकते हैं लाइफ।
1: जो सुन रहे हैं इस समय कार्यक्रम, अभिभावकों से क्या कहना चाहेंगे?
0: सभी पेरेंट्स और सभी गार्जियंस हैं, मेरा यही कहना है मैडम कि आप पढ़ाई ध्यान लगाइए लेकिन खेल बहुत ही जरूरी है। आज का समय में फिटनेस रहना है तभी हम पढ़ाई कर सकते हैं, बीमारी से दूर रह सकते हैं और ऐसे कई जो इलीगल काम होते हैं उससे हम दूर रह सकते हैं। और स्पोर्ट्स में आए तो बच्चे बहुत ही ऐसा सीखते हैं, दोस्ती करना सीखते हैं, बाहर चलना फिरना, जैसे बात करना है, किसी को इज्जत करना है, बहुत ही अच्छा अच्छा चीज़ें सीखते हैं। तो मैं सभी माता पिता से यही कहना चाहता हूँ कि आप लोग थोड़ा सा अपने बच्चों को इसमें ध्यान दीजिए। एक नौकरी है मैडम ये, जैसे हमारा कायाकिंग कैनोइंग है, कई लोग ऐसे अपने क्लब खोल रखे हैं और जैसे टूरिज्म में आ सकता है, टूरिस्ट कायाक है, काफ़ी ऐसे हैं जो उसमें बहुत ही अपना भविष्य बना सकते हैं। तो कायाकिंग कैनोइंग ऐसा खेल है जिससे हम अपना भविष्य बनाने के लिए एक अच्छा प्लेटफॉर्म है, मैं यही कहना चाहता हूँ।
1: तो कर्मा टोपो जी, आज आप कार्यक्रम में आए और आपने कायाकिंग कैनोइंग के बारे में बहुत सारी जानकारी दी। हम समझते हैं कि जो नए बच्चे जो कायाकिंग और कैनोइंग क्षेत्र में अपना भाग्य आजमाना चाहते हैं वो आपकी बातों से ज़रूर प्रेरित होंगे, वो आगे आएंगे और हमारे द्वीपों का ही नहीं वो देश का भी नाम रोशन करेंगे। आपने समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद।
0: धन्यवाद।

अभी आपने सुना खेल जगत के तहत श्री कर्मा टोप्पो के साथ ली गई भेंटवार्ता, चप्पू और खेल हौसलों का मेल का पुनः प्रसारण। भेंट कर रही थी जयशीला। और अब चलते हैं गीत संगीत की ओर और सुनते हैं इतिहास फिल्म का गीत। गायक हैं कुमार सानू और अलका याग्निक। गीत के बोल समीर के हैं और धुन तैयार की है दिलीप सेन और समीर सेन ने।

श्रोताओं, अब वक्त हो चला है कार्यक्रम में एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार आप सुनेंगे उदित नारायण और कविता कृष्णमूर्ति की आवाजों में पृथ्वी फिल्म का गीत। गीतकार हैं नितिन राय कवार और संगीतकार हैं बीजू शाह।

0: हर उड़ान से पहले एक फैसला होता है, हर फैसले से पहले एक सवाल, क्या मैं तैयार हूँ? अगर जवाब है हाँ, तो भारतीय वायुसेना आपका इंतजार कर रही है। AFCAT 1 of 2026 के आवेदन खुले हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें careerairforce.gov.in या afcat.edcil.co.in पर।
1: दीदी, नौकरी लग गई।
2: अरे वाह, बधाई हो। तो अब तो ढेर सारी शॉपिंग।
1: हाँ दी, नया मोबाइल।
2: अरे रुको शहजादे, सैलरी से पहले खर्चे।
1: इंस्टेंट लोन भी तो मिलता है।
2: पहले बजट बनाना सीखो, फिर खर्च करो।
1: पर दीप,
2: देखो कमाई का एक हिस्सा हमेशा बचाना चाहिए, लेकिन पार्टी देने से नहीं बचोगे तुम।
1: हाँ दी, पार्टी मेरी, बजट तुम्हारा।
2: अच्छा।
3: आरबीआई कहता है,
4: सही वित्तीय बर्ताव करे आपका बचाव।
5: बेटा, मैं कल अपने भतीजे के घर होके आया, देखकर हैरान रह गया कि वो लोग दिन भर एसी चलाते हैं, रोज वॉशिंग मशीन चलाते हैं, घर में दो दो फ्रिज हैं, फिर भी उसका बिजली बिल पता है कितना आता है? जीरो। मैंने पूछा तो भतीजा बोला, चाचा जी सब ऊपर वाले की दया है। मतलब सोलर पैनल की। मैंने सोचा अब तो लगवाना ही पड़ेगा।
6: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें PM सूर्य घर .gov.in पर।

श्रोताओं, हर व्यक्ति किसी न किसी रूप में श्रेष्ठ होता है, इसलिए हर इंसान का सम्मान और आदर करना हमारा कर्तव्य होना चाहिए, क्योंकि ये लोगों के सामने हमारे संस्कारों का बखान खुद ब खुद कर जाता है। और अब मैं फातिमा गुड मॉर्निंग अंडमान कार्यक्रम से आप सब से लेती हूँ इजाज़त। नमस्कार। मीडियम वेव 438.6 मीटर अर्थात 684 किलोहर्ट्ज़ पर यह आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। सुबह के 8 बजे हैं। अब समाचारों का प्रसारण होगा, जिसे हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। कृपया प्रतीक्षा करें।

0: आजकल भारत के गांव-गांव में छतों का रूप बदल गया है। जहां पहले छतों पर सिर्फ पापड़ और कपड़े सूखते थे, वहां पर अब बिजली बिल जीरो हो रहे हैं। गांव-गांव में लोग सोलर पैनल लगवा रहे हैं। आप भी लगवा लीजिए। 78,000 की सब्सिडी दे रही है भारत सरकार। 30,00,000 से अधिक परिवार तो इसका लाभ उठा चुके हैं। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना से जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर। हर घर सूर्य घर।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं फरहत नाज। और अब मुख्य समाचार। क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक आज नई दिल्ली में होगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज सिक्किम की 3 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में गोंडोला में तकनीकी खराबी के बाद फंसे 300 से अधिक पर्यटकों को सुरक्षित बचाया गया। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने इबोला वायरस को स्वास्थ्य आपातकाल घोषित किया। डीजीसीए ने एयरलाइंस को जारी किए निर्देश। दिल्ली में प्रति किलोग्राम सीएनजी की कीमत 2 रूपये बढ़ी। भारत ने सैफ महिला फुटबॉल चैंपियनशिप में मालदीव को 11-0 से हराया। और आईपीएल क्रिकेट क्वालिफायर 1 में आज शाम रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का सामना गुजरात टाइटन से। अब समाचार विस्तार से। विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर आज नई दिल्ली में क्वाड देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक की मेजबानी करेंगे। बैठक में ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्री पेनी वोंग, जापान के विदेश मंत्री तोशिमित्सो मोतेगी और अमरीका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो हिस्सा लेंगे। बैठक में क्वाड सहयोग को आगे बढ़ाने, विभिन्न पहलुओं की प्रगति की समीक्षा करने और हिंद प्रशांत क्षेत्र से जुड़े ताजा घटनाक्रमों पर चर्चा होगी। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: इस साल क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक ऐसे समय में हो रही है जब विश्व भर में अनिश्चितता का माहौल है और पश्चिम एशिया में संकट गहराया हुआ है। भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान को मिलाकर बना क्वाड एक अहम समूह के तौर पर उभरा है, जिसका मुख्य उद्देश्य हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति, सुरक्षा और स्थिरता बनाए रखना है। इस समूह के मौजूदा अध्यक्ष के तौर पर भारत इस बैठक की मेजबानी कर रहा है। क्वाड देशों ने दुनिया की भलाई के लिए मिलकर काम करने और एक ऐसे खुले, स्वतंत्र और समावेशी हिंद प्रशांत क्षेत्र का समर्थन करने का संकल्प लिया है जो समृद्ध और मजबूत हो। क्वाड ने एक सकारात्मक और व्यवहारिक एजेंडा अपनाया है, जिसमें स्वास्थ्य, सुरक्षा, जलवायु परिवर्तन तथा उभरती टेक्नोलॉजी और क्षेत्रीय देशों की समुद्री क्षेत्र से जुड़ी जागरूकता को बढ़ाने जैसे समकालीन मुद्दों तथा चुनौतियों

0: पर ध्यान केंद्रित किया गया है। सुपर्णा सैकिया के साथ आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से 3 दिन की सिक्किम यात्रा पर रहेंगे। गंगटोक से हमारे संवाददाता ने बताया है कि राष्ट्रपति अपनी यात्रा के दौरान कई कार्यक्रमों में भाग लेंगे।
2: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज सिक्किम यात्रा के पहले दिन देवराली में नामग्याल इंस्टीट्यूट ऑफ टिबेटोलॉजी का दौरा करेंगी और गैंगटोक में महिलाओं के लिए पिंक बसों को हरी झंडी दिखाएंगी। कल वो नाथुला का दौरा करेंगी और साथ ही गैंगटोक में सिक्किम विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में भी शामिल होंगी। अपनी यात्रा के अंतिम दिन राष्ट्रपति मुर्मू गैंगटोक के पलजोर स्टेडियम में सिक्किम पुलिस को प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पुलिस कलर मेडल प्रदान करेगी। मानस प्रतिम शर्मा, आकाशवाणी समाचार, गैंगटोक।
1: राष्ट्रपति भवन में कल नागरिक अलंकरण समारोह भी आयोजित किया गया, जिसमें इस वर्ष के पद्म पुरस्कार प्रदान किए गए। गृहमंत्री अमित शाह अगले कुछ दिन सीमावर्ती क्षेत्रों का दौरा करेंगे। श्री शाह 2 दिन की यात्रा पर आज राजस्थान के बीकानेर पहुंच गए हैं। इस दौरान उनका सशस्त्र बलों से बातचीत करने और उनके लिए कल्याणकारी योजनाओं का उद्घाटन करने का भी कार्यक्रम है। श्री शाह 29 मई को गुजरात जाएंगे। आयुष मंत्री प्रताप राव जाधव ने कहा है कि सरकार योग और प्राकृतिक चिकित्सा के माध्यम से चिकित्सा सेवाओं को मजबूत कर रही है। नई दिल्ली में आयुष मंत्रालय की संसदीय सलाहकार समिति की बैठक में श्री जाधव ने कहा कि योग और प्राकृतिक चिकित्सा भारत की प्राचीन पद्धति है और अब ये वैश्विक स्वास्थ्य अभियान का महत्वपूर्ण हिस्सा बन रहे हैं। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने ओटावा में कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी से द्विपक्षीय चर्चा की और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से शुभकामनाएं दी। साथ ही भारत कनाडा व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौता सीईपीए को जल्द पूरा करने पर सहमति जताई गई। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। नागर विमानन महानिदेशालय ने इबोला वायरस को लेकर नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। ये कदम विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा कांगो और युगांडा में इबोला वायरस को अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य आपातकाल घोषित किए जाने के बाद उठाया गया है। एक रिपोर्ट।
3: नागर विमानन महानिदेशालय ने कहा है कि युगांडा और कांगो से जुड़ी उड़ानों का संचालन करने वाली एयरलाइंस को यात्रियों के विमान से उतरने से पहले उनसे यात्री जानकारी फॉर्म भरवाना अनिवार्य होगा। इसके अलावा उड़ान के दौरान यात्रियों को बुखार, कमजोरी, मांसपेशियों में दर्द, सिर दर्द, गले में खराश, उल्टी या दस्त जैसे लक्षण होने पर अधिकारियों को जानकारी देने के निर्देश दिए गए हैं। विमान में संदिग्ध मरीज मिलने पर उसे विमान के पिछले हिस्से में अलग रखने और आसपास की सीटें खाली रखने के भी निर्देश दिए गए हैं। एयरलाइंस को मास्क, दस्ताने, पीपीई किट, सैनिटाइजर जैसी जरूरी सामग्री की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने को भी कहा गया है। आनंद की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं जया भारती।
1: दिल्ली में सीएनजी के दाम में 2 रूपये प्रति किलोग्राम की बढ़ोतरी की गई है। आज सुबह 6 बजे से लागू इस नई दर के बाद राष्ट्रीय राजधानी में सीएनजी की नई कीमत 83.09 रूपये प्रति किलोग्राम हो गई है। जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में गोंडोला रोपवे में तकनीकी खराबी आने के बाद फंसे सभी पर्यटकों को सुरक्षित बचा लिया गया है। अधिकारियों के अनुसार रोपवे की 65 कैबिन में 300 से अधिक पर्यटक फंस गए थे। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, पुलिस सेना और प्रशासन ने संयुक्त रूप से करीब 7 घंटे तक बचाव अभियान चलाकर सभी लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने घटना की जांच के आदेश दिए हैं। जम्मू कश्मीर के राजौरी जिले में सुरक्षा बलों ने डोरीमल वन क्षेत्र में आतंकियों के एक ठिकाने को ध्वस्त कर दिया। ये कार्रवाई ऑपरेशन शेरुवाली के तहत चल रहे तलाशी अभियान के दौरान हुई। ड्रोन और खोजी कुत्तों की मदद से इलाके में तलाशी अभियान जारी है। पंजाब में नगर निगम चुनावों के लिए मतदान शुरू हो गया है। राज्य में 8 नगर निगमों, 75 नगर परिषदों और 20 नगर पंचायतों के लिए वोट डाले जा रहे हैं। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
4: राजनीतिक पार्टियों द्वारा 2027 में होने वाले पंजाब विधानसभा चुनाव से पहले हो रहे इन नगर निकाय चुनावों पर एक अहम राजनीतिक संकेत के तौर पर बारीकी से नजर रखी जा रही है। राज्य चुनाव आयोग के अनुसार पूरे राज्य में कुल 1896 वार्डों से 7555 उम्मीदवार मैदान में हैं। सभी नगर निकायों में आदर्श आचार संहिता पहले से ही लागू है। मतदाताओं की भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए पंजाब सरकार ने आज सभी के लिए सार्वजनिक अवकाश घोषित किया है। की गिनती शुक्रवार 29 मई को होगी। राजेश बाली, आकाशवाणी समाचार, जलंधर।
1: उत्तर प्रदेश सरकार ने ग्राम पंचायतों के लिए नए निकाय गठित होने

0: तक या अधिकतम 6 महीने की अवधि के लिए निवर्तमान ग्राम प्रधानों को ग्राम पंचायतों का प्रशासक नियुक्त किया है। राज्य की ग्राम पंचायतों के प्रधानों का कार्यकाल आज समाप्त हो रहा है। निवर्तमान प्रधान स्वयं पंचायतों का प्रशासन संभालेंगे। एक रिपोर्ट।
1: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देशानुसार सभी जिला मजिस्ट्रेटों को ग्राम पंचायतों में निवर्तमान प्रधानों को प्रशासक के रूप में नामित करने का अधिकार दिया गया है। ये निवर्तमान प्रधान कल से प्रशासक के रूप में कार्यभार संभालेंगे। प्रशासकों को केवल नियमित और दैनिक कार्यों को करने की अनुमति होगी तथा उन्हें कोई भी नीतिगत निर्णय लेने की अनुमति नहीं होगी। सरकार ने यह भी स्पष्ट किया है कि यदि किसी भी परिस्थिति में कोई नीतिगत निर्णय आवश्यक हो तो जिला मजिस्ट्रेट की स्वीकृति के बाद ही निर्णय लिया जा सकता है। ग्राम पंचायत के प्रधानों का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। कार्यकाल समाप्त होने के बाद और पंचायतों के प्रधान बनने तक राज्य सरकार को प्रशासकों की नियुक्ति करने का अधिकार है। सुशील चंद्र तिवारी की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं पायल शर्मा।
0: भारत सहित दुनिया भर से सऊदी अरब पहुंचे लाखों जायरीन पवित्र हज यात्रा कर रहे हैं। 5 दिन के हज के पहले दिन कल हज यात्री मीना के टेंट सिटी में एकत्रित हुए। एक रिपोर्ट।
2: पवित्र हज यात्रा पर पहुंचे

0: अधिकार दिया गया है। ये निवर्तमान प्रधान कल से प्रशासक के रूप में कार्यभार संभालेंगे। प्रशासकों को केवल नियमित और दैनिक कार्यों को करने की अनुमति होगी तथा उन्हें कोई भी नीतिगत निर्णय लेने की अनुमति नहीं होगी। सरकार ने यह भी स्पष्ट किया है कि यदि किसी भी परिस्थिति में कोई नीतिगत निर्णय आवश्यक हो तो जिला मजिस्ट्रेट की स्वीकृति के बाद ही निर्णय लिया जा सकता है। ग्राम पंचायत के प्रधानों का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। कार्यकाल समाप्त होने के बाद और पंचायतों के प्रधान बनने तक राज्य सरकार को प्रशासकों की नियुक्ति करने का अधिकार है। सुशील चंद्र तिवारी की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं पायल शर्मा।
1: भारत सहित दुनिया भर से सऊदी अरब पहुंचे लाखों जायरीन पवित्र हज यात्रा कर रहे हैं। 5 दिन के हज के पहले दिन कल हज यात्री मीना के टेंट सिटी में एकत्रित हुए। एक रिपोर्ट।
2: पवित्र हज यात्रा पर पहुंचे जायरीन आज पूरा दिन अरफात के मैदान में इबादत और दुआओं में बिताएंगे। इसके बाद हज यात्री निमरा मस्जिद में हज का विशेष संदेश खुतबे हज सुनेंगे और दोपहर तथा शाम की नमाज एक साथ अदा करेंगे। सूर्यास्त के बाद वे मुजदलिफा के लिए रवाना होंगे। कल सुबह जायरीन मीना लौटेंगे जहां वे कुर्बानी और कंकर मारने की प्रतीकात्मक रस्म अदा करेंगे। समाचार कक्ष से कलीम अहमद।
1: अमरीकी सेना ने ईरान के साथ जारी संघर्ष विराम के बीच होर्मुज जल डमरू मध्य के पास ईरान के मिसाइल प्रक्षेपण स्थलों और नावों को निशाना बनाया है। ये घटनाक्रम तब सामने आया जब अमरीका और ईरान के बीच संघर्ष विराम वार्ता में कुछ प्रगति की खबरें आई हैं। अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ईरान युद्ध समाप्त करने के लिए किसी भी समझौते में सऊदी अरब और पाकिस्तान सहित कई देशों को अब्राहम समझौते में शामिल किया जाना चाहिए। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रूथ सोशल पर एक पोस्ट में श्री ट्रंप ने कहा कि ईरान के साथ बातचीत अच्छी तरह आगे बढ़ रही है। हालांकि उन्होंने चेतावनी दी कि या तो ये बातचीत शांति समझौते में बदलेगी या फिर पहले से ही बड़े संघर्ष की स्थिति का कारण बनेगी। अब्राहम समझौता अमरीका की मध्यस्थता में 2020 में हुआ ऐतिहासिक शांति समझौता है जिसका मुख्य उद्देश्य इसराइल और कई अरब तथा मुस्लिम देशों के बीच संबंध सामान्य बनाने के लिए शुरू किया गया था। ब्राजील सरकार ने अमेजन वर्षावन क्षेत्र में पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए 61.75 करोड़ अमरीकी डॉलर आवंटित किए हैं। ये निवेश पिछले वर्ष के COP30 सम्मेलन के दौरान घोषित इको इन्वेस्ट कार्यक्रम का एक हिस्सा है। और अब खेल जगत की हलचल के साथ हैं मुकेश कुमार बल।
3: जी फरहत, खेल खबरों में शुरुआत फुटबॉल से। भारत ने कल गोवा में सैफ महिला चैंपियनशिप के ग्रुप बी मुकाबले में मालदीव को 11-0 से हरा दिया। अविका सिंह ने 4 गोल किए। प्रियंका नोरेम और करिश्मा ने 2-2 गोल दागे। 5 बार की चैंपियन भारतीय टीम का अगला मुकाबला रविवार को बांग्लादेश से होगा। और अगर बात करें क्रिकेट की तो IPL के क्वालिफायर 1 मुकाबले में आज मौजूदा चैंपियन रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का सामना गुजरात टाइटंस से होगा। मैच धर्मशाला में शाम 7:30 बजे से शुरू होगा। इस मुकाबले की विजेता टीम सीधे फाइनल में पहुंचेगी जबकि हारने वाली टीम को क्वालिफाइड 2 में एक और मौका मिलेगा। उधर सिंगापुर में आज से शुरू हो रहे सिंगापुर ओपन सुपर 750 टूर्नामेंट में लक्ष्य सेन और पीवी सिंधु भारतीय चुनौती की अगुवाई करेंगे। पुरुष सिंगल्स में लक्ष्य सेन, HS प्रणॉय, किदांबी श्रीकांत और आयुष शेट्टी, वहीं महिला सिंगल्स में पीवी सिंधु, उन्नति हुडा और मालविका बंसोड़ चुनौती पेश करेंगी। पुरुष डबल्स में सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी तथा मिक्स डबल्स में तनीषा क्रस्टो ध्रुव कपिला और रोहन कपूर रुथविका शिवानी गड्डे की जोड़ियां भी अपना अपना दावा पेश करेंगी। जी फरहत, खेल जगत से बस आज इतना ही।
1: धन्यवाद मुकेश। और अब रुख कर लेते हैं मौसम का। मौसम विभाग ने आज दिल्ली में भीषण गर्मी का येलो अलर्ट जारी किया है। राजधानी में कल तक लू की स्थिति बनी रहने की संभावना है। शहर का अधिकतम तापमान 44 से 46 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने का अनुमान है। हरियाणा, चंडीगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश, पंजाब, उत्तर प्रदेश, विदर्भ और पश्चिम राजस्थान में आज भी भीषण लू चल सकती है। छत्तीसगढ़, तटीय आंध्र प्रदेश, पूर्वी राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, तेलंगाना, उत्तराखंड और पश्चिम मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों में भी इसी तरह की स्थिति बनी रहेगी। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मनोज।
4: धन्यवाद फरहत। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा कला, खेल और विज्ञान सहित कई क्षेत्रों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाली विभूतियों को पद्म पुरस्कारों से सम्मानित करने की खबर आज हिंदुस्तान सहित कई अखबारों में है। पत्र लिखता है पैरा खिलाड़ी प्रवीण कुमार को पद्मश्री सम्मान। अमर उजाला ने पुदुचेरी के पारंपरिक मार्शल आर्ट विशेषज्ञ के पजनी वेल के पद्मश्री सम्मान ग्रहण करने से पहले प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को दंडवत प्रणाम करने और प्रधानमंत्री तुरंत कुर्सी से उठकर उनको उठाने का चित्र प्रकाशित किया है। धर्मेंद्र को मरणोपरांत पद्म विभूषण सम्मान। धर्मपत्नी हेमा मालिनी ने भावुक होकर ग्रहण किया सम्मान, देशबंधु में है।

0: ने राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में पेट्रोल की कीमत बढ़ने का समाचार आंकड़ों सहित प्रकाशित किया है। 10 दिन में चौथी बार अब दिल्ली में भी कीमत 100 पार। पत्र ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन के शब्द भी दिए हैं, ईंधन, उर्वरक और विदेशी मुद्रा संरक्षण पर ध्यान देने की जरूरत। क्वाड बैठक आज, चीन की चुनौती पर होगी बात। पश्चिम एशिया संकट के बीच दिल्ली में हो रही है मीटिंग, नव भारत टाइम्स की सुर्खी है। नीट पेपर लीक मामले में सुप्रीम कोर्ट सख्त, सरकार से मांगा जवाब, एनटीए ने कोई सबक नहीं सीखा। लोकसत्य ने सुनवाई शीर्षक से खबर प्रकाशित की है। राजस्थान पत्रिका ने राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो एनसीआरबी की रिपोर्ट प्रकाशित की है। महिला अपराध के मामलों में देश भर में मध्य प्रदेश की हालत चिंताजनक। प्रदेश में हर रोज दर्ज हो रहे हैं दहेज प्रताड़ना के 20 प्रकरण। दैनिक जागरण ने आज अपने संपादकीय पन्ने पर उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन का लेख प्रकाशित किया है। शीर्षक है विकसित भारत के निर्माण की राह। संपादक ने अपने लेख में स्वामी विवेकानंद के शब्दों को अहमियत दी है, उठो जागो और लक्ष्य प्राप्त होने तक मत रुको। संपादक ने आयुष्मान भारत योजना, चंद्रयान 3 की सफल लॉन्चिंग और AI में भारत को वैश्विक कंपनियों में अहमियत मिलने से लेकर भारत की प्रगति की चर्चा की है।
1: धन्यवाद मनोज। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक आज नई दिल्ली में होगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज सिक्किम की 3 दिन की यात्रा पर रवाना होंगी। जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में गोंडोला में तकनीकी खराबी के बाद फंसे 300 से अधिक पर्यटकों को सुरक्षित बचाया गया। WHO ने इबोला वायरस को स्वास्थ्य आपातकाल घोषित किया। दिल्ली में प्रति किलोग्राम CNG की कीमत 2 रूपये बढ़ी। भारत ने सैफ महिला फुटबॉल चैंपियनशिप में मालदीव को 11-0 से हराया और IPL क्रिकेट क्वालिफायर 1 में आज शाम रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का सामना गुजरात टाइटन से। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। Good morning, I'm Anuja Kumar. The headlines. Quad Foreign Ministers meeting to be held in New Delhi today. President Draupadi Murmu to embark on a 3-day visit to Sikkim beginning today. More than 300 tourists stranded in Gulmarg gondola in Jammu and Kashmir rescued after technical snag halted its operations. DGCA issues directives for airlines after Ebola outbreak declared health emergency by WHO. CNG price hiked by 2 rupees per kg in Delhi. India thrashed Maldives 11-0 in their opening Group B match of SAF Women's Football Championship at Margao in Goa. And in IPL cricket, defending champions Royal Challengers Bengaluru to take on Gujarat Titans in Qualifier 1 in Dharamshala this evening. And now the news in detail. External Affairs Minister Dr. S. Jayashankar will host the Quad Foreign Ministers meeting in New Delhi today. Foreign Minister of Australia Penny Wong, Foreign Minister of Japan Toshimitsu Motegi and US Secretary of State Marco Rubio will participate in the meeting. The ministers will exchange views on advancing Quad cooperation across priority areas, review progress on ongoing Quad initiatives and reflect on recent developments in the Indo-Pacific region and other international issues of mutual concern. The foreign ministers of Australia and Japan arrived in Delhi yesterday. US Secretary of State Marco Rubio had arrived for a 4-day visit to India on the 23rd of this month. Our correspondent has filed this report.
3: The foreign ministers' meeting this year comes at a time of global uncertainty and West Asia crisis. The Quad, comprising India, the US, Australia and Japan, has emerged as a key grouping largely focusing on peace, security and stability in the Indo-Pacific region. India is hosting the meeting in its capacity as the current chair of the coalition. The Quad nations have come together with a commitment to work as a force for global good and to support an open, free and inclusive Indo-Pacific that is prosperous and resilient. Quad has adopted a positive and practical agenda focusing on contemporary issues and challenges such as health security, climate change, critical and emerging technologies, and strengthening the maritime domain awareness of regional countries. Suparna Saikia, Akashwani News, Delhi.
2: President Draupadi Murmu will undertake a 3-day visit to Sikkim beginning today. During her stay in Sikkim, she will attend various events and visit several places. A report.
4: President Draupadi Murmu will visit Namgyal Institute.

ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। सवेरे के 8:30 हुए हैं। सुगम संगीत श्रोताओं, इस कार्यक्रम में आज के हमारे फनकार हैं अनुराधा पौडवाल और हरिहरन। सबसे पहले सुनिए अनुराधा पौडवाल की आवाज़ में कुछ गीत।

0: नमस्ते कविता, अच्छा लगा कि आप आयुष्मान आरोग्य मंदिर में सर्विकल कैंसर की जांच के लिए आईं।
1: अरे दीदी, मेरी बेटी ने मुझे प्रोत्साहित किया।
0: आपकी बेटी तो बहुत समझदार है। बेटा, तुम कितने साल की हो?
2: मैं 14 साल की हूँ।
0: अब आपको अपनी बेटी को सर्विकल कैंसर से बचाने के लिए टीका लगवाने लाना होगा।
1: क्या कैंसर के लिए भी टीका होता है?
0: हाँ, ये एक ऐसा कैंसर है जिससे HPV की वैक्सीन के जरिए बचाव किया जा सकता है।
1: धन्यवाद दीदी।
0: जरूर, अपनी बेटी को HPV का टीका लगवाने के लिए वैक्सीन पोर्टल UWIN पर रजिस्टर करना मत भूलना।
3: भारत सरकार ने सर्विकल कैंसर से बचाव के लिए 14 साल की लड़कियों के टीकाकरण को सरकारी स्वास्थ्य केंद्रों पर निशुल्क उपलब्ध किया है। आज ही www.uvin.mohfw.gov.in पे जाके HPV वैक्सीनेशन के लिए रजिस्टर करवाएं। ये संदेश भारत सरकार के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
4: Most TVs keep you tied to the city, but you deserve the freedom to explore. Introducing the Maruti Suzuki e-Vitara. With its massive 61 kilowatt-hour battery and a range of 543 kilometer, the horizon is finally yours. Own it for rupees 10.99 lakh, with a battery EMI of just rupees 3.99 per kilometer. Backed by India's largest charging network, India Goes Electric.

मीडियम वेव 438.6 मीटर अर्थात 684 किलोहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के श्री विजयपुरम केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 9 बजे हैं। तराने सुहाने।

थी कार्यक्रम की पहली पेशकश लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ों में। हाथ की सफाई फिल्म के इस गीत को लिखा था गुलशन बावरा ने और संगीत से सजाया था इस गीत को कल्याण जी आनंद जी ने। और अब जवानी दीवानी फिल्म का गीत आनंद बख्शी के लिखे इस गीत को संगीत दिया है आर डी बर्मन ने, आवाज़ें दी हैं किशोर कुमार और साथियों ने।

आइए अब सुनते हैं लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के संगीत निर्देशन में तैयार संतोष आनंद का लिखा गीत। आवाजें हैं लता मंगेशकर और नितिन मुकेश की। फिल्म है क्रांति।

0: श्रोताओं, इस समय आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के श्री बीजीवरम केंद्र से तराने सुहाने कार्यक्रम। कार्यक्रम में एक छोटा सा अंतराल लेते हैं। अंतराल के उस पार सुनेगा फिल्म देश प्रेम का गीत। गायक होंगे किशोर कुमार, गीत आनंद बख्शी के हैं और संगीत है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का।
1: Most TVs keep you tied to the city, but you deserve the freedom to explore. Introducing the Maruti Suzuki e-Vitara. With its massive 61 kilowatt-hour battery and a range of 543 kilometer, the horizon is finally yours. Own it for rupees 10.99 lakh with a battery EMI of just rupees 3.99 per kilometer. Backed by India's largest charging network, India Goes Electric.
2: नमस्ते कविता, अच्छा लगा कि आप आयुष्मान आरोग्य मंदिर में सर्विकल कैंसर की जांच के लिए आईं।
3: अरे दीदी, मेरी बेटी ने मुझे प्रोत्साहित किया।
2: आपकी बेटी तो बहुत समझदार है। बेटा, तुम कितने साल की हो?
3: मैं 14 साल की हूँ।
2: अब आपको अपनी बेटी को सर्विकल कैंसर से बचाने के लिए टीका लगवाने लाना होगा।
3: क्या कैंसर के लिए भी टीका होता है?
2: हाँ, ये एक ऐसा कैंसर है जिससे HPV की वैक्सीन के जरिए बचाव किया जा सकता है।
3: धन्यवाद दीदी।
2: जरूर, अपनी बेटी को HPV का टीका लगवाने के लिए वैक्सीन पोर्टल UWIN पर रजिस्टर करना मत भूलना।
4: भारत सरकार ने सर्विकल कैंसर से बचाव के लिए 14 साल की लड़कियों के टीकाकरण को सरकारी स्वास्थ्य केंद्रों पर निशुल्क उपलब्ध किया है। आज ही www.uwin.mohfw.gov.in पे जाके HPV वैक्सीनेशन के लिए रजिस्टर करवाएं। ये संदेश भारत सरकार के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।

तराने सुहाने कार्यक्रम का अगला गीत आशा भोसले और मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ों में। फिल्म है हम किसी से कम नहीं, गीतकार है मजरू और संगीतकार है आर डी बर्मन।

केंद्र से बोल रहे हैं। इस समय सुबह के 9:30 हुए हैं। श्रोताओं, शास्त्रीय संगीत कार्यक्रम में आज हम आपको सुनवा रहे हैं एन रमनी की कर्नाटक शैली में बांसुरी वादन। इनके साथ वायलन पर M.S. गोपाल कृष्णन, मृदंगम पर वल्लोर रामा भद्रन और कंजीरे पर श्याम सुंदर ने संगति की है। तो श्रोताओं, लीजिए सुनिए एन रमनी का बांसुरी वादन पर बजाया राग रवि चंद्रिका, जो आदि ताल में निबद्ध है, कृति त्यागराजा स्वामी की है।

0: श्रोताओं, कार्यक्रम यूं ही जारी रहेगा एक छोटे से अंतराल के बाद।
1: QR कोड स्कैन करो, 5,000 का कैशबैक पाओ। वाह, दिल बन गया।
2: UPI पिन एंट्रिंग सिर्फ पैसे भेजने के लिए है।
3: RBI कहता है,
2: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
0: श्रोताओं, कार्यक्रम के अंत में लीजिए सुनिए राग मध्यमवती, जो आदि ताल में निबद्ध है, कृति श्याम शास्त्री की है।

ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। इस समय सुबह के 10 बजे हैं। श्रोताओं आइए सुनते हैं फिल्मी गीतों पर आधारित कार्यक्रम गीत गाता चल। श्रोताओं, कार्यक्रम का आगाज हम करते हैं फिल्म बद्रीनाथ की दुल्हनिया से। संगीत से सजाया है तनिष बख्शी ने, बोल है शब्बीर अहमद की और गायक कलाकार है मोनाली ठाकुर, इक्का देव नेगी और नेहा कक्कर।

हमारी अगली पेशकश है फिल्म रईस से, जिसके गायक कलाकार है पावनी पांडे। धुन तैयार की है इंदिवार ने और संगीत से सजाया है कल्याण जी आनंद जी ने।

श्रोताओं, आप सुनिए यासिर देसाई की और शाशा तिरुपति की आवाज़ में ये गीत। फिल्म का नाम है मशीन, रचनाकार है अराफत मोहम्मद और संगीतबद्ध किया है तनिष बख्शी की।

अगला गीत हमने लिया है फिल्म फिलोरी से, आवाज़ है रोमी और विवेक हरिहरन की, संगीत से सजाया है शाश्वत सचदेव ने और रचना है अन्विता दत्ता की।

श्रोताओं, अब सुनिए अमाल मलिक, तुलसी कुमार और यश नार्वेकर की आवाज़ में ये गीत। धुन है अमाल मलिक की, बोल है कुमार की और फिल्म का नाम है नूर।

श्रोताओं आइए सुनते हैं हिंदी मीडियम फिल्म से ये गीत। स्वर है सुखबीर की, संगीतकार है अभिजीत वागवानी की और रचनाकार है कुमार।

अब लीजिए सुनिए स्वीटी विट्स एनआरआई फिल्म का ये गीत, जिसे गाया है पलाश मच्चल, पलक मच्चल और आतिफ असलम ने। गीत और संगीतकार है पलाश मच्चल की।

श्रोताओं आप सुनिए राब्ता फिल्म का ये गीत जिसे गाया है अरिजीत सिंह, शदाब और अल्तमाश फरीदी ने, संगीतबद्ध किया है जम ने और बोल है अमिताभ भट्टाचार्य की।

ऐश किंग, प्रकृति कक्कर और शाहिद माल्या की आवाज़ में सुनिए फिल्म गेस्ट इन लंदन का ये गीत। संगीत से सजाया है राघव सच्चर ने और रचनाकार है कुमार।

मुबारक खा इस फिल्म का गीत अब हम आपको सुनवा रहे हैं, जिसे गाया है मिक्का सिंह और प्रकृति कक्कर ने, धुन तैयार की है गौरव रोशन ने और रचना है कुमार की।

श्रोताओं चलिए सुनते हैं सोनू निगम और श्रेया घोषाल की आवाजों में ये गीत बोल है गरिमा वोहाल और सिद्धार्थ सिंह की, संगीतबद्ध किया है विकी प्रसाद ने और फिल्म का नाम है टॉयलेट।

श्रोताओं अब सुनिए फिल्म मात्र का ये गीत। स्वर है राहत फतेह अली खां की, संगीत है फुजून की और बोल है एस के खालिश की।

श्रोताओं, कार्यक्रम के अंत में चलिए सुनते हैं रेस का ये गीत, जिसे गाया है आतिफ असलम ने, बोल है समीर की और संगीत निर्देशक है प्रीतम।

श्रोताओं अभी आप आनंद ले रहे थे फिल्मी गीतों पर आधारित कार्यक्रम गीत गाता चल। ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। इस समय दिन के 11 बजे हैं। अब सुनिए प्रायोजित कार्यक्रम NCERT के 1292 कड़ी।

0: पतंग।
1: सीआईईटी प्रस्तुत करता है
0: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: स्वागत है आप सभी श्रोताओं का उमंग कार्यक्रम में। विमलेश का नमस्कार
3: और अजीत का भी नमस्कार। बिलाईगढ़ छत्तीसगढ़ से रोशनलाल देवांगन, कौशल्या देवांगन, हेमलता, डिंपल देवांगन जी ने सुविचार भेजा है। लिखते हैं,
2: मनुष्य को हमेशा मौका नहीं ढूंढना चाहिए, क्योंकि जो आज है वही सबसे अच्छा मौका है। आज को ही मौका बना लीजिए।
3: आपका बहुत बहुत धन्यवाद इतने सुंदर विचार के लिए। आइए अब सुनते हैं पिछले दिनों संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम और उनके संदेश। तो पहला संदेश हमें मिला है बिलाईगढ़ छत्तीसगढ़ से। देवशंकर तामुरिया, अजय देव तामुरिया, तुषार देव तामुरिया, डॉली बेबी, पूजा, पुष्कर, लेहान, जिज्ञासा, विराट, तेजस्वी और गौरव तामुरिया जी का।
2: और इसके साथ साथ ही हमें संदेश मिला है करसोग जिला मंडी हिमाचल प्रदेश से योगेश ठाकुर जी का। वो लिखते हैं,
3: अजीत जी और विमलेश जी नमस्कार। आज उमंग कार्यक्रम में दो बहुत ही सुंदर, प्रेरणादायक और ज्ञानवर्धक कार्यक्रम प्रसारित किए गए। पेड़ की बात शीर्षक से जगदीश चंद्र बसु पर केंद्रित कार्यक्रम ने संवाद के माध्यम से उनके कार्यों, उपलब्धियों, प्रयासों और विज्ञान जगत में उनके अभूतपूर्व योगदान को बहुत सरलता से चर्चित किया।
2: जी।
3: योगेश ठाकुर जी आगे लिखते हैं,
2: ये कार्यक्रम बच्चों को बसु जी के कार्यों के बारे में एक संक्षिप्त झलक प्रदान करता है। भारत की पहली महिला पायलट सरला ठकराल पर आधारित कार्यक्रम बहुत ही शिक्षाप्रद और मनोरंजक था। इस कार्यक्रम के माध्यम से सरला ठकराल के द्वारा प्राप्त की गई अभूतपूर्व सफलता की गाथा का पता चलता है। इतने सुंदर कार्यक्रम को श्रोताओं के साथ साझा करने के लिए मैं आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ।
3: योगेश जी आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद इतनी सुंदर प्रतिक्रिया देने के लिए। अगला संदेश हमें मिला है राधेनगर अकोला महाराष्ट्र से राजेश पी कारिया जी का।
2: चंडीगढ़ से सतीश अनेजा और बिमला अनेजा।
3: और ऊपरकोट बुलंदशहर से मोहम्मद सईद अब्बासी, निगहत परवीन, शाहनवाज, सरफराज, फरदीन, सुहान, अरजान और अबान अब्बासी।
2: धन्यवाद आपके संदेशों के लिए। और अब प्रस्तुत है श्रृंखला ये भी जानिए। श्रोताओ, आपका हम आभार प्रकट करते हैं कि आपने हमारे कार्यक्रमों की इस श्रृंखला को सराहा है,
3: क्योंकि इस श्रृंखला में आपके लिए हम लेकर आते हैं ढेर सारी मनोरंजक और रोचक जानकारियाँ। तो विमलेश जी, इस सप्ताह हम क्या जानकारी साझा करने जा रहे हैं, जरा श्रोताओं को तो बताइए।
2: अजीत जी, सप्ताह हम चर्चा करेंगे दुनिया के कुछ प्रसिद्ध फूलों पर।
3: जी, मुझे याद आया, इसी श्रृंखला में हम भारत के कुछ प्रसिद्ध फूलों की चर्चा भी तो कर चुके हैं।
2: बिल्कुल।
3: तो आज किस फूल की चर्चा की जाए?
2: अजीत जी, आज हम बात करेंगे विश्व प्रसिद्ध फूल चेरी ब्लॉसम की।
3: तो क्यों ना शुरुआत की जाए आपसे।
2: जी श्रोताओ, चेरी ब्लॉसम दुनिया के सबसे प्रसिद्ध फूलों में से एक है। इसका मूल है जापान, यानी इसकी उत्पत्ति जापान से मानी जाती है। जापानी भाषा में इसे सुकुरा कहा जाता है। यह फूल जापान की राष्ट्रीय और सांस्कृतिक पहचान माना जाता है।
3: जी विमलेश जी, ठीक वैसे ही ना जैसे भारत की राष्ट्रीय पहचान फूलों के संदर्भ में कमल है।
2: बिल्कुल सही। जब ये फूल खिलते हैं तो लगभग पूरा देश गुलाबी और सफेद रंगों की मनमोहक छटा से भर जाता है। पूरा वातावरण बेहद खूबसूरत हो जाता है। इसके खिलने के समय में बहुत से पर्यटक खास तौर से जापान आते हैं।
3: विमलेश जी, आपने इन फूलों के खिलने के बारे में कहा।
2: जी।
3: तो ये हमारे श्रोता जरूर जानना चाहेंगे कि चेरी ब्लॉसम फूलों के खिलने का समय कब होता है।
2: अजीत जी, चेरी ब्लॉसम के फूल सामान्यतः मार्च और अप्रैल माह के बीच वसंत ऋतु में खिलते हैं। हालांकि स्थान और तापमान के अनुसार इसके खिलने के समय में थोड़ा बहुत अंतर आ सकता है।
3: विमलेश जी, एक और बेहद रोचक बात मैंने फूलों के विषय

0: पढ़ी थी यार, वो ये कि चेरी ब्लॉसम के पेड़ों पर इस मौसम में पहले फूल खिलते हैं, बाद में पत्तियां निकलती हैं।
1: जी बिल्कुल सही, और इसके कारण पेड़ पूरी तरह से फूलों से ढका हुआ दिखाई देता है। श्रोताओं आपको बता दें कि जापान में चेरी ब्लॉसम फूलों के खिलने के समय त्योहार जैसा माहौल होता है। इस समय जापान में एक विशेष उत्सव मनाया जाता है जिसे हनामी कहते हैं। अजीत जी अब आपकी बारी।
0: जी श्रोताओं, हनामी को चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल भी कहा जाता है।
1: जी
0: आइए जानते हैं कि इस उत्सव के दौरान वहाँ लोग क्या करते हैं।
1: इस समय शहरों, गांवों और कस्बों में रंगारंग कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं जिनमें चित्रकारी, गीत संगीत और जापानी संस्कृति की झांकियां दिखाई देती हैं। लेकिन हनामी परंपरा की एक सबसे बड़ी खास बात यह है कि
0: और वो ये है कि इस समय लोग चेरी ब्लॉसम पेड़ों के नीचे बैठकर परिवार, मित्रों और खासकर बच्चों और बुजुर्गों के साथ समय बिताते हैं।
1: जी
0: वे एक साथ बैठकर चेरी ब्लॉसम फूलों की अनोखी छटा का आनंद लेते हैं और प्रकृति को धन्यवाद देते हैं।
1: जी दूर दूर शहरों में रहने वाले परिवार के लोग इस समय एक साथ इकट्ठे हो जाते हैं
0: जी
1: और स्वादिष्ट भोजन करते हैं जिनमें विशेष है सकुरा मोची, ये मीठे चावल का केक होता है।
0: और दूसरा व्यंजन है डांगो, जिन्हें हनामी डांगो भी कहते हैं। ये पिसे हुए चावल के बने हुए गोल आकार के पकवान होते हैं। एक और व्यंजन है खास, उसका नाम है टेम्पुरा।
1: जी
0: इसमें तली हुई सब्जियां और मिठाई और विशेष जापानी चाय परोसी जाती है।
1: ऐसा नहीं है कि चेरी के फूल सिर्फ जापान में ही हैं। इन फूलों को विभिन्न देशों ने अपनाया, जैसे कोरिया, चीन, कनाडा, संयुक्त राज्य अमेरिका और भारत। इन देशों ने जापान से इसकी पौध को लेकर अपने देशों में विकसित किया है।
0: एक और खास बात आपको बता दें कि चेरी ब्लॉसम के फूल बहुत कम समय के मेहमान होते हैं।
1: जी
0: ये एक से दो सप्ताह तक ही अपनी पूरी सुंदरता में रहते हैं, फिर मुरझा जाते हैं। एक और खास बात आपको बता दें श्रोताओं कि चेरी ब्लॉसम वाले पेड़ों में जो चेरी के फल लगते हैं ना, वो बहुत छोटे और खट्टे होते हैं। इन पेड़ों में वो चेरी के फल नहीं लगते जो सामान्य तौर पर खाए जाते हैं।
1: खाने वाले चेरी के फलों के पेड़ अलग होते हैं। दरअसल चेरी ब्लॉसम के पेड़ सजावटी पेड़ माने जाते हैं। इनकी प्रजाति चेरी फल वाले पेड़ की प्रजाति से अलग है।
0: जी
1: इनका उद्देश्य सिर्फ सफेद और गुलाबी रंगों की अद्भुत छटा को बिखेरना है।
0: और इन फूलों के द्वारा ये संदेश मिलता है कि जीवन भी क्षणिक है, इसीलिए जब तक जीवन है इसे हम सुंदरता से बिताएं और समय का मूल्य समझें।
1: जी
0: शायद चेरी ब्लॉसम फूलों के हनामी उत्सव का ही प्रभाव है कि जापान में सौंदर्य और कला पर बड़ा जोर दिया जाता है, और हाँ, वहाँ समय की बड़ी प्रतिबद्धता है।
1: जी बिल्कुल। तो श्रोताओ अब आज का प्रश्न, आज की ही जानकारी से प्रश्न है,
0: चेरी ब्लॉसम के फूलों को जापानी भाषा में क्या कहते हैं। प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए,
1: चेरी ब्लॉसम के फूलों को जापानी भाषा में क्या कहते हैं।
0: आप अपना उत्तर हमारे IVRS नंबर यानी 8800440559 पर भेज सकते हैं। साथ ही साथ हमारे ईमेल यानी audio@ciet.nic.in पर भी आप अपने संदेश और हमारे प्रश्नों के उत्तर भेज सकते हैं। और हाँ,
1: आप एक्स, इंस्टा, फेसबुक और लिंक्डइन पर भी आप CIET NCERT को फॉलो कर सकते हैं। और अब बारी है हमारे कार्यक्रमों की, सुनते हैं कार्यक्रम।
0: हमारा पहला कार्यक्रम है वी आर गोइंग टू द जू, सिंगिंग द पोएम श्रृंखला के अंतर्गत प्रस्तुत इस गीत में मजेदार ढंग से बच्चों की चिड़ियाघर की यात्रा का वर्णन है। पशु पक्षियों की आवाजों को शामिल करके गीत को और भी अधिक रोचक बनाया गया है।
2: चिल्ड्रन, हैव यू एवर विजिटेड अ जू?
3: अ जू?
2: यस, अ जू।
3: ओह यस।
2: ऑल राइट, सो टेल मी, व्हाट डू यू सी इन अ जू?
3: टाइगर, लायन,
2: यस,
3: मंकी, बर्ड्स ऑफ डिफरेंट काइंड,
2: वेरी नाइस,
3: कैमल, जिराफ एंड सो ऑन।
2: ओह वाओ। So, here is a child like you who wants to go to a zoo. Now, let's recite this poem and you all repeat after me. Ready?
3: Ready!
2: The poem goes like this. We are going to the zoo to see a kangaroo.
3: We are going to the zoo to see a kangaroo.
2: And a lion too.
3: And a lion too.
2: We are going to the zoo.
3: We are going to the zoo.
2: The monkeys swing and climb.

0: And this was Tiger. This was Polar Bear. And this was Skunk. And this was Kangaroo. And friends, do you know that pets and animals are very important part of our lives and the environment as well? But how? Talk to your elders and teachers.
1: अभी आपने सुना ये संगीतमय कार्यक्रम और अब सुनते हैं कार्यक्रम बाल क्रांतिकारी जोरावर सिंह।
2: इस कार्यक्रम में बाल क्रांतिकारी जोरावर सिंह की वीर गाथा प्रस्तुत की गई है और जानकारी दी गई है कि कैसे भारत के स्वतंत्रता संग्राम के दौरान उसने अंग्रेजी शासन से लोहा लिया और देश की स्वतंत्रता के संघर्ष में अपना बलिदान दिया।
1: जी,
3: भारत वीरों और वीरांगनाओं की भूमि है। जब जब भारत माँ की आन बान और शान पर संकट आया, हमारे वीर और वीरांगनाएं अपने कर्तव्यों से कभी पीछे नहीं हटे। बात है अंग्रेजों के विरुद्ध छेड़े गए स्वतंत्रता संग्राम की, जब हमारे वीर और वीरांगनाओं ने अदम्य साहस, सूझबूझ और मातृभूमि के प्रति कर्तव्य को बड़ी बहादुरी से निभाया। इन वीरों और वीरांगनाओं में कई तो काफी कम उम्र में ही कुर्बान हो गए।
4: ऐसे ही एक वीर बालक थे जोरावर।
5: साथियों, हमें अपने शत्रु की हर चाल का, हर हथियार का और हर रणनीति का जवाब देना है। शत्रु को कभी भी कमजोर नहीं समझना है और हर पल हम सबको उससे चौकन्ना रहना है।
6: बिल्कुल
7: ठीक है।
5: आप सब जानते हैं कि हम पर दोहरी जिम्मेदारी है। हमें अपनी रियासत के साथ साथ पड़ोस की रियासतों की भी मदद करनी है, ताकि अंग्रेज हमारी मातृभूमि पर कब्जा ना जमा सकें।
8: वीर जोरावर की
9: जय।
8: वीर जोरावर की
9: जय।
4: राजा जोरावर सिंह, हैदराबाद जैसी बड़ी रियासत से सटी छोटी सी रियासत जेरापुर का महज 15-16 की उम्र का राजा, जिसने 1857 की क्रांति के समय अंग्रेजों से लड़ने के लिए अरब और रोहिल्ला पठानों की एक सैनिक टुकड़ी तैयार की थी।
10: अरे वाह, इतनी सी उम्र में जोरावर राजा बन गए।
4: दरअसल पिता की अचानक मृत्यु हो जाने पर उन्हें यह जिम्मेदारी कबूल करनी पड़ी, क्योंकि वो अपने पिता के उत्तराधिकारी थे और दूसरा, अंग्रेजों के बढ़ते हमलों से मुकाबले के लिए ऐसा करना जरूरी था। खैर, ये वो वक्त था जब 1857 की क्रांति में बुरी तरह मात खाने के बाद अंग्रेज नई नई चालें रचने लगे थे। इसी में एक खतरनाक चाल थी, डिवाइड एंड रूल, यानी फूट डालो और राज करो।
10: अंग्रेजी हुकूमत ने हम भारतीयों को जात पात, भाषा, धर्म और क्षेत्र के नाम पर लड़ाना शुरू कर दिया, ताकि इसका फायदा उठाया जा सके।
11: महाराज, महाराज, हालात खराब हो रहे हैं, लोग आपस में ही लड़ने लगे हैं। हमें कुछ करना होगा महाराज। पड़ोस की दूसरी रियासतों को भरोसे में लेकर और मिलकर काम करना होगा, ताकि इन अंग्रेजों को मनमाने का कोई मौका ही ना मिले।
5: ठीक कहते हैं मंत्री जी, मैं कल ही हैदराबाद जाता हूँ। वो हमारी सबसे बड़ी राजशाही रियासत है
11: जी।
5: वहाँ के निजाम अफजल उद्दौला से बात करूंगा और मुझे उम्मीद है कि वो हमारी बात को अहमियत देंगे।
11: जी महाराज, महाराज अगर ऐसा

0: हो जाए तो ये आपकी यात्रा की एक बड़ी सफलता होगी।
1: बिल्कुल,
0: आपकी सूझबूझ का जवाब नहीं महाराज। वाकई आप अपनी मातृभूमि और जनता की रक्षा के लिए कितने समर्पित हैं। हम तैयारी शुरू करते हैं महाराज।
1: जी मंत्री जी।
0: जी महाराज।
2: जोरावर ने अगले ही दिन एक नेक मकसद के साथ निजाम के दरबार में दस्तक दी।
3: होशियार, खबरदार, रियासते जेरापुर के महाराज जोरावर सिंह दरबारे खास में जलवा अफरोज हो रहे हैं।
4: जोरावर सिंह महाराज आ रहे हैं। महाराज जोरावर सिंह।
2: आइए हमारे दोस्त, तहे दिल से आपका इस्तकबाल है। तशरीफ रखिए और बताएं कि आपने कैसे तकलीफ की, क्या खिदमत की जाए आपकी।
1: निजाम साहब, हम आपसे एक गुजारिश करने आए हैं।
2: जी जरूर, हुक्म करें, हम आपकी क्या मदद कर सकते हैं।
1: देखिए निजाम साहब।
2: जी फरमाइए।
1: फिरंगी हुकूमत की बर्बरता और साजिशें एक बार फिर बढ़ रही हैं। गदर में मिली नाकामी के बाद अब वो हमें आपस में लड़ा रहे हैं।
2: जी,
1: इसलिए हमें मिलकर काम करना होगा ताकि वो किसी साजिश में कामयाब ना हो पाए।
2: राजा जोरावर, हम भी ऐसा ही चाहते हैं। हम कल सुबह तफसील से बात करते हैं।
1: जी,
2: तब तक आप हमारे खास मेहमान की तरह इस किले में रहें। हमारे वजीर सालार जंग आपके आराम और कल की बातचीत के सारे इंतजाम कर देंगे।
5: जो हुक्म मेरे आका, हम महाराज और उनके सैनिकों का पूरा ख्याल रखेंगे। आइए महाराज।
2: अफजल उद्दौला उर्फ मीर तहनियत अली खान 1857 से 1869 तक हैदराबाद के निजाम यानी शासक थे और यहाँ के पहले शासक कमरुद्दीन खान आसफ जाह के पांचवें वंशज थे। दरअसल भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान हैदराबाद रियासत पर नवाबों की हुकूमत रही। खैर, निजाम के दरबार में अपने शानदार स्वागत से जोरावर खुश थे। वहीं निजाम भी उनकी देशभक्ति और सूझबूझ को देखकर हैरान थे।
6: जी हाँ, जेरापुर की जनता के लिए हैदराबाद का साथ बहुत जरूरी था और जोरावर यहाँ काफी उम्मीद से आए थे।
5: ए, सुनो, सारी तैयारियां पूरी है ना?
4: बिल्कुल।
5: देखो, कोई गलती नहीं होनी चाहिए। एक तो जोरावर खुद बहुत बहादुर है, दूसरे उसके अंगरक्षक साए की तरह उसके साथ रहते हैं, और तीसरी बात यह है कि अगर हमारी साजिश कामयाब ना हुई तो फिरंगी हुकूमत हमसे नाराज हो जाएगी और इनामो इकराम की जगह मिलेगी लानत मलामत।
7: हुजूर, आप फिक्र ना करें, सब कुछ वैसे ही होगा जैसे आपने कहा है।
5: लेकिन जरा होशियारी से।
7: जो हुकुम सरकार।

0: John Abbott! Good home? तुम चारों तरफ से गिर चुके हो.
1: ये क्या है?
0: You are under arrest.
1: एक सोते हुए निहत्थे इंसान को आधी रात में ऐसे कायरों की तरह गिरफ्तार करते हो? शर्म नहीं आती तुम्हें? हिम्मत है तो हमसे लड़कर दिखाओ. आओ सामने.
0: बहुत हो गई तुम्हारी बहादुरी. फौजियो,
2: हुजूर,
0: बांधो इस बच्चे को जंजीर से.
2: जी.
3: छोड़ो मुझे. हाथ मत लगाओ मुझे. मुझसे हाथ हटाओ. मैंने कहा छोड़ो मुझे, हटो यहाँ से.
0: शाबाश शाबाश सारा जंग. मैं खुश हुआ.

सुन रहे थे। हम आकाशवाणी के श्री विजयपुरम केंद्र से बोल रहे हैं। इस समय दिन के 11:30 हुए हैं। अब प्रस्तुत है फिल्मी गीतों का कार्यक्रम चित्र गीत। श्रोताओं, कार्यक्रम का पहला गीत हम सुनते हैं फिल्म संग्राम से। स्वर है अलका याग्निक और कुमार सानू की। संगीत से सजाया है नदीम श्रवण ने और रचना की है समीर ने।

कुमार सानू और अलका याग्निक की आवाज़ में चलिए सुनते हैं ये खूबसूरत गीत। धुन तैयार की है हिमेश रेशमिया ने, बोल है देव कोहली की और फिल्म का नाम है कुरुक्षेत्र।

श्रोताओं आप सुनिए फिल्म कसूर का ये गीत, जिसके गायक कलाकार है कुमार सानू और अलका याग्निक, संगीत निर्देशन है नदीम श्रवण की और रचनाकार है समीर।

अब प्रस्तुत है कुमार सानू और क्षमा कीजिए, अब प्रस्तुत है कुमार सानू की आवाज़ में ये गीत। संगीत से सजाया है राजेश रोशन ने, बोल है सावन कुमार तक की और फिल्म का नाम है कहो ना प्यार है।

श्रोताओं, आइए सुनते हैं रघुवीर फिल्म का ये गीत, जिसे गाया है कुमार सानू और पूर्णिमा ने। धुन तैयार की है दिलीप सेन, समीर सेन ने, और रचना है समीर की।

0: इस प्यारे से गीत के साथ ही हमारा यह कार्यक्रम चित्र गीत अब यहीं समाप्त होता है। मीडियम वेव 438.6 मीटर अथवा 684 किलो हर्ट्ज पर यह आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। इस समय दोपहर के 12 बजे हैं। श्रोताओं, आइए सुनते हैं तेलुगु कार्यक्रम।
1: మీడియం వేవ్ 438.6 మీటర్లు అనగా 684 కిలోహర్ట్స్. ఇది ఆకాశవాణి శ్రీ విజయపురం కేంద్రం.

0: श्रोताओं, अभी आप तेलुगु कार्यक्रम सुन रहे थे। आकाशवाणी का ये श्री विजयपुरम केंद्र है। इस समय दोपहर के 12:30 हुए हैं। श्रोताओं, चलिए सुनते हैं मलयालम कार्यक्रम।
1: മീഡിയം വേവ് 438.6 meters അഥവാ 684 kHz ൽ ഇത് ആകാശവാണി ശ്രീ വിജയപുരം നിലയം.

श्रोताओं, अभी आप मलयालम कार्यक्रम सुन रहे थे। मीडियम वेव 438.6 मीटर अर्थात 684 किलो हर्ट्स पर ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। इस समय दोपहर के 1 बजने वाले हैं। अब से थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे समाचार, जिसे हम दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे।

0: जयशंकर की अध्यक्षता में आज क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक नई दिल्ली में हुई। ऑस्ट्रेलिया की विदेश मंत्री पेनी वोंग, जापान के विदेश मंत्री तोशिमित्सु मोतेगी और अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने बैठक में हिस्सा लिया। क्वाड देशों ने हिंद प्रशांत समुद्री निगरानी पहल और समुद्री क्षेत्र में गतिविधियों और स्थितियों की जानकारी के लिए साझा तस्वीरों पर सहमति जताई। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि क्वाड बंदरगाह बुनियादी ढांचे पर एक विशेषज्ञ पैनल बनाने पर विचार करेगा, फिजी में एक पायलट बंदरगाह परियोजना और समुद्र के नीचे बिछी केबलों पर भी सहयोग करेगा। उन्होंने कहा कि बैठक के मुख्य नतीजों में से क्वाड क्रिटिकल मिनरल फ्रेमवर्क को अंतिम रूप देना था। क्वाड देशों ने भारत अमेरिका क्रिटिकल मिनरल्स फ्रेमवर्क पर भी हस्ताक्षर किए। हिंद प्रशांत ऊर्जा सुरक्षा, प्रौद्योगिकी प्रबंधन, नीति, अंतर्राष्ट्रीय बाजार विश्लेषण और आपातकालीन प्रतिक्रिया अभ्यासों के क्षेत्र में क्वाड पहल की घोषणा भी की गई। क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक के बाद विदेश मंत्री डॉ जयशंकर ने इस बात पर जोर दिया कि क्वाड देशों के बीच सहयोग को और मजबूत किया जाएगा।
1: इकोनॉमिक रेजिलियंस शुड बी प्रमोटेड।
2: बैठक में आर्थिक मजबूती बनाए रखने, आपूर्ति श्रृंखला को मजबूत करने, विश्वसनीय और सुरक्षित तकनीकों का प्रसार करने तथा उत्पादन क्षमता में वृद्धि करने पर चर्चा हुई। ऊर्जा और उर्वरक की वर्तमान उपलब्धता के साथ साथ महत्वपूर्ण खनिजों और संसाधनों की उपलब्धता पर भी बात हुई। हमारा लक्ष्य आपसी सहयोग को मजबूत करना तथा दूसरों की सहायता करना है। हम क्वाड देश आदान प्रदान से विकास और समृद्धि की खोज में नवाचार और रचनात्मकता को बढ़ावा देते हैं।
0: अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा कि क्वाड क्रिटिकल मिनरल्स फ्रेमवर्क क्वाड देशों को आर्थिक नीति के साधनों का लाभ उठाने और निवेश का समन्वय करने में मार्गदर्शन करेगा। संयुक्त प्रेस बयान में जापान के विदेश मंत्री तोशिमित्सु मोतेगी ने होर्मुज जल डमरू मध्य में स्वतंत्र और सुरक्षित आवागमन सुनिश्चित करने के साथ साथ पश्चिम एशिया में स्थिरता लाने में कूटनीतिक प्रयासों के महत्व पर जोर दिया। उत्तर प्रदेश में आज आगरा लखनऊ और पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर दो अलग अलग सड़क हादसों में 10 लोगों की मौत हो गई। पहली घटना में उन्नाव जिले के पास आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर एक बस पलटने से 6 लोगों की जान चली गई और 10 से अधिक लोग घायल हो गए। अधिकारियों ने बताया कि बस दिल्ली से गोरखपुर जा रही थी, तभी औरास पुलिस थाना क्षेत्र के पास चालक ने नियंत्रण खो दिया जिससे बस पलट गई। जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में गंडोला रोपवे में तकनीकी खराबी आने के बाद फंसे सभी पर्यटकों को सुरक्षित बचा लिया गया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सफल बचाव अभियान की सराहना की है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री सिंह ने कहा कि इस कठिन ऑपरेशन को जिस दक्षता और संकल्प के साथ पूरा किया गया उसके लिए सभी कर्मियों के प्रति राष्ट्र आभारी है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने नरेंद्र मोदी सरकार के आज 12 साल पूरे होने पर इसे भारत की सभ्यता और विकास यात्रा का बदलाव लाने वाला दौर बताया। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि 26 मई 2014 को देश को प्रशासन, सोच, नेतृत्व और राष्ट्रीय संकल्प में एक निर्णायक बदलाव आया जब श्री मोदी ने प्रधानमंत्री के तौर पर शपथ ली। भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष नितिन नवीन ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यभार संभालने के बाद से देश ने अभूतपूर्व आत्मविश्वास और नए सांस्कृतिक पुनर्जागरण का ऐतिहासिक क्षण देखा है। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में दोपहर के कारोबार में गिरावट का रुख है। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 162 अंक गिरकर 76,327 जबकि निफ्टी 19 अंक की गिरावट के साथ 24,013 पर था। ओस्लो में नॉर्वे शतरंज प्रतियोगिता में भारतीय खिलाड़ी आर प्रज्ञानंदा और डी कुकेश ने क्लासिकल मुकाबला ड्रॉ रहने के बाद बेहद रोमांचक टाई ब्रेकर में जीत दर्ज की। प्रतियोगिता में प्रज्ञानंद ने टाई ब्रेकर में वेस्ली सो को हराया, कुकेश ने विंसेंट कीमर को पराजित किया। आईपीएल क्रिकेट में आज क्वालिफायर 1 में मौजूदा चैंपियन रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का सामना गुजरात टाइटंस से होगा। यह मुकाबला धर्मशाला में शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। मौसम विभाग ने बताया है कि मिजोरम में आज मॉनसून की शुरुआत हो गई है। विभाग ने कहा कि इस साल मिजोरम, पूर्वोत्तर के अन्य राज्यों और केरल में मॉनसून समय से 6 दिन पहले ही आ गया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

श्रोताओं, अभी आप आनंद ले रहे थे कार्यक्रम सुगम संगीत में कुछ गज़लों का। मीडियम वेव 438.6 मीटर अथवा 684 किलो हर्ट्स पर यह आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। इस समय दोपहर के 1:30 हुए हैं। अब प्रस्तुत है आपका मन पसंदीदा कार्यक्रम आपके नाम फिल्मी पैगाम। श्रोताओं, आप भी हमारे इस कार्यक्रम आपके नाम फिल्मी पैगाम में तहे दिल से स्वागत है। श्रोताओं, आप भी हमारे इस कार्यक्रम में जुड़ सकते हैं। हमसे जुड़ने के लिए हमें व्हाट्सएप मैसेज करिए। हमारा नंबर है 9474234000। जी हाँ श्रोताओं, नंबर एक बार फिर से सुन लीजिए, 9474234000। 9474234000। इस नंबर पर हमें अपना नाम, पता, फिल्म का नाम और गीत के बोल लिख भेजें, ताकि हम आपके मन पसंदीदा गीत आप तक पहुंचा सकें। श्रोताओं, कार्यक्रम में पहला पैगाम आया है हमें नया गांव से वंश, हर्ष, यश, अनुज और वान्या का।

श्रोताओं अगली फरमाइश की है निहारिका, प्रीशा, वर्षा और गर्वेश गुप्ता ने भातु बस्ती से। फिल्म का नाम है खुद्दार।

दोस्तों अब सुनते हैं दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे फिल्म का ये गीत, जिसे पसंद किया है बेबी, अनमोल, दीपक, पूजा और आयांश ने, बलिया उत्तर प्रदेश से।

आरुषि, संजना, हर्षिका और हर्षवर्धन सुनना चाहते हैं फिल्म दिलवाले का ये गीत। इन्होंने फरमाइश की है पात्रापुर से, तो आइए सुनते हैं ये प्यारा सा गीत।

दोस्तों चलिए सुनते हैं हमारी अगली फरमाइश, जिसे भेजा है जया सागर और गुड़िया ने हटबे से। ये सुनना चाहते हैं मन फिल्म का ये गीत।

श्रोताओं, आज के आपके नाम फिल्मी पैगाम में बस इतना ही। अब आपके इस रेडियो दोस्त मीनू को दीजिए इजाज़त, नमस्कार। श्रोताओं आप फरमाइशी गीतों पर आधारित कार्यक्रम आपके नाम फिल्मी पैगाम सुन रहे थे। मीडियम वेव 438.6 मीटर अथवा 684 किलो हर्ट्ज पर यह आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। इस समय दोपहर के 2 बजने वाले हैं। थोड़ी ही देर में समाचारों का प्रसारण होगा, जिसे हम दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे।

अब समाचार विस्तार से। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर की अध्यक्षता में क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक आज नई दिल्ली में हुई। ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्री पेनी वोंग, जापान के विदेश मंत्री तोशी मित्सु मोतेगी और अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने बैठक में हिस्सा लिया। क्वाड समूह ने स्थिर और सुरक्षित ऊर्जा बाजारों की प्रतिबद्धता व्यक्त की। सदस्य देशों ने वैश्विक ऊर्जा बाजारों में व्यवधान के समय एक दूसरे की ऊर्जा सुरक्षा आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए सहयोग को और मजबूत करने पर सहमति व्यक्त की। क्वाड देशों ने हिंद प्रशांत समुद्री निगरानी पहल और समुद्री क्षेत्र में गतिविधियों और स्थितियों की जानकारी के लिए साझा तस्वीर पर सहमति जताई। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि क्वाड बंदरगाह बुनियादी ढांचे पर एक विशेषज्ञ पैनल बनाने पर विचार करेगा। फिजी में एक पायलट बंदरगाह परियोजना और समुद्र के नीचे बिछी केबलों पर भी सहयोग करेगा। उन्होंने कहा कि बैठक के मुख्य नतीजों में से क्वाड क्रिटिकल मिनरल फ्रेमवर्क को अंतिम रूप देना था। क्वाड देशों ने भारत अमरीका क्रिटिकल मिनरल फ्रेमवर्क पर भी हस्ताक्षर किए। हिंद प्रशांत ऊर्जा सुरक्षा, प्रौद्योगिकी प्रबंधन नीति, अंतर्राष्ट्रीय बाजार विश्लेषण और आपातकालीन प्रतिक्रिया अभ्यासों के क्षेत्र में क्वाड पहल की घोषणा भी की गई। बैठक के बाद संयुक्त प्रेस वार्ता में डॉ. जयशंकर ने कहा कि क्वाड देशों के बीच सहयोग को और मजबूत किया जाएगा।

0: इकोनॉमिक रेजिलियंस शुड बी प्रमोटेड।
1: बैठक में आर्थिक मजबूती बनाए रखने, आपूर्ति श्रृंखला को मजबूत करने, विश्वसनीय और सुरक्षित तकनीकों का प्रसार करने तथा उत्पादन क्षमता में वृद्धि करने पर चर्चा हुई। ऊर्जा और उर्वरक की वर्तमान उपलब्धता के साथ साथ महत्वपूर्ण खनिजों और संसाधनों की उपलब्धता पर भी बात हुई। हमारा लक्ष्य आपसी सहयोग को मजबूत करना तथा दूसरों की सहायता करना है। हम क्वाड देश आदान प्रदान से विकास और समृद्धि की खोज में नवाचार और रचनात्मकता को बढ़ावा देते हैं।
2: श्री जयशंकर ने कहा कि लोकतांत्रिक देशों के तौर पर आतंकवाद के साझा खतरे का मुकाबला करने पर भी हमारा ध्यान केंद्रित है।
3: As democratic nations,
1: लोकतांत्रिक राष्ट्र होने के नाते हमने आतंकवाद के साझा खतरे का मुकाबला करने पर भी ध्यान दिया। हमारी आतंकवाद को कतई बर्दाश्त न करने की नीति है। आतंकवादी हमलों से प्रभावित राष्ट्रों को आत्मरक्षा का अधिकार है। स्वतंत्र और खुले हिंद प्रशांत क्षेत्र के कई आयाम और पहलू हैं। बैठक में इनमें से कई क्षेत्रों में हुई प्रगति की समीक्षा की गई, जबकि अन्य क्षेत्रों में खोज को प्रोत्साहित किया गया। आने वाले दिनों में चाहे वह आर्थिक गतिविधि हो, ऊर्जा व्यापार हो या समुद्री व्यापार, हिंद प्रशांत क्षेत्र विश्व के लिए और भी महत्वपूर्ण हो जाएगा।
2: अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा कि क्वाड क्रिटिकल मिनरल्स फ्रेमवर्क क्वाड देशों को आर्थिक नीति के साधनों का लाभ उठाने और निवेश का समन्वय करने में मार्गदर्शन करेगा। उन्होंने कहा कि हिंद प्रशांत ऊर्जा सुरक्षा पर क्वाड पहल संकट के दौरान देश क्षेत्र में ऊर्जा की आपूर्ति बनाए रखने में मदद करेगी। श्री रूबियो ने बताया कि अमरीका इस साल का और विस्तार करने के उद्देश्य से इस वर्ष के अंत में ईंधन सुरक्षा मंच के लिए क्वाड देशों की मेजबानी करेगा। श्री रूबियो ने कहा कि क्वाड देश मजबूत मूल्यों को साझा करते हैं और उनके हित आपस में जुड़े हुए हैं।
4: सहयोग के जिन क्षेत्रों पर हम मिलकर काम कर रहे हैं वे हाल ही में दुनिया भर में हुई घटनाओं के कारण और भी अधिक प्रासंगिक और महत्वपूर्ण हो गए हैं। इसलिए आज मुझे लगता है कि हम उन क्षेत्रों में अपने संबंधों को क्रियान्वित करने में और भी अधिक प्रगति करेंगे जिन पर हम सहयोग कर सकते हैं। क्वाड के बारे में सबसे दिलचस्प बात यह है कि हम साझा हितों के क्षेत्रों में विचारों का आदान प्रदान करने के लिए एक साथ आते हैं। क्वाड तेजी से एक ऐसा मंच बनता जा रहा है जिसके माध्यम से हम कार्रवाई कर सकते हैं।
2: Action. जापान के विदेश मंत्री तोशिमित्सु मोतेगी ने होर्मुज जल डमरू मध्य में स्वतंत्र और सुरक्षित आवागमन सुनिश्चित करने के साथ पश्चिम एशिया में स्थिरता लाने में कूटनीतिक प्रयासों के महत्व पर बल दिया। ऑस्ट्रेलिया की विदेश मंत्री पेनी वोंग ने कहा कि क्वाड ने आज सुरक्षा पहल और महत्वपूर्ण खनिजों जैसे क्षेत्रों में कई प्रयासों को आगे बढ़ाया है। भारत और अमरीका ने आज महत्वपूर्ण खनिजों और दुर्लभ मृदा तत्वों की आपूर्ति, खनन और प्रसंस्करण को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से महत्वपूर्ण द्विपक्षीय ढांचे पर हस्ताक्षर किए। ये ऐतिहासिक समझौता विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर और अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो के बीच हुआ। आज दोपहर बाद जापान और ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्री सेवा तीर्थ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेंगे। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। गृहमंत्री अमित शाह ने आज राजस्थान में भारत पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित सांचू सीमा चौकी का दौरा किया। उन्होंने इस क्षेत्र में तैनात सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ के जवानों से बातचीत की और देश की सीमाओं की रक्षा के प्रति उनके समर्पण की सराहना की। इस दौरान गृहमंत्री ने राज्य के सीमावर्ती क्षेत्रों के लिए वाइब्रेंट विलेजेस प्रोग्राम के दूसरे चरण की शुरुआत की। श्री शाह बीकानेर स्थित बीएसएफ मुख्यालय में सीमा सुरक्षा बल पर एक बैठक की अध्यक्षता करेंगे। उत्तर प्रदेश में आज आगरा लखनऊ और पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर दो अलग अलग सड़क हादसों में 10 लोगों की मौत हो गई। पहली घटना में उन्नाव जिले के पास आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर बस पलटने से 6 लोगों की जान चली गई और 10 से अधिक लोगों के घायल हो गए। अधिकारियों ने बताया है कि बस दिल्ली से गोरखपुर जा रही थी, तभी औरास पुलिस थाना क्षेत्र के पास चालक ने नियंत्रण खो दिया जिससे बस पलट गई। एक अन्य घटना बाराबंकी जिले के पास पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर हुई जिसमें 4 लोगों की मृत्यु हो गई। ओडिशा के कालाहांडी जिले में निर्माणाधीन सेप्टिक टैंक में दम घुटने से 6 लोगों की मौत हो गई और एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया। यह घटना मदनपुर रामपुर पुलिस स्टेशन के अंतर्गत गौड़ कालाखुंटा गांव में हुई। पुलिस के अनुसार मजदूर सेप्टिक टैंक से लकड़ी के ढांचे को हटा रहे थे, तभी जहरीली गैसों या ऑक्सीजन की कमी के कारण उनका दम घुट गया। मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी ने इस त्रासदी पर गहरा दुख व्यक्त किया है और मृतकों के परिजनों को 4-4 लाख रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है।

0: जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में गंडोला रोपवे में तकनीकी खराबी आने के बाद फंसे सभी पर्यटकों को सुरक्षित बचा लिया गया है। अधिकारियों के अनुसार रोपवे के 65 कैबिनों में 300 से अधिक पर्यटक फंस गए थे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सफल बचाव अभियान की सराहना की है। सरकार देश में एक मजबूत, भरोसेमंद और टिकाऊ सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम विकसित करने के लिए कई महत्वपूर्ण पहल कर रही है। सेमीकंडक्टर इंडिया कार्यक्रम के अंतर्गत निर्माण और पैकेजिंग की 12 परियोजनाओं के साथ साथ 24 सेमीकंडक्टर डिजाइन परियोजनाओं को भी मंजूरी दी जा चुकी है। दूरसंचार विभाग ने नागरिकों के लिए इंटरनेट का उपयोग आसान बनाने की दिशा में प्रधानमंत्री वाईफाई एक्सेस नेटवर्क इंटरफेस पीएम वाणी के अंतर्गत सुधारों की पहल की है। संचार मंत्रालय ने कहा है कि सभी पीएम वाणी हितधारकों को संशोधित दिशा निर्देशों को लागू करने और इस वर्ष जुलाई तक पूरे इकोसिस्टम में नई उपयोगकर्ता अनुकूल सुविधाओं को चालू करने का निर्देश दिया गया है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @EIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। पूर्व उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू और पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवेगौड़ा ने आज नई दिल्ली में अपनापन नरेंद्र मोदी संग मेरे अनुभव नामक पुस्तक का विमोचन किया। ये पुस्तक केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा लिखी गई है। इस अवसर पर श्री नायडू ने कहा कि सभी को, विशेषकर उभरते हुए राजनेताओं को, इस पुस्तक को अवश्य पढ़ना चाहिए। श्री देवेगौड़ा ने कहा कि पुस्तक एक सामान्य राजनीतिक जीवन नहीं, बल्कि ये दर्शाती है कि श्री मोदी और श्री शिवराज ने जनता के कल्याण के लिए कैसे मिलकर काम किया। इस अवसर पर श्री चौहान ने कहा कि पुस्तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ उनके दशकों के अनुभव पर आधारित है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल के 12 वर्ष पूर्ण होने पर उन्हें बधाई दी।
1: आज 26 मई है, ये वो ऐतिहासिक दिन है जब श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने पहली बार प्रधानमंत्री पद की शपथ ग्रहण की थी। मैं भी उनको बधाई देता हूँ और आप सब भी उनका अभिनंदन करें। लेकिन मेरा और उनका साथ 35 साल पुराना है और इन 35 सालों में मैंने उनको हर क्षण देश के लिए जीते हुए देखा है। उनका हर कदम देश की प्रगति और विकास के लिए उठा है। मैंने उनके दिल को जनता के लिए धड़कते हुए देखा है।
0: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने नरेंद्र मोदी सरकार के आज 12 साल पूरे होने पर इसे भारत की सभ्यता और विकास यात्रा का बदलाव लाने वाला दौर बताया। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि 26 मई 2014 को देश के प्रशासन, सोच, नेतृत्व और राष्ट्रीय संकल्प में एक निर्णायक बदलाव आया जब श्री मोदी ने प्रधानमंत्री के तौर पर शपथ ली। भारतीय जनता पार्टी अध्यक्ष नितिन नवीन ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यभार संभालने के बाद से देश ने अभूतपूर्व आत्मविश्वास और नए सांस्कृतिक पुनर्जागरण का ऐतिहासिक क्षण देखा है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री नवीन ने सरकार के सुशासन और राष्ट्र प्रथम की भावना से प्रेरित पिछले 12 वर्ष के कार्यकाल को अभूतपूर्व बताया। बीजू जनता दल के पूर्व राज्यसभा सांसद देवाशीष सामंतराय भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए हैं। उन्हें नई दिल्ली स्थित पार्टी मुख्यालय में भाजपा के महासचिव अरुण सिंह और ओडिशा के प्रदेश अध्यक्ष मनमोहन सामल सहित वरिष्ठ नेताओं की मौजूदगी में पार्टी में शामिल किया गया। खाद्य ग्रामोद्योग आयोग ने स्वदेशी उत्पादों को बढ़ावा देने की दिशा में नया रिकॉर्ड बनाया है। वित्त वर्ष 2024-25 में कारोबार 1,87,000 करोड़ रुपए तक पहुंच गया है। आज नई दिल्ली में संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए खाद्य ग्रामोद्योग उद्योग के अध्यक्ष मनोज कुमार ने कहा कि यह उपलब्धि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व और लाखों ग्रामीण कारीगरों की मेहनत के फलस्वरूप प्राप्त हुई है। घरेलू शेयर बाजार के संविधि सूचकांक में दोपहर के कारोबार में गिरावट का रुख है। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 251 अंक गिरकर 76,238 जबकि निफ्टी 50 अंक की गिरावट के साथ 23,982 पर था। सऊदी अरब में वार्षिक हज यात्रा का सबसे पवित्र और महत्वपूर्ण दिन आज अराफात का दिन है। दुनिया भर से लाखों मुसलमान जुलहिजा की 9 तारीख को मक्का के पास अराफात के मैदान में इकट्ठा हुए हैं ताकि वे हज की प्रमुख रस्म अदा कर सकें। जायरीन निमरा मस्जिद में खुतबाए हज या हज का उपदेश सुनेंगे और शाम को मुजदलिफा के लिए रवाना होने से पहले दोपहर और शाम की नमाज एक साथ अदा करेंगे। इस रस्म को हज पूरा करने के लिए अनिवार्य माना जाता है। मुजदलिफा से जायरीन कल सुबह कुर्बानी और शैतान को पत्थर मारने के लिए प्रतीकात्मक रस्म के लिए मिना लौटेंगे। इस साल के हज में 1,75,000 से भी ज्यादा भारतीय जायरीन हिस्सा ले रहे हैं।

0: अमेरिका और ईरान के बीच तनाव और बढ़ गया है। अमेरिकी सेना ने दक्षिणी ईरान में नए हवाई हमले किए हैं। इन हमलों को वाशिंगटन ने अपने सैनिकों की सुरक्षा के लिए आत्मरक्षा में की गई कार्रवाई बताया है। आईपीएल क्रिकेट में आज क्वालिफायर वन में मौजूदा चैंपियन रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का सामना गुजरात टाइटंस से होगा। ये मुकाबला धर्मशाला में शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। विजेता टीम फाइनल में पहुंचेगी, जबकि हारने वाली टीम को क्वालिफायर टू में एक और मौका मिलेगा। मौसम विभाग ने बताया है कि मिजोरम में आज मॉनसून की शुरुआत हो गई है। केरलम में दक्षिण पश्चिम मॉनसून के कल तक पहुंचने की संभावना है। एक रिपोर्ट।
1: मौसम विभाग ने केरलम के तिरुवनंतपुरम, कोल्लम और अल्लापुझा जिलों में आज अलग अलग स्थानों पर तेज वर्षा की आशंका को देखते हुए येलो अलर्ट जारी किया है। कई दक्षिणी क्षेत्रों में लगातार बारिश जारी है। कोच्चि, मुन्नार, कुमारकोम, निलाक्कल, कुमिली, सबरीमला, वर्कला और पोनमुडी सहित कई स्थानों पर आज सुबह 10 बजे से लगभग 5 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई है। लक्षद्वीप के अमिनी, अगाती और कवरत्ती में भी 5 से 15 मिलीमीटर के बीच बारिश हुई है। अधिकारियों ने बताया है कि मौसम की स्थिति पर बारीकी से नजर रखी जा रही है। तिरुवनंतपुरम से स्मृति एम पल्लुरुथी की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं कनकलता।
0: इस बीच विभाग ने आज दिल्ली में भी भीषण गर्मी का येलो अलर्ट जारी किया है। राजधानी में कल तक लू की स्थिति की संभावना है। हरियाणा, चंडीगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश, पंजाब, उत्तर प्रदेश, विदर्भ और पश्चिम राजस्थान में आज भी भीषण लू चल सकती है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने नई दिल्ली में क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक की अध्यक्षता की। क्वाड ने स्थिर और सुरक्षित ऊर्जा बाजारों की प्रतिबद्धता व्यक्त की। भारत और अमेरिका ने महत्वपूर्ण खनिजों और दुर्लभ मृदा तत्वों की आपूर्ति, खनन और प्रसंस्करण को मजबूत करने के लिए एक महत्वपूर्ण समझौते पर हस्ताक्षर किए। गृहमंत्री अमित शाह ने राजस्थान के सांचू सीमा चौकी का दौरा किया। राज्य के सीमावर्ती क्षेत्रों में वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम के दूसरे चरण का शुभारंभ किया। सऊदी अरब में लाखों जायरीन आज हज की मुख्य रस्म अदा कर रहे हैं। और आईपीएल क्रिकेट में धर्मशाला में क्वालिफायर वन में आज शाम गुजरात टाइटंस का मुकाबला मौजूदा चैंपियन रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से होगा। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: ये है विविध भारती, देश की सुरीली धड़कन। लीजिए सुनिए कार्यक्रम सदाबहार नगमे में।

0: मीडियम वेव 438.6 मीटर अर्थात 684 किलोहर्ट्ज़ और एफएम 100.9 मेगाहर्ट्ज़ पर यह आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। श्रोताओं आइए सुनते हैं मौसम की जानकारी। मौसम विभाग से प्राप्त सूचनाओं के अनुसार जन सेवाओं और मछुआरों के लिए कोई विशेष चेतावनी नहीं है। कल सुबह तक के मौसम संबंधी पूर्व अनुमान में बताया जाता है कि अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह के एक या दो भागों पर 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे के वेग से हवाएं चलेंगी तथा कुछ भागों पर हल्के से मध्यम वर्षा होने तथा गरज के साथ छींटे पड़ने की संभावना है। ये थी मौसम की जानकारी। इस समय 2:32 होने वाले हैं। अब प्राइमरी चैनल पर हमारी पहली सभा समाप्त होती है। अपनी दूसरी सभा में शाम 4 बजे हम आपकी सेवा में फिर उपस्थित रहेंगे। तब तक के लिए हम आपसे अनुमति चाहते हैं, लेकिन अब से लेकर 4 बजे तक हम आपसे जुड़े रहेंगे 100.9 मेगाहर्ट्ज़ एफएम पर स्थानीय कार्यक्रमों के साथ। नमस्कार।
1: FM 3 विजयपुरम 100.9 आपका हम

हम बोल रहे हैं विविध भारती FM श्री विजयपुरम केंद्र से और हमारा प्रसारण उपलब्ध है 100.9 MHz पर। श्रोताओं, अब प्रस्तुत है फिल्मी गीतों का कार्यक्रम नॉनस्टॉप म्यूजिक।

निशुल्क कानूनी सहायता टेलीलॉ के ऐप वेबसाइट www.tele-law.in या टोल फ्री नंबर 1-4454 से प्राप्त की जा सकती है।

0: बेटा मैं कल अपने भतीजे के घर होके आया, देखकर हैरान रह गया कि वो लोग दिन भर एसी चलाते हैं, रोज वॉशिंग मशीन चलाते हैं, घर में दो दो फ्रिज हैं, फिर भी उसका बिजली बिल पता है कितना आता है? जीरो। मैंने पूछा तो भतीजा बोला, चाचा जी सब ऊपर वाले की दया है। मतलब सोलर पैनल की। मैंने सोचा अब तो लगवाना ही पड़ेगा।
1: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें PM सूर्य घर .gov.in पर।

हकीकत में बदलने के लिए सही समय पर सही कदम उठाना जरूरी है। भारतीय वायुसेना में कमीशन्ड ऑफिसर बनने के लिए एफकैट 2 ऑफ 2026 के आवेदन 20 मई से खुले हैं। विवरण के लिए विजिट करें fcat.edcil.co.in पर।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे नॉनस्टॉप म्यूजिक। इस कार्यक्रम में आपने सुना डर, फूल और कांटे, राजा हिंदुस्तानी, धड़कन, सलामी, विजयपत, बरसात, दिल का क्या कसूर, टक्कर, सपने साजन के क्रिमिनल। इस फिल्म का गीत आपने सुना। हम बोल रहे हैं विविध भारती FM श्री विजयपुरम केंद्र से, और हमारा प्रसारण उपलब्ध है 100.9 MHz।

नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं हमारा खास संगीत कार्यक्रम यूं ही गाते रहो, जहां हर एक गीत अपने साथ यादों की नई कहानी लेकर आता है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं कुछ खुशनुमा नगमा, जिसे सुनते ही दिल में प्यार और मौसम दोनों ही खिल उठते हैं। दोस्तों, जब भी बारिश का मौसम आता है, ठंडी हवाएं चलती है और चारों तरफ हल्की हल्की फुहारें गिरने लगती है, तब प्रकृति भी इस गीत के साथ झूमने लगती है।

0: दोस्तों, खुशनुमा मौसम दिल को हल्का सा मुस्कुराने पर मजबूर कर देता है। यह गीत हमें याद दिलाता है कि जीवन के सबसे खूबसूरत पल वही होते हैं जब दिल खुश हो, अपने साथ हो और मौसम प्यार भरा लगे। सच में यही तो है मौसम का असली जादू।
1: 10, 9, 8, 7 5, 4, 3, 2, 1, let's start the fun!

दोस्तों, एक प्यार भरा शाम भी साधारण शाम को भी और भी यादगार बना देती है। जैसे जैसे सूरज ढलता है, वैसे वैसे इस गीत की भावनाएं और भी गहरी होती जाती है।

0: मीडियम वेव 438.6 मीटर अर्थात 684 किलोहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। शाम के 4 बजे हैं। आज की हमारी दूसरी सभा में हम अपने सभी श्रोताओं का हार्दिक अभिवादन करते हैं। सभा के आरंभ में प्रस्तुत है निकोबारी कार्यक्रम।
1: लामक तेलंगी मीडियम वेव तो 438.6 मीटर है 684 किलोहर्ट्स रामांग एलंगी आकाशवाणी इसरी विजयपुरम अन्नी निकोबारी प्रोग्राम तहांग मिन कातलून ही इंगल हराब मिन कातलून यिप स्टूडेंट्स आलंगम चे एनआरएम तंगम टाइम टेबल हाले लंगम पांडिचेरी यूनिवर्सिटी मे जून एग्जाम्स 2026 इनमे एन ई पी स्टूडेंट्स न के कारण मिन गम एग्जाम्स चा नलक्त कुइप्त निरानाय माचूहतर अलाउ चिंगे नज इनमे सी पी सी एस स्टूडेंट्स नलक्त कु इप्त लुई अलाब यामी चून चिंगे मिन नज हेक इनमे पी जी स्टूडेंट्स नलक्त कुइप्त इप्राने अलाब चून चिंगे मिन न के कारण नुब एग्जाम्स हो तो इप स्टूडेंट्स न डायरेक्ट न कलेक्ट नुब हॉल टिकट्स रे एलगम एडमिशन हेक एग्जामिनेशन विंग्स एलगम चे एन आर एम कैंपस रूम नंबर 406 नून हलोन एलमिने तनेट सुमकाम कॉरन इंटे स्टूडेंट्स नंगे कनु टाइम टेबल रनेल ऑनलाइन एलगम ऑफिशियल वेबसाइट नम पांडिचेरी यूनिवर्सिटी https://exam.pondu.edu.in/oasis/ugbg-tt.htm लमक तेलंगम चेनारेम श्री विजयपुरम अन्नी मिन कातलून मिन कातलून ही हे तेनला हेन कु निकुन बनम ही अंडमान निकोबार आइलैंड्स एलमिने द फैन त्रेसुम काम ngam kun ro ga to holuran dangam te kasawar ku fur te mi hoy na telnga te luyana hek fan anai kilometer per house hengare te kali hanyale intre neinupte heng net kam nge ikui mine kun banam hi elmine ta net net tresum kam ngati inte min ngam tesuk terekum ra teluk tuku tasat selita kauksin centimeter rock and run sanuk tere no holuran inte te kun ro ke hek ta kale fane kare ku fur te telnga ta fane na hek ta ni ana kilometer per hours rock and run speed na fur kare elmine telui tresum kam तनेरनाय लुयानाय हेक लुयानाय काहुक अलाउ चिंगे मिन लमक तीन गाम डायरेक्टरेट ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट एंड मिन कातलून हॉय द हेक सिन्हांगी तरे तरन मिन महावत करेचो लमक हॉय ने कुन बनम ही

0: Ngacin tahu hang mene tahale lenga ta asuni ran tin ke ke. Hoye hang atel ngha ang en ngacin tahu mu hek en hurj. Hang rong ita ke saat ita fan kan ro tala harap ngayen.
1: अभी आप निकोबारी कार्यक्रम सुन रहे थे। ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। शाम के 4:30 हुए हैं। सुगम संगीत आज के हमारे इस कार्यक्रम में कलाकार है रूप कुमार राठौर, सोनाली राठौर, सबिता चौधरी और सुलक्षणा पंडित।

सुगम संगीत के कार्यक्रम में अभी आप रूप कुमार राठौर, सोनाली राठौर, सबिता चौधरी और सुलक्षणा पंडित को सुन रहे थे। आकाशवाणी का ये श्री विजयपुरम केंद्र है। शाम के 4:40 हुए हैं। अब सुनिए हमारे केंद्र से आज के शेष व कल प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों का विवरण। पहले आज के शेष कार्यक्रम। अब से कुछ ही पलों में यानी 4:45 पर फिल्मी गीतों का कार्यक्रम होगा बहारों की शाम। 5 तमिल में महिलाओं के लिए कार्यक्रम होगा मगलर उलगन। बंगला कार्यक्रम के तहत शाम 5:30 पर काजी नजरुल इस्लाम पर चर्चा आप सुनेंगे। संध्या 6 किसान वाणी कार्यक्रम में न्यू वंडूर की महिला श्रीमती सुकलता पहन से कृषि और ग्रामीण विकास विषय पर बातचीत होगी। फिल्मी गीतों का कार्यक्रम शामी बहार आप सुनेंगे संध्या 6:30 पर। मौसम की जानकारी और जलयानों की यात्रा कार्यक्रम से हम आपको अवगत करवाएंगे 7:15 पर। 7:20 पर फिल्मी गीतों का कार्यक्रम होगा दिल ने फिर याद किया। यू वाणी के तहत 7:30 पर कार्यक्रम होगा देश की शान। फिल्मी गीतों का कार्यक्रम चित्रपट संगीत का समय रहेगा रात 8:00। 8:30 पर आप सुनेंगे रोजगार समाचार और गौरव गान। रात 10:00 संदेश पर आधारित फिल्मी गीतों का कार्यक्रम होगा संदेशे आते हैं। इन कार्यक्रमों के अलावा 9:15 पर स्पॉटलाइट, 9:30 पर मनी टॉक, 9:45 पर मंथन हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। इसके अतिरिक्त रात 10:00 FM 100.9 MHz पर विविध भारती मुंबई से प्रायोजित कार्यक्रम होगा छाया गीत। ये थे हमारे केंद्र से आज के शेष कार्यक्रम। अब एक नजर हमारे कल के कार्यक्रमों पर। कल हमारी प्रातःकालीन सभा आरंभ होगी सवेरे 5:25 पर। 5:30 पर अनमोल विचार तत्पश्चात आप सुनेंगे भक्ति गीतों का कार्यक्रम प्रभाती वंदना। एग्रीटिप्स में 5:55 पर जानकारी का विषय रहेगा रतन जोत की खेती। 6:15 पर इंद्रधनुष कार्यक्रम केंद्रित होगा गुलाब विषय पर। रामचरित मानस गान का समय रहेगा 6:30। 7:15 पर देश भक्ति गीतों पर आधारित कार्यक्रम होगा देश रागिनी, जबकि FM 100.9 MHz पर आप सुनेंगे कार्यक्रम भूले बिसरे गीत। प्राइमरी चैनल और FM 100.9 MHz पर गुड मॉर्निंग अंडमान के तहत आप सुनेंगे साहित्य दर्पण कार्यक्रम 7:30 पर। सुगम संगीत के कार्यक्रम में 8:30 पर कलाकार होंगे पीनास मिसानी, पंकज उधास और अनूप जलोटा। सुबह 9:00 फिल्मी गीतों का कार्यक्रम होगा तराने सुहाने। शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में सुबह 9:30 पर पंडित राजन व साजन मिश्रा का गायन सुनवाया जाएगा। फिल्मी गीतों का कार्यक्रम गीत गाता चल आप सुनेंगे सुबह 10:00। प्रायोजित कार्यक्रम NCERT का समय रहे

का कल दिन के 11:30 पर फिल्मी गीतों का कार्यक्रम होगा चित्रलोक। दोपहर 12 बजे तेलुगु में कार्यक्रम होगा वनिता वाणी और कुछ फिल्मी गीत सुनवाए जाएंगे। मलयालम कार्यक्रम में आप सुनेंगे बकरीद पर वार्ता और फिल्मी गीत। महफिल कवाली कार्यक्रम में 1:10 पर कव्वाल होंगे शंकर शंभू, हबीब पैंटर कव्वाल और कौसर आजाद बदायूनी। 1:30 पर कार्यक्रम होगा आपके नाम फिल्मी पैगाम। दोपहर बाद 2:30 पर मौसम की जानकारी के बाद प्राइमरी चैनल पर हमारी पहली सभा संपन्न होगी, जबकि FM 100.9 MHz पर आप सुनेंगे हमारा लाइव फोन आउट कार्यक्रम हेलो डियर फ्रेंड्स। यूं ही गाते रहो कार्यक्रम का समय रहेगा 3:30 पर। कल हमारी दूसरी सभा आरंभ होगी शाम 4 बजे निकोबारी कार्यक्रम के साथ, जिसमें सूचनाओं के अलावा किमियोस गांव के सदस्यों से कुछ गीत आप सुनेंगे। 4:30 पर प्रायोजित कार्यक्रम होगा लम्हे। तमिल कार्यक्रम में शाम 5 बजे एक ही संगीतकार के कुछ गीत सुनवाएंगे। 5:30 पर बंगला कार्यक्रम में आधुनिक गीत सुनवाया जाएगा। कृषि जगत कार्यक्रम के तहत संध्या 6 बजे डॉक्टर NC चौधरी से बातचीत होगी, विषय रहेगा तालाब पर आधारित बतख पालन। 6:30 पर फिल्मी गीतों का कार्यक्रम होगा दर्द भरे नगमे, दिल ने फिर याद किया, ये कार्यक्रम आप सुनेंगे 7:20 पर। युवावाणी के तहत 7:30 पर कार्यक्रम होगा गीतों भरी कहानी। फिल्मी गीतों का कार्यक्रम चित्रपट संगीत का समय रहेगा रात 8 बजे। 8:30 पर आप सुनेंगे रोजगार समाचार और गौरव गान। रात 10 बजे फिल्मी गीतों का कार्यक्रम होगा सरगम। इन कार्यक्रमों के अलावा रात 9:15 पर स्पॉटलाइट, 9:30 पर चर्चा का विषय होगा, जिसे हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। इसके अतिरिक्त FM 100.9 MHz पर रात 10 बजे विविध भारती मुंबई से प्रायोजित कार्यक्रम होगा छाया गीत। ये थे हमारे केंद्र से आज के शेष व कल प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की रूपरेखा। आकाशवाणी का ये श्री विजयपुरम केंद्र है। शाम के 4:45 हुए हैं। पेश है फिल्मी गीतों का कार्यक्रम बहारों की शाम। कार्यक्रम का आगाज हम कर रहे हैं कुमार सानू और आशा भोसले के युगल स्वरों में जुल्मी फिल्म से। इसे रचा है गुलशन बावरा ने और संगीत दिया है दिलीप सेन व समीत सेन ने।

सोनू निगम और सुनिधि चौहान के युगल स्वरों में ये अगला गीत को रचा है समीर ने, धुन तैयार किया है अनु मलिक ने और फिल्म का नाम है मुझसे शादी करोगी।

0: मुझसे शादी करोगे फिल्म के इस गीत के साथ ही फिल्मी गीतों का कार्यक्रम बहारों की शाम अब यहीं संपन्न हुआ। आकाशवाणी का ये श्री विजयपुरम केंद्र है, शाम के 5 बजे हैं, प्रस्तुत है तमिल कार्यक्रम।
1: ஆகாஷ்வாணி ஸ்ரீ விஜயபுரம் வானொலி நிலையம் வழங்கும் தமிழ் அமுதம் வணக்கம் நேயர்களே.

0: किसान वाणी कार्यक्रम सुनने वाले सभी किसान भाई बहनों को शांता का
1: और आंचल का नमस्कार।
0: आंचल, हमेशा की तरह कार्यक्रम की शुरुआत हम आज के खूबसूरत विचार से करें।
1: बिल्कुल शांता और किसान साथियों, आज का विचार है, जीवन के हर कार्य को ऐसे करें जैसे कि वह आपका अंतिम कार्य हो। यानी यदि हम हर काम को पूरे स्मरण और ईमानदारी से करें तो हमें मानसिक शांति मिलेगी।
0: बिल्कुल सही। जब तक हमें मानसिक शांति नहीं मिलेगी तब तक वो कार्य को हम सफल नहीं मान सकते। जब कोई कार्य सफल हो जाता है तो हमें शांति मिल जाती है। बहुत अच्छे विचार, और इसी विचार को लिए हम आगे बढ़ते हैं। आचल, अपने किसान साथियों से पूछ लेते हैं आज का प्रश्न। हमारा आज का प्रश्न है, बटेर कितने दिनों में बेचने लायक हो जाती है, ये हमारे किसान साथियों को बताना है। आचल, प्रश्न एक बार फिर दोहरा दो।
1: बिल्कुल शांता, बटेर कितने दिनों में बेचने लायक हो जाती है, किसान साथियों इस प्रश्न का उत्तर आपको सोचना है।
0: किसान साथियों, प्रश्न के उत्तर आप सोचते रहें और कार्यक्रम में हमारे साथ बने रहें। कार्यक्रम के अंत में हम आपको इस प्रश्न का सही उत्तर अवश्य ही बताएंगे।
2: प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना मिलेगा।

0: प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना से लघु सीमांत किसानों का भविष्य होगा सुरक्षित
1: और 60 वर्ष की आयु से 3000 रुपए मासिक पेंशन होगी सुनिश्चित।
0: 55 रुपए से 200 रुपए की मासिक किश्त देकर प्रवेश कर सकते हैं 18 से 40 वर्ष तक के किसान।
1: इस अंशदायक योजना में सरकार देगी बराबर का योगदान।
0: सभी किसान भाई बहन इस योजना के लाभ के लिए जन सेवा केंद्र में जाएं
1: और अपना निःशुल्क नामांकन कराएं।
0: प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना, अन्नदाता के परिश्रम को संबल, पेंशन से सुरक्षित उनका कर।
2: कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
3: किसान साथियों, आप सभी कृषि कार्य कर ही गुजर बसर करते हैं और कृषि कार्यों से जुड़े जो भी जानकारियां हैं वो आपको प्रदान करता है आपका पंचायत। तो चलिए हम आपको मिलवाते हैं पंचायत की PRI मेंबर न्यू वंडूर की रहने वाली श्रीमती सुखलता पाहान जी से। तो चलिए मिलते हैं इनसे और सुनते हैं इनसे की गई बातचीत, जिसके माध्यम आप जानेंगे कि न्यू वंडूर में कृषि और ग्रामीण विकास कहां तक सफल है।
4: किसान साथियों, आज हम बात करेंगे कृषि और ग्रामीण विकास के संदर्भ में। इस विषय पर विस्तार पूर्वक बात करने के लिए आज हमारे साथ कार्यक्रम में हैं न्यू वंडूर गांव की PRI मेंबर सुखलता पाहन जी। सुखलता, कार्यक्रम में हम आपका स्वागत करते हैं।
5: नमस्कार मैडम, दोबारा मुझे इस प्रोग्राम में बुलाने के लिए आपको भी धन्यवाद।
4: हम में ही आपसे जानना चाहेंगे कि आप PRI मेंबर है, कितने वर्षों से हैं और वंडूर के विकास में आपका क्या योगदान है।
5: मैडम, मेरा इस बार मेरा चुनाव हुआ है, मैं 4 वर्ष से अंडूर पंचायत में कार्य कर रही हूँ, तो इसमें बहुत मेरा योगदान है। जैसा कि मेरा जितने भी PRI है बहुत ही अच्छे है, जिला परिषद है, सभी मिलजुल के हम लोग काम करते हैं। बीच का डेवलपमेंट हो गया, बीच क्लीन हो गया, रोड का अगल बगल सफाई हो गया, फिर हम लोग जितने भी इलेक्ट्रिक पोल खराब था सारे पोल को हमने ठीक कराया। थोड़ा एक जगह में बाकी है, पोल नहीं है अभी, इलेक्ट्रिक पोल अभी वो भी कराना है। जैसे कि गांव में बहुत पानी का समस्या था पहले, हमारे गांव में जब पाइप का लाइन नहीं थे तो हमारे जो

0: सर है, जय सर, उन्होंने हमारे गांव को विजिट करे हम मेरे साथ मिलकर। फिर हम जाके उस गांव में जाके सारे जहाँ जहाँ में पाइप नहीं था वहाँ हमें जाके हम पाइप का जो मोटा मोटा पाइप होता है सारे पाइप को डला, फिर उसमें पाइप कनेक्शन डलाया। फिर अभी सब अच्छा है कि सभी को पानी मिल रहा है समय समय, 2 दिन के बाद पानी आ रहा है, अच्छा से पानी
1: पानी
0: दे
1: आ
0: रहा
1: रहा है,
0: है।
1: यानी कि पानी की ज़रूरत सबको पड़ती है। और गांव में जो है, आप PRI मेंबर होने के नाते इतना सारा काम अपने गांव के लोगों के लिए कर रही है, अपने गांव के विकास के लिए कर रही है, स्थानीय लोगों के लिए जो कार्यान्वयन किया जा रहा है, उसकी कुछ योजनाएं होंगी, तो उस योजनाओं के बारे में बताएं।
0: मैडम, जैसे कि मैं एक महिला हूँ कि
1: जी
0: मैं पहले घर में बैठी रहती थी, कुछ काम नहीं करती थी, घर में जो पति कमा के लाते थे वही खाते थे, और उसमें गुजारा नहीं हो पा रहा था। तो आस्ते आस्ते मैं अपना काम शुरू कर दिया था, तो इसमें भी मेरा हस्बैंड, मेरा घर का सपोर्ट था, इसको बिना नहीं कर पाते थे, तो
1: बिल्कुल
0: उसका बहुत सपोर्ट था। तो फिर मैं PRA में आई, फिर आस्ते आस्ते लोगों का मदद करना भी शुरू कर दिया। तो जैसे कैसा मदद, मेडिकल में लेके जाना हो,
1: जी
0: देखते थे बहुत सारे बच्चे की बाहर नहीं जाके सिलाई नहीं कर पाते थे, कुछ ट्रेनिंग हो नहीं कर पाते थे, तो हमने उसका बहुत ये करा, जैसे सिलाई सेंटर का एक ट्रेनिंग कराई नहीं, वांडू बस्ती में लेके घर में किसी का घर
1: जी
0: लेके हम लोग उसमें सीखा था। तो और है मशरूम ट्रेनिंग कराए, मधुमक्खी पालन हो, जैसे कि हमारा जो पशु विभाग के जो डॉक्टर हैं हमारे, उनका द्वारा भी बहुत मदद मिली मुझे। जैसे मुर्गी हर गांव में सभी को पालना है, मुर्गी हर गांव में देना है, तो सर को हम इतना मुर्गी चाहिए मेरे गांव में, तो सर को लिख के देते भी, बता कितना चाहिए, तो मेरे सर को बता दे देते। इतना बोलते थे कि सर को, सर मेरे को हर जगह आप दे दीजिए, मेरा गाँव में जो है एक ही साथ देना, सभी को मिलना चाहिए, तो
1: अच्छा
0: सभी को देते थे। जैसे घास उगाना हो, हमारे जो चंपा रानी दास है हमारे गाँव के, उनका पास गाय है, 32 गाय है, मुर्गी है, बतख है, उनका घर में हम लोग घास उगाए, उगाने के लिए भी हम लोग गए थे,
1: अच्छा
0: तो वो भी
1: तो
0: काम
1: वो
0: करे
1: घास आपको कहाँ से प्राप्त होगी?
0: सर, डिपार्टमेंट से दिए थे हम लोग जो
1: कृषि
0: पशुपालन के,
1: विभाग, पशुपालन
0: जी
1: विभाग से।
0: उन्होंने दिए थे डॉक्टर, उन लोग आके साथ में लेके हम लोग घास को उगाए थे, हमें काटे थे।
1: तो सुखलता, हम ये जानना चाहेंगे, जो घास उगाया गया तो वो अच्छी तरह से उसका
0: हाँ
1: ग्रोथ हुआ?
0: हुआ सर मैडम, क्योंकि उनका जो जमीन है थोड़ा कम है, फिर भी हम लोग जितने भी जमीन था उनका सारा जमीन में हम लोग घास को लगाया, और उनका जो गाय का जो गोबर है उन खाद से बहुत गांव के महिलाओं को बहुत सुविधा मिलता है, उन लोग घर में लेके सब्जी भी गाड़ते हैं उनका खाद से,
1: खाद बना सकते हैं।
0: खाद
1: जी
0: बनाते हैं, और दूध के लिए हम लोग बस्ती में सभी हिंदू है तो सभी को दूध भी चाहिए पूजा के लिए, उनका घर से मिल जाता है, तो इसके लिए बहुत बहुत उनको शुक्रिया गुजार करती
1: जी
0: हूँ कि उनका घर में इतना सारे गाय है। पहले गाय गांव में उतना नहीं होते थे, तो उनका घर में गाय होने के बाद से कि हर घर में दूध मिलता है पूजा के लिए, उसके लिए बहुत फायदेमंद हुआ है हम लोग के लिए।
1: यानी आप लोगों का भी सहयोग उनको प्राप्त हुआ, तभी जा करके वो आगे बढ़े। और भी लोग आपकी जो गांव में जो बहनें होंगी वो भी कर सकती हैं
0: हाँ कर सकते
1: पशुपालन।
0: हैं
1: तो आप
0: सभी,
1: PRI मेंबर होने के नाते गांव में जब आप विजिट करती हैं, जब आप गांव का दौरा करती हैं,
0: जी
1: तो क्या पाती है? क्या महिलाएं उत्सुक है, काम करना चाहती हैं?
0: मैडम, आजकल बहुत सभी बिजी हो चुके हैं, तो कोई कोई है घर में बैठा है, और बाकी ज्यादातर बाहर काम करने, जैसे हमारे बीच में सारे दुकान पाट हो चुके हैं, सभी ज्यादातर लोग वहाँ में दुकान में हैं, और घर में भी रहते हैं, घर में कोई ना कोई कुछ ना कुछ करते ही
1: करते
0: है,
1: ही हैं, यानी गांव की जो महिलाएं हैं वो खाली नहीं बैठी हैं।
0: खाली बैठे नहीं
1: देखिए,
0: हैं।
1: बहुत सारे सेल्फ हेल्प ग्रुप भी वहां पर
0: जी
1: बने हैं, उस
0: जी
1: सेल्फ हेल्प ग्रुप के जरिए भी कुछ ना कुछ काम कर रही हैं।
0: जी कर रहे हैं।
1: बिल्कुल। अब हम आते हैं स्वच्छता पर, साफ सफाई की ओर आप लोगों का क्या रुझान रहता है, कैसे आप काम करती हैं, क्या बताती हैं गाँव वासियों को?
0: मैडम, हमारे जो एक बीच है वहाँ में हर डिपार्टमेंट से साफ सफाई के लिए जाते हैं, हमारा जितने भी डिपार्टमेंट, जैसे एग्रीकल्चर हो गया हो, मेडिकल डिपार्टमेंट हो, RD डिपार्टमेंट हो, सारे लोग जो है हमारे साफ सफाई के लिए जाए, और जो हमारे पंचायत के सैनिटरी वर्कर है हर घर में डोर टू डोर जाते हैं कचरा लेने के लिए, उनको तो मतलब कैसे धन्यवाद करें कि उस
1: बिल्कुल
0: लोग, धूप हो बारिश हो कुछ भी हो, उस लोग को साइकिल दिया गया, एनिट का दौरा हमारा वहाँ में एक NGO है, उन लोगों को साइकिल डोनेट किए, वो चला चला के हर घर में हर डोर डोर में जाके कचरा उठाना, बोलना।

0: बहुत मेहनत वाला काम है, उस लोग
1: बिल्कुल
0: करते हैं मैडम। इस दौरा से हमारा गांव भी साफ
1: साफ
0: सफा
1: सुथरा है।
0: रहता है, सुंदर रहता है, और टाइम पे टाइम उस लोग आके भी लेके जाते हैं।
1: शिक्षा की क्या व्यवस्था है सुखलता जी आपके गांव में? शिक्षा, बच्चे क्या स्कूल जाते
0: हाँ,
1: हैं?
0: हमारे गांव में एक स्कूल है, गॉप मिडिल स्कूल है। तो वहाँ में दो स्कूल है विलेज में, वंडूर पंचायत को हमें एक स्कूल है, नज़दीक नज़दीक हमारे गांव में एक स्कूल है। तो बच्चे स्कूल के लिए सुविधा है, आंगनबाड़ी स्कूल भी है। वहाँ में
1: अच्छा।
0: सारा प्रोग्राम भी हम लोग करते हैं, मीटिंग करते हैं, बी एच एंड डी मीटिंग हो गया, सारे कुछ मेडिकल का जितने भी मीटिंग है हम लोग करते हैं। और हमारा जो आंगनबाड़ी मैडम हेल्पर बहुत ही अच्छे है, एक्टिव भी है।
1: यानी आंगनवाड़ी वर्कर ही है जो कि गांव में छोटे छोटे प्रोग्राम को करती हैं और लोगों को जमा करके सब कुछ बताती हैं।
0: जी
1: तो अब हम आते हैं पोषण पर, जैसे बच्चों को क्या आहार देना चाहिए आंगनवाड़ी में बताया जाता है, ट्रेनिंग प्रोग्राम दिया जाता है, सोशल वेलफेयर से काफ़ी आते हैं जा करके, समय समय पर वहाँ पर बताते हैं। तो आपके जो पंचायत से क्या सुविधाएं उनको दी जाती है?
0: हमारे पंचायत के द्वारा सुविधा बोलने से हमारे उन लोगों को तो सारा जो है मिल जाता
1: मिल
0: है
1: जाता है।
0: डिपार्टमेंट से। और हमारे हम कभी कभी क्या हमारा जो आना जाना रहता है, और रास्ते का साइड ही स्कूल है,
1: स्कूल है।
0: तो हम बीच बीच में उसमें अंदर जाते, तो बच्चे लोग का जो देखभाल है, साफ सफाई है, अच्छा रखती है। और खाना पीना भी उस लोग अच्छा टाइम पर 2 बार खाना देते हैं, सुबह 1 बार और दोपहर को 1 बार, तो अच्छा साफ सफाई के द्वारा देते हैं। तो हम जाके वहाँ में विजिट करते हैं, और न्यू वांडूर स्कूल में भी जाते हैं, वहाँ में जाके भी हम खाना को चेक करते हैं, तो
1: जी।
0: बुलाते भी है हमको वहाँ से, तो हम जाके खाना भी चेक करते, तो अच्छा है।
1: देखिए, जो गांव की आपकी महिलाएं हैं, हमारे जो पशुपालन विभाग हुआ या कैरी हुआ, समय समय पर वहाँ ट्रेनिंग प्रोग्राम दिए जाते हैं, तो आपके जो वंडूर गांव की महिलाएं हैं उसमें जाती हैं?
0: जी मैडम, अब फिलहाल जस्ट 10-12 दिन हो चुका है, वहाँ में हम लोग को मशरूम ट्रेनिंग कराया। वहाँ में 45 लेडीज हुए थे मशरूम ट्रेनिंग
1: अच्छा।
0: के लिए, और हम लोग को अच्छा तरीके से सिखाए, इतना अच्छा तरीके से गए। और अभी घर में किसी को बीजा लाके उस लोग उगाने शुरू करे, तो कुछ कुछ फोटो हमने क्लिक करके रखा है, तो अच्छा लगा
1: तो
0: देख
1: यानी
0: के।
1: मशरूम की खेती वो कर सकते हैं, जब
0: हाँ
1: उनको ट्रेनिंग प्राप्त हुआ है तो वो कर सकती हैं आराम से,
0: आराम से, वो एक सुविधा है, मतलब घर में बैठे कर
1: घर
0: सकते
1: में बैठ के
0: हैं,
1: कर सकते हैं, बाहर जाने की ज़रूरत
0: जरूरत नहीं
1: नहीं
0: है, खाली
1: है।
0: बीजा लाना है और पोल लाना है, बस इतना से लाके कर सकते हैं।
1: चलिए, बहुत अच्छी बात है कि आपके गांव में जो है वैज्ञानिक पहुंचते हैं और आपको ट्रेनिंग देते हैं ताकि हमारी महिलाएं घर बैठ करके कोई ना कोई कार्य कर सकें। अब हम आते हैं सामाजिक और आर्थिक कल्याण की ओर। तो आर्थिक कल्याण की ओर आप किस तरह से ध्यान देते हैं, क्या योजनाएं और चलाई जा रही हैं गांव में
0: मैडम,
1: ताकि लोगों का आर्थिक स्थिति मजबूत हो सके?
0: हमारे गांव में 100 दिन का रोजगार का काम होता है मैडम, उसमें बहुत सारे महिलाएं पुरुष काम करते हैं। अभी फिर से अगला मंथ में हमारा गांव में एक लंबा ड्रेन सफाई करने का काम आ चुका है, तो उसमें भी लोग महिला हमारे गांव में काम करते हैं मैडम। और है जैसे कि बस्ती में किस सैनिटरी वर्कर में हमने 2 लोगों को काम में लगाया है, करंट ऑफिस में 2 लोगों को काम में लगाए हैं, उस लोग कर रहे हैं, तो उस लोग खुश है हमसे कि हमको काम में दिया है और अच्छे से कर रहे हैं। हम अभी कभी बोलते हैं कि आप लोग इस काम में खुश हैं, मम्मी हमको आपने एक अच्छा मौका दिया है कि हम इसमें करके अपना बच्चा परिवार को पाल रहे हैं,
1: जी
0: तो
1: जी
0: वो सुन के अच्छा लगे। कोई सबका मन नहीं रख पाती हूँ मैं, ऐसा नहीं है कि सबका मन मैं रख पाती हूँ, कोई को हो सकता है मुझसे नाराज़ है, लेकिन मैं किसी से लड़ाई नहीं करती हूँ। अगर किसी से अनबन हो जाए, दूसरा दिन मैं बात कर लेती हूँ, किसी से मेरा कोई अनबन नहीं, कोई लड़ाई नहीं, हम सबसे बात करते हैं, और सबसे ज्यादा दोस्ती मेरे बच्चों से है।
1: अच्छा, चलिए अच्छी बात है। अब हम आते हैं युवाओं की ओर। गांव के जो युवा है वो अपने कार्यों में ध्यान देते हैं,
0: जी बहुत
1: क्योंकि
0: अच्छा,
1: आजकल आप देख रही हैं कि युवाओं का ध्यान दूसरी तरफ जा रहा है, तो कृषि की ओर उनका ध्यान अधिक नहीं है। आप क्या पाती है?
0: मैडम हमारे गांव के सारे लोग टूरिज्म में हैं
1: अच्छा।
0: युवाओं, तो हमारे बीच में अभी जस्ट हमारे PRI जिला परिषद हो, प्रधान जी हो, सारे मिलके हम सब PRI मिलके ओपन किया है, बोट ओपन किया है, तो ग्लास बॉटम बोट है, तो सारे बच्चे अभी वहाँ में काम कर रहे हैं। वो देख के मुझे अच्छा लगे, सारे लड़का लोग सारे यहाँ में आते थे, विजयपुरा में आके यहाँ में काम करते, तो आस्ते आस्ते सारे बच्चे वहाँ में काम कर रहे हैं, तो अच्छा लग रहा है। और हमारे वहाँ में एक होटल भी है, वहाँ में वह लोग काम करके अपना परिवार गुजारा

0: चला रही है।
1: युवाओं के लिए और कोई सुविधा आपके गांव में,
0: युवाओं के लिए सुविधा सारे
1: जैसे कि कोई पुस्तकालय हुआ, जैसे शाम के टाइम बच्चे अपना समय, जो युवा है अपना समय कैसे काटते, खेल कूद की कोई व्यवस्था?
0: मैडम हमारे गांव में अभी जस्ट अभी इस महीना में पुस्तकालय खुला है मैडम।
1: अच्छा
0: तो सारे गांव के बच्चों को हम बोला है, उसके पेरेंट्स को बोला है, आपका पास अगर पुराना बुक हो तो आप पुस्तकालय में जाके जमा कर सकती है, पंचायत में जाके जमा करिए, क्योंकि दूसरे बच्चों को काम है।
1: काम आ सके।
0: अभी जस्ट खुला है हमारा दक्षिण फाउंडेशन, एक एनजीओ है अनिट का द्वारा, तो उन्होंने खोला है, तो पंचायत के मदद से खोला है। तो वहाँ में जाके बच्चे खेल रहे हैं और पुस्तक पढ़ रहे हैं, वहाँ में एक ग्राउंड है स्कूल का, वहाँ में सारे बच्चे फुटबॉल खेल रहे हैं, वॉलीबॉल खेल रहे हैं, क्रिकेट खेल रहे हैं, वो हो रहा है, अच्छा लग रहा है देख देख के।
1: शुक्लता जी, आपने योगा की बात की, जो योगा ट्रेनिंग है 2 दिन का, वो आप ले करके अपने गांव में जा करके किस तरह से लोगों को सिखाएंगी?
0: मुझे 2 दिन का ट्रेनिंग बहुत अच्छे से सिखाया गया है। मुझे गांव में जाके जितने भी युवा युवा है, गर्ल्स हो बॉयस हो,

0: रहे, क्रिकेट खेल रहे, वो हो रहा है, अच्छा लग रहा है देख देख के।
1: शुक्लता जी, आपने योगा की बात की, जो योगा ट्रेनिंग है 2 दिन का, वो आप लेकर के अपने गांव में जा करके किस तरह से लोगों को सिखाएंगी?
0: मुझे 2 दिन का ट्रेनिंग बहुत अच्छे से सिखाया गया है। मुझे गांव में जाके जितने भी युवा युवा है, गर्ल्स हो, बॉयस हो, बूढ़े हो, सबको जाके सिखाना है। और गांव के लोग हैं, मेरा बात सुनते
1: सुनते
0: हैं,
1: हैं,
0: अच्छे तरीके से सुनते हैं और अच्छा लगता है, मेरा बात सुनते हैं उन लोग। और एक जगह में जमा होके हम लोग योगा करेंगे और हाथ सस के करेंगे, क्योंकि उसको लोग को भी मन को शांति मिले।
1: यानी कि सभी महिलाएं हैं, बच्चे हैं, और सभी आकर के योगा कर सकते हैं, मानसिक तनाव को दूर कर सकते हैं, और स्वास्थ्य के लिए, जो है, स्वस्थ रहने के लिए योगा जरूरी भी
0: बहुत
1: है।
0: जरूरी है मैडम।
1: बहुत ही अच्छा संदेश दिया आपने। चलिए, क्योंकि बच्चों का ध्यान गलत दिशा में ना जाए, आपके गांव के विकास के लिए आप PRI मेंबर, आपके जो गांव के बाकी जिला परिषद, पंचायत प्रधान, काफ़ी कुछ विकास की ओर ध्यान दे रहे हैं। आपने बहुत सारी बातें अपने गांव के बारे में बताया। शुक्लता जी, आज आप कार्यक्रम में आई और इतनी सारी बातें की, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: धन्यवाद आपको भी मुझे बुलाने के लिए।
2: किसान साथियों, अभी आपने न्यू वंडूर पंचायत की PRI मेंबर श्रीमती सुखलता पाहन जी से की गई बातचीत सुनी और आपने जाना कि कैसे जो पंचायत है आपको कई जानकारियां देते हैं ताकि आपका फायदा हो और आप ग्रामीण विकास की ओर अग्रसर हों।
1: आजकल बस हमारे किसान साथियों को इतना ही करना है कि पंचायत से हमेशा जुड़े रहना है और जो नई जानकारी दी जाती है उसका लाभ उठाना है। जब तक हमारे किसान साथी आगे नहीं आएंगे, तब तक वो सफल नहीं हो पाएंगे, तो ज़रूरत है उन्हें आगे आने की। आजकल चलिए इस बातचीत को हम यहीं रोकते हैं और अपने किसान साथियों को सुनवा देते हैं एक प्यारा सा गीत।

0: पत्ता।
1: किसान साथियों, लौटाइए कार्यक्रम की ओर और अब हम आपको देना चाहेंगे जानकारी जिसका विषय है नमी संरक्षण। चलिए आपको नमी संरक्षण के एक तकनीक छायावरण तकनीक के विषय में आपको थोड़ी सी जानकारी दे दें। छायावरण वह प्रक्रिया है जिसमें मिट्टी की सतह को किसी भी प्रकार की प्राकृतिक एवं कृत्रिम सामग्री जैसे घास, फसल अवशेष, पत्ते, प्लास्टिक, चादर इत्यादि से ढककर शुष्क क्षेत्रों में यथास्थान मृदा नमी का संरक्षण किया जाता है। छायावरण के प्रयोग से वाष्पीकरण कम होने से नमी संरक्षण बढ़ जाती है और वर्षा जल की अधिकतम मात्रा में भूमि में समावेश होता है। यह कम वर्षा के दिनों में ज्यादा प्रभावशाली होते हैं। छायावरण द्वारा 25 से 50 प्रतिशत सिंचाई योग्य जल की बचत होती है। छायावरण डालने से खेत में नमी बनी रहती है जो रबी फसल के लिए उपयोगी होती है। अतः छायावरण तकनीक फलों तथा सब्जियों की पैदावार के लिए बहुत लाभकारी होते हैं।
2: किसान साथियों, अभी आपने जानकारी हासिल की नमी संरक्षण के बारे में।

0: कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा किसान हित में जारी।
1: और अब कार्यक्रम में वक्त हो गया है आज पूछे गए प्रश्न के सही उत्तर बताने का। हमने आपसे पूछा था कि बटेर कितने दिनों में बेचने लायक हो जाती है, आंचल इस प्रश्न का सही उत्तर बता दो।
2: किसान साथियों, बटेर लगभग 6 सप्ताह में बेचने लायक हो जाती है। इनका औसत शारीरिक वजन 130 से 150 ग्राम प्रति पक्षी होता है।
1: उम्मीद करते हैं किसान भाइयों ने अपने उत्तर की जांच कर ली होगी।
2: आइए किसान साथियों और एक प्यारा सा गीत सुन लेते हैं।

साथियों, अब जरा घड़ी की तरफ देखिए। इसके साथ ही हमारे कार्यक्रम का समय समाप्त हो चला है। तो अगले कार्यक्रम में हम आपसे फिर मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए हमें दीजिए अनुमति। नमस्कार।

0: इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे भारत सरकार का कृषि एवं कृषक कल्याण मंत्रालय।
1: अभी आप किसान वाणी कार्यक्रम सुन रहे थे।

आकाशवाणी का ये श्री विजयपुरम केंद्र है। संध्या के 6:30 हुए हैं। पेश हैं फिल्मी गीतों का कार्यक्रम शाम में बहार।

कार्यक्रम शाम में बहार का आगाज हम कर रहे हैं जिंदगी रॉक्स फिल्म के इस गीत के साथ। इसे गाया है तुलसी कुमार और जावेद अली ने, रचा है सैयद खादरी ने और संगीत दिया है जावेद अली ने।

अलीशा चिनॉय, महालक्ष्मी अय्यर और सोनू निगम के मिली जुली आवाजों में सुनिए डॉन फिल्म का गीत, बोल जावेद अख्तर के, और धुन तैयार किया है शंकर एहसान लॉय ने।

अगला गीत है हिमेश रेशमिया के संगीत निर्देशन में, इनके साथ तुलसी कुमार ने आवाज दी है। इस गीत को रचा है समीर ने और फिल्म का नाम है दिल दिया है।

अगला गीत जो हम आपको सुनवाने जा रहे हैं, इसे लिखा है जावेद अख्तर ने, सुरों में पिरोया है अनु मलिक ने उम्र जान फिल्म के लिए, और इसे गाया है अलका याग्निक।

जान तेरे नाम। अब सुनिए इस फिल्म का गीत। संगीत दिया है नदीम श्रवण ने और इसे गाया है आशा भोसले और कुमार सानू ने।

गुलजार के शब्दों को संगीत से सजाया है अनु मलिक ने सुखविंदर सिंह और मुसुंधरा दास के आवाजों में। फिल्म का नाम है अक्स और ये है इस कार्यक्रम का आखिरी गीत।

अक्स फिल्म के इस गीत के साथ ही फिल्मी गीतों का कार्यक्रम शामे बहार अब यहीं समाप्त होता है। आकाशवाणी का ये श्री विजयपुरम केंद्र है। संध्या के 7 बजे हैं।

सुगम संगीत के कार्यक्रम में कल सुबह 8:30 पर कलाकार होंगे पीनाज मसानी, पंकज उधास और अनूप जलोटा। कल सुबह 9:30 पर शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में पंडित राजन व साजन मिश्रा का गायन आप सुनेंगे।

0: ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। कुछ ही पलों के बाद यानी संध्या 7:05 पर आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार बुलेटिन। इस अंतराल के बाद
1: ये मेरा छोटा भाई है ना, बड़ा शरारती है। कॉलेज में मार्कशीट फोटोशॉप करके पापा को दिखाता था। कल मैंने लाइट बिल पर 0 अमाउंट देखा तो सोचा इसने पक्का फोटोशॉप किया होगा, वरना 0 बिजली बिल कैसे पॉसिबल है। पूछा तो बोलता है, भैया सब ऊपर वाले की दया है, सोलर पैनल है ना। मैंने कहा ओ ये सही है बेटा।
2: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
3: हर घर सूर्य घर।
4: नमस्कार, आकाशवाणी श्री विजयपुरम से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार, अवैध घुसपैठ और

जनसांख्यिकीय परिवर्तनों के अध्ययन के लिए केंद्र सरकार ने न्यायमूर्ति प्रकाश प्रभाकर नवलकर की अध्यक्षता में उच्च स्तरीय समिति गठित की। गृह मंत्री अमित शाह ने दिल्ली के जनजातीय सांस्कृतिक समागम में कहा कि यह आयोजन जनजातीय परंपराओं और सांस्कृतिक विरासत को नई पहचान देगा। विश्व पर्यावरण दिवस पर भारतीय प्राणी सर्वेक्षण राजधानी श्री विजयपुर में विभिन्न जागरूकता कार्यक्रमों का आयोजन करेगा और मध्योत्तर अंडमान पुलिस ने मायबंदर जट्टी से अवैध गांजे के साथ एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया। सांध्य समाचारों के साथ मैं अनामिका सेनगुप्ता। केंद्र सरकार ने अवैध घुसपैठ और अन्य असामान्य कारणों से देश में हो रहे जनसांख्यिकीय बदलावों के अध्ययन तथा उनसे निपटने के उपाय सुझाने के लिए एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया है। यह समिति सेवानिवृत्त न्यायमूर्ति प्रकाश प्रभाकर नवलकर की अध्यक्षता में गठित की गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले वर्ष स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर हाई पावर डेमोग्राफी मिशन की घोषणा की थी। इसके बाद पिछले वर्ष ही 11 सितंबर को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इस प्रस्ताव को मंजूरी दी थी। समिति में जनगणना आयुक्त के अलावा सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी दुर्गा शंकर मिश्रा, सेवानिवृत्त आईपीएस अधिकारी बालाजी श्रीवास्तव और अर्थशास्त्री डॉ. शमिका रवि सदस्य के रूप में शामिल हैं। गृह मंत्रालय में संयुक्त सचिव विदेशी समिति के सदस्य सचिव होंगे। समिति एक वर्ष के भीतर अपनी रिपोर्ट सौंपेगी। आवश्यकता पड़ने पर इसके कार्यकाल को 6 महीने तक बढ़ाया जा सकेगा। केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि अवैध घुसपैठ और उससे होने वाला अस्वाभाविक जनसांख्यिकीय परिवर्तन देश के वर्तमान और भविष्य के लिए एक बड़ी चुनौती है। दिल्ली के लाल किला मैदान में भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती वर्ष के अवसर पर जनजाति सांस्कृतिक समागम का भव्य आयोजन किया गया। इस ऐतिहासिक समागम में अंडमान निकोबार द्वीप समूह से भी एक विशेष प्रतिनिधिमंडल कार्यक्रम में शामिल हुआ। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने कहा कि यह समागम जनजातियों के महाकुंभ के नाम से जाना जाएगा। उन्होंने कहा कि यह आयोजन आने वाले वर्षों में जनजातीय अस्तित्व, अस्मिता और संस्कृति को नई पहचान देगा। गृहमंत्री ने भगवान बिरसा मुंडा के जल, जंगल और जमीन संरक्षण के प्रयासों को सार्वभौमिक बताते हुए प्रकृति पूजा को सनातन संस्कृति का मूल आधार बताया। जनजातीय सुरक्षा मंच के राष्ट्रीय संयोजक गणेश राम भगत, राष्ट्रीय सह संयोजक डॉ. राज किशोर हंसदा, हर्ष चौहान, तेची कुबिन, बुद्री ताती, जनजातीय आयोग के सलाहकार एवं पूर्व न्यायाधीश प्रकाश उइके तथा वनवासी कल्याण आश्रम के राष्ट्रीय अध्यक्ष सत्येंद्र सिंह ने भी कार्यक्रम को संबोधित किया। अंडमान निकोबार प्रशासन ने ईद उल जुहा के अवसर पर घोषित सार्वजनिक अवकाश की तिथि में परिवर्तन किया है। अब 27 मई के स्थान पर 28 मई को प्रशासन के अधीन सभी सरकारी कार्यालयों, स्वायत्त निकायों, सार्वजनिक उपक्रमों तथा शिक्षण संस्थानों में अवकाश रहेगा। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी श्री विजयपुरम से सुन रहे हैं। समाचारों में आगे प्रमुख हैं, जागरूकता कार्यक्रमों का आयोजन और मादक पदार्थ बरामद। आकाशवाणी श्री विजयपुरम से प्रसारित होने वाला यह प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप मीडियम वेव के साथ साथ एफएम 100.9 मेगाहर्ट्ज पर भी सुन रहे हैं। प्रादेशिक समाचार के अलावा सुबह 9 बजे, 10 बजे और 11 बजे प्रति घंटा न्यूज हेडलाइंस एफएम रेडियो पर भी उपलब्ध है। प्रादेशिक समाचार में आपका फिर स्वागत है। विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर भारतीय प्राणी सर्वेक्षण के अंडमान एवं निकोबार क्षेत्रीय केंद्र की श्री विजयपुरम स्थित द्वीपीय जैव विविधता EIACP केंद्र द्वारा जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से विभिन्न कार्यक्रम एवं प्रदर्शनी का आयोजन किया जाएगा। इस वर्ष विश्व पर्यावरण दिवस की थीम प्रकृति से प्रेरणा, जलवायु के लिए हमारे भविष्य के लिए है। वर्ष 2026 में इसकी मेजबानी अजरबैजान गणराज्य कर रहा है। इस वर्ष की थीम में

वायु कार्यवाही को केंद्र में रखते हुए प्रकृति के साथ मानवता के संबंधों की पुनर्स्थापना पर बल दिया गया। इस अवसर पर केंद्र ने विद्यार्थियों, शिक्षकों, शोधार्थियों और आमजन को कार्यक्रमों में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया है। सभी कार्यक्रम भारतीय प्राणी सर्वेक्षण हैडो श्री विजयपुरम में होंगे। शिक्षा विभाग ने शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिए मुख्यभूमि के विभिन्न संस्थानों में अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह के विद्यार्थियों के लिए आरक्षित सीटों पर प्रवेश हेतु आवेदन आमंत्रित किए हैं। वर्ष 2026-27 के लिए प्राप्त होने वाली संभावित सीटों पर आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। इनमें उत्तर प्रदेश के लखनऊ स्थित केजी डेंटल कॉलेज में BDS पाठ्यक्रम की सीटें भी शामिल हैं। पात्र विद्यार्थी निर्धारित प्रक्रिया के तहत आवेदन कर सकते हैं। दूरदर्शन केंद्र श्री विजयपुरम कल शाम 5:30 बजे पेट टॉक बियॉन्ड द बॉन्ड शीर्षक से एक लाइव फोन इन कार्यक्रम का प्रसारण करेगा। कार्यक्रम का विषय बदलती जलवायु में पशुधन की स्वास्थ्य देखभाल रखा गया है। कार्यक्रम में डॉक्टर संजलि सोरेन विशेषज्ञ के रूप में उपस्थित रहेंगी। डॉक्टर सोरेन वरिष्ठ पशु चिकित्सा अधिकारी है तथा पशु चिकित्सा औषधालय पोर्टमोट और एलिफेंट पॉइंट की प्रभारी है। वे स्टूडियो में दर्शकों के सवालों के जवाब भी देंगी। दर्शक इस लाइव फोन इन कार्यक्रम में फोन नंबर 2447 45 या 2456 62 पर कॉल कर सकते हैं। मध्योत्तर अंडमान जिला पुलिस ने मादक पदार्थों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए मायबंदर जेट्टी पर लगभग 1 किलोग्राम अवैध गांजा बरामद किया है। इस मामले में एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार 25 मई को MV नालंदा से कोलकाता से मायबंदर पहुंच रहे एक यात्री की जाँच करने पर उसके सूटके से लगभग 1 किलोग्राम गांजा बरामद हुआ। इसके बाद पुलिस ने मादक पदार्थ को जब्त कर संबंधित व्यक्ति को नारकोटिक्स ड्रग्स एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंस अधिनियम की विभिन्न धाराओं के तहत गिरफ्तार कर लिया है। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय ने जुलाई 2026 शैक्षणिक सत्र के लिए विभिन्न पाठ्यक्रमों में प्रवेश प्रक्रिया शुरू कर दी है। विश्वविद्यालय की ओर से प्रमाण पत्र, डिप्लोमा, PG डिप्लोमा, स्नातक और स्नातकोत्तर स्तर के पाठ्यक्रम संचालित किए जाते हैं। प्रवेश के लिए ऑनलाइन आवेदन 15 जुलाई तक किए जा सकते हैं। इच्छुक अभ्यर्थी अधिक जानकारी के लिए इग्नो क्षेत्रीय केंद्र श्री विजयपुरम से संपर्क कर सकते हैं। अंडमान निकोबार पुलिस ने विभिन्न ग्रुप बी अराजपत्रित और ग्रुप सी पदों पर भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि बढ़ा दी है। अब अभ्यर्थी 10 जून की देर रात तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। अंडमान लॉ कॉलेज ने शैक्षणिक वर्ष 2026-27 के लिए BA LLB पाठ्यक्रम में अध्यापन कार्य हेतु अतिथि संकाय के पैनल गठन के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं। यह नियुक्ति आवश्यकता के अनुसार जब भी आवश्यक हो के आधार पर की जाएगी। विस्तृत जानकारी अंडमान लॉ कॉलेज की आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध है। अंडमान निकोबार रोइंग संघ द्वारा अध्यक्ष TSG भास्कर ने कल कार्बनस्कोप तट का दौरा कर एशियन बीच स्प्रिंट चैंपियनशिप 2026 के लिए भारतीय टीम के चयन हेतु चल रहे चयन ट्रायल की जानकारी ली। यह चैंपियनशिप जून 2026 में थाईलैंड के पटाया में आयोजित होगी। इस दौरान उनके साथ रोइंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष बालाजी मार्दापा भी मौजूद रहे। वे राष्ट्रीय चयन ट्रायल की निगरानी के लिए आधिकारिक दौरे पर अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह पहुंचे हैं। दौरे के दौरान दोनों पदाधिकारियों ने साई प्रशिक्षकों, देश के विभिन्न हिस्सों से आए राष्ट्रीय स्तर के रोवर्स तथा चयन ट्रायल में भाग ले रहे अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह के खिलाड़ियों से बातचीत की। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। अवैध घुसपैठ और जनसांख्यिकीय परिवर्तनों के अध्ययन के लिए केंद्र सरकार ने न्यायमूर्ति प्रकाश प्रभाकर नवलकर की अध्यक्षता में उच्च स्तरीय समिति गठित की। गृहमंत्री अमित शाह ने दिल्ली के जनजातीय सांस्कृतिक समागम में कहा कि यह आयोजन जनजातीय परंपराओं और सांस्कृतिक विरासत को नई पहचान देगा। विश्व पर्यावरण दिवस के पर भारतीय प्राणी सर्वेक्षण राजधानी शिवरजयपुरम में विभिन्न जागरूकता कार्यक्रमों का आयोजन करेगा। और मध्योत्तर अंडमान पुलिस ने मायबंदर जेट्टी से अवैध गांजे के साथ एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।

आकाशवाणी का ये श्री विजयपुरम केंद्र है। 7:15 हुए हैं। अब सुनिए मौसम, जलयानों का यात्रा कार्यक्रम और जन सूचनाएं। पहले मौसम। मौसम कार्यालय से प्राप्त सूचना के अनुसार अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह के अनेक स्थानों पर हल्के

पहले मौसम। मौसम कार्यालय से प्राप्त सूचना के अनुसार अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह के अनेक स्थानों पर हल्की से बहुत हल्की सी वर्षा हुई। हट बे, मायाबंदर और कार निकोबार में एक एक मिलीमीटर वर्षा रिकॉर्ड की गई। जन सेवाओं और मछुआरों को सूचित किया जाता है कि हवा की गति 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से होगी। मछुआरों को सलाह दी जाती है कि वह समुद्र में न जाए। कल सवेरे तक के मौसम संबंधी पूर्वानुमान में बताया जाता है कि अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह के अनेक स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा होगी या गरज के साथ छींटे पड़ेंगे। ये था मौसम का हाल। अब सुनिए जलयानों की यात्रा कार्यक्रम। जहाजरानी सेवा निदेशालय से प्राप्त सूचना के अनुसार जलयान सिंधु नानकवरी होते हुए कैंबल बे की यात्रा पर कल सुबह 9 बजे श्री विजयपुरम से प्रस्थान करेगा। जलयान की वापसी शुक्रवार 29 तारीख को सुबह 8 बजे कैंबल बे से छूटकर नानकवरी होते हुए श्री विजयपुरम के लिए होगी। नानकवरी कचाल, तेरेसा, चौरा, कार निकोबार और लिटिल अंडमान होते हुए कैंबल बे की यात्रा पर एमवी कालीघाट कल सुबह 7 बजे श्री विजयपुरम से रवाना होगा और उसकी वापसी शनिवार 30 तारीख को रात 8 बजे कैंबल बे से छूटकर इन्हीं मार्गों से होते हुए श्री विजयपुरम की वापसी यात्रा करेगा। स्वराज द्वीप और लॉन्ग आइलैंड होते हुए रंगत की यात्रा पर एमवी जॉली बॉय कल सुबह 6 बजे श्री विजयपुरम से प्रस्थान करेगा और कल ही दोपहर 12 बजे रंगत से छूटकर इन्हीं मार्गों से होते हुए श्री विजयपुरम की वापसी यात्रा करेगा। एमवी बाराटंग शहीद द्वीप के लिए कल सुबह 6:15 पर श्री विजयपुरम से जाएगा। जलयान कल ही सुबह 8:30 पर शहीद द्वीप से श्री विजयपुरम वापस लौटेगा। स्वराज द्वीप की यात्रा पर एमवी नॉर्थ पैसेज कल सुबह 6:15 पर श्री विजयपुरम से चलेगा और कल ही सुबह 8:45 पर स्वराज द्वीप से श्री विजयपुरम की वापसी करेगा। शहीद द्वीप, स्वराज द्वीप, स्ट्रेट आइलैंड, कदम तला और लॉन्ग आइलैंड होते हुए रंगत की यात्रा पर एमवी रानी लक्ष्मी कल सुबह 7 बजे श्री विजयपुरम से प्रस्थान करेगा। जलयान की वापसी गुरुवार 28 तारीख को सुबह 7 बजे रंगत से छूटकर इन्हीं मार्गों से होते हुए श्री विजयपुरम लौटेगा। शहीद द्वीप के लिए एमवी हट बे कल दिन के 11 बजे श्री विजयपुरम से रवाना होगा। जलयान कल ही दोपहर 1 बजे शहीद द्वीप से स्वराज द्वीप के लिए छूटेगा और कल ही दोपहर बाद 2:30 पर स्वराज द्वीप से श्री विजयपुरम की वापसी करेगा। स्वराज द्वीप के लिए एमवी स्ट्रेट आइलैंड कल दिन के 11:30 पर श्री विजयपुरम से जाएगा और कल ही दोपहर बाद 3:30 पर शहीद द्वीप से श्री विजयपुरम वापस लौटेगा। इस बीच जलयान कल दोपहर बाद 2 बजे स्वराज द्वीप से शहीद द्वीप के लिए छूटेगा। एमवी बाराटंग शहीद द्वीप की यात्रा पर कल दोपहर बाद 2:30 पर श्री विजयपुरम से चलेगा। जलयान की वापसी कल ही शाम 4:30 पर शहीद द्वीप से श्री विजयपुरम के लिए होगी। स्वराज द्वीप के लिए एमवी कमोटा कल शाम 5 बजे श्री विजयपुरम से रवाना होगा और उसकी वापसी अगले दिन सवेरे 5:30 पर स्वराज द्वीप से छूटकर शहीद द्वीप होते हुए श्री विजयपुरम के लिए होगी। ये थे जलयानों के यात्रा कार्यक्रम। आकाशवाणी का ये श्री विजयपुरम केंद्र है। 7:20 हुए हैं। अब सुनिए फिल्मी गीतों का कार्यक्रम दिल ने फिर याद किया।

कार्यक्रम में सबसे पहले सुनिए बिच्छू फिल्म का गीत हरिहरन स्वर्णलता के आवाजों में। इसे रचा है समीर ने और संगीत दिया है आनंद राज आनंद ने।

सूर्या फिल्म के इस गीत के साथ ही फिल्मी गीतों का कार्यक्रम दिल ने फिर याद किया अब यहीं समाप्त होता है। आकाशवाणी का ये श्री विजयपुरम केंद्र है। संध्या के 7:30 हुए हैं। पेश है युवा श्रोताओं के लिए कार्यक्रम युववाणी।

युववाणी कार्यक्रम सुनने वाले सभी युवा दोस्तों को हमारा प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, आज मंगलवार है और आज के दिन हम आपके लिए लेकर आते

दोस्तों, जब भारत ने वर्षों की गुलामी के बाद 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्रता प्राप्त की, तब देश के सामने सबसे बड़ी चुनौती एक नए और मजबूत राष्ट्र के निर्माण की थी। उस समय भारत को ऐसे नेता की आवश्यकता थी जो दूरदर्शी सोच, आधुनिक विचार और मजबूत नेतृत्व क्षमता रखता हो। ऐसे कठिन दौर में एक व्यक्तित्व ने देश को नई दिशा देने का कार्य किया। वे केवल एक राजनेता नहीं, बल्कि स्वतंत्र भारत के निर्माण के स्वप्न दृष्टा थे। उनके विचारों में लोकतंत्र, विज्ञान, शिक्षा और आधुनिक भारत की झलक दिखाई देती थी। उन्होंने देश के युवाओं को आगे बढ़ने और राष्ट्र निर्माण में योगदान देने की प्रेरणा दी। बच्चों के प्रति उनके विशेष प्रेम के कारण उन्हें चाचा नेहरू भी कहा जाता था। वह महान व्यक्तित्व थे भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू।

जवाहरलाल नेहरू का जन्म 14 नवंबर 1889 को इलाहाबाद में हुआ था। उनके पिता मोतीलाल नेहरू प्रसिद्ध वकील थे। नेहरू जी ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा घर पर प्राप्त की और बाद में इंग्लैंड के हैरो स्कूल तथा यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज में अध्ययन किया। विदेश से शिक्षा प्राप्त करने के बाद वे भारत लौटे और स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़ गए। महात्मा गांधी के विचारों से प्रभावित होकर उन्होंने देश की आज़ादी के लिए संघर्ष किया। कई बार उन्हें जेल भी जाना पड़ा, लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी। उनकी देशभक्ति, साहस और नेतृत्व की क्षमता ने उन्हें भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का एक प्रमुख नेता बना दिया।

15 अगस्त 1947 को भारत स्वतंत्र हुआ और जवाहरलाल नेहरू देश के प्रथम प्रधानमंत्री बने। उन्होंने 1947 से 1964 तक इस पद पर रहकर भारत के विकास की मजबूत नींव रखी। नेहरू जी ने देश के लोकतंत्र को मजबूत बनाया और विज्ञान व तकनीक के विकास पर विशेष ध्यान दिया। उनके नेतृत्व में बड़े बड़े बांध, उद्योग और शैक्षणिक संस्थान स्थापित किए गए। उन्होंने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी और वैज्ञानिक अनुसंधान संस्थानों की स्थापना को बढ़ावा दिया। उनका मानना था कि शिक्षा और विज्ञान ही देश को आगे बढ़ा सकते हैं। उन्होंने पंचशील सिद्धांत और गुटनिरपेक्ष आंदोलन के माध्यम से भारत की विदेश नीति को भी नई पहचान दी। उनकी दूरदर्शिता ने भारत को आधुनिक राष्ट्र बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।

जवाहरलाल नेहरू ने अपना पूरा जीवन देश सेवा में समर्पित किया। वे बच्चों से बहुत प्रेम करते थे, इसलिए आज भी 14 नवंबर को उनके जन्म दिवस के अवसर पर बाल दिवस मनाया जाता है। 27 मई 1964 को उनका निधन हो गया। उनके जाने से पूरे देश में शोक की लहर फैल गई, क्योंकि भारत ने एक ऐसे नेता को खो दिया था जिसने स्वतंत्र भारत को नई दिशा दी थी। नेहरू जी केवल एक प्रधानमंत्री नहीं थे, बल्कि आधुनिक भारत के निर्माता थे। उन्होंने देश को एकता, लोकतंत्र और विकास का मार्ग दिखाया। उनका जीवन हमें

यह सिखाता है कि सच्चा नेतृत्व वही है जो राष्ट्र और जनता के हित को सबसे ऊपर रखे। आज भी उनके विचार और योगदान भारतीय इतिहास में अमर हैं और आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित करते रहेंगे।

दोस्तों, हर शुक्रवार युववाणी के तहत प्रसारित होता है फोन इन कार्यक्रम हेलो फ्रेंड्स, जिसके तहत हम आपको सुनवाते हैं आप ही के पसंद के गाने।

0: इस कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग होती है प्रत्येक बृहस्पतिवार को शाम 4 से 4:30 बजे के बीच।
1: हेलो फ्रेंड्स, कैसी हैं आप?
2: मैं बैंगलोर में काम कर रही हूँ। मेरा हॉबीज ज्वेलरीज बनाना, खेलना, गाने सुनना।
3: अच्छा, किस तरह के गाना सुनना पसंद करती हैं आप?
2: मैं ज्यादा मेलोडी सुनती हूँ।
0: जो युवा दोस्त इस कार्यक्रम में अपने पसंदीदा गीत सुनना चाहते हैं, वो हमें फोन कर सकते हैं इस नंबर पर 232-336 और 232-558। तो याद रखिए, प्रत्येक शुक्रवार को युववाणी के तहत हेलो फ्रेंड्स कार्यक्रम। रिकॉर्डिंग बृहस्पतिवार शाम 4 से 4:30 बजे के बीच, कार्यक्रम हेलो फ्रेंड्स।
4: तो दोस्तों, इसी गीत के साथ हमारा आज का यह देश की शान कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है।

ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। रात के 8 बजे हैं। पेश है फिल्मी गीतों का कार्यक्रम चित्रपट संगीत।

कार्यक्रम का आगाज हम कर रहे हैं कारवान फिल्म के इस गीत के साथ। संगीतकार आर डी बर्मन और गायक कलाकार हैं आशा भोसले व मोहम्मद रफी।

0: श्रोताओं, फिल्म में गीतों का कार्यक्रम चित्रपट संगीत जारी रहेगा इस अंतराल के बाद।
1: It's raining offers on the new age Baleno this season. Upgrade to the bold and techie new age Baleno and get amazing benefits, easy finance options and incredible exchange deals. Rush to your nearest Nexa showroom today and take home the new age Baleno with amazing offers and a 1 lakh kilometer or 3-year warranty. TNC apply.
2: Nexa.
0: अंतराल के बाद आपका स्वागत है कार्यक्रम चित्रपट संगीत में। अब सुनिए अन्नदाता फिल्म का गीत जिसे गाया है मुकेश ने। बोल योगेश के हैं और संगीत दिया है सलील चौधरी ने।

आदि बर्मन के संगीत निर्देशन में अगला गीत को रचा है आनंद बख्शी ने, आवाजें हैं लता मंगेशकर व किशोर कुमार के, और फिल्म का नाम है

0: आपकी कसम फिल्म के इस गीत के साथ ही फिल्मी गीतों का कार्यक्रम चित्रपट संगीत अब यहीं समाप्त होता है।
1: ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। इस समय रात्रि के 8:30 हुए हैं। लीजिए अब सुनिए रोजगार समाचार। अंडमान एवं निकोबार पुलिस में ग्रुप बी अराजपत्रित एवं ग्रुप सी पदों के लिए आवेदन आमंत्रित किया है। ये पद अंडमान एवं निकोबार पुलिस की विभिन्न इकाइयों में है। अभ्यर्थी केवल ऑनलाइन माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। उम्मीदवारों द्वारा चुना गया पद अंतिम होगा, बाद में किसी भी परिस्थिति में बदलाव नहीं किया जाएगा। शारीरिक माप एवं सहनशक्ति परीक्षण PMET अंडमान एवं निकोबार पुलिस द्वारा विभिन्न केंद्रों पर आयोजित किया जाएगा। ये केवल क्वालिफाइड प्रकृति का होगा। लिखित परीक्षा कंप्यूटर आधारित या लिखित अंग्रेजी और हिंदी में आयोजित होगी। साथ ही ट्रेड टेस्ट भी लिया जाएगा। सभी चरणों में सफल उम्मीदवारों की सूची प्रकाशित की जाएगी और उनके मूल दस्तावेजों का सत्यापन

0: सत्यापन होगा। अंतिम परिणाम लिखित परीक्षा और ट्रेड टेस्ट के लिए प्रदर्शन के आधार पर घोषित किया जाएगा। भर्ती प्रक्रिया निर्धारित नियमों और पुलिस विभाग के आदेशों के अनुसार होगी। पुलिस रेडियो ऑर्गेनाइजेशन PR अंडमान एवं निकोबार पुलिस ग्रुप बी अराजपत्रित में रेडियो ऑपरेटर ASI के लिए कुल पद है 71, 36 पद अनारक्षित वर्ग के लिए, 24 पद OBC वर्ग के लिए होगा। अनुसूचित जनजाति वर्ग के लिए 4 पद रखा गया है और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 7 पद है। रेडियो टेक्नीशियन ASI के लिए कुल पदों की संख्या है 12, 6 पद अनारक्षित वर्ग के लिए, 4 पद OBC वर्ग के लिए होगा तथा अनुसूचित जनजाति आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए 1-1 पद है। सिपर ऑपरेटर ASI के लिए कुल पद है 2, अनारक्षित वर्ग और OBC वर्ग के लिए 1-1 पद रखा गया है। ग्रुप सी में फिटर इलेक्ट्रीशियन HC केवल पुरुष उम्मीदवारों के लिए है, कुल पदों की संख्या 4 रखा गया है। अनारक्षित वर्ग और OBC वर्ग के लिए 2-2 पद है। कांस्टेबल VHF ऑपरेटर पद के लिए 1 पद है जो अनारक्षित वर्ग के लिए है। डीजल मैकेनिक केवल पुरुष उम्मीदवारों के लिए होगा, कुल पद है 2। अनारक्षित वर्ग और OBC वर्ग के लिए 1-1 पद रखा गया है। फॉलोअर मैसेंजर के लिए पदों की संख्या है 16, अनारक्षित वर्ग के लिए 9 पद, OBC वर्ग के लिए 6 और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए 1 पद है। पुलिस मोटर ट्रांसपोर्ट PMT अंडमान एवं निकोबार पुलिस ग्रुप बी सब इंस्पेक्टर PMT पद के लिए कुल पदों की संख्या है 2 जो OBC वर्ग के लिए हैं। ग्रुप सी डीलिंग असिस्टेंट HC और स्टोर कीपर HC के लिए 1-1 पद रखा गया है जो अनारक्षित वर्ग के लिए है। असिस्टेंट मैकेनिक PC के लिए 2 पद हैं। अनारक्षित और OBC वर्गों के लिए 1-1 पद हैं। मैकेनिक हेल्पर PC पद के लिए 2 पद हैं जो अनारक्षित वर्ग के लिए है। कांस्टेबल ड्राइवर के लिए पदों की संख्या है 15, अनारक्षित और OBC वर्गों के लिए 7-7 पद हैं और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 1 पद है। पुलिस मैरीन फोर्स PMF अंडमान एवं निकोबार पुलिस ग्रुप बी अराजपत्रित सब इंस्पेक्टर मास्टर के लिए कुल पद है 2, अनारक्षित और OBC वर्गों के लिए 1-1 पद है। ग्रुप सी पुलिस कांस्टेबल ग्रीजर के लिए कुल पद है 4, OBC और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए 2-2 पद रखा गया है। पुलिस कांस्टेबल लश्कर के लिए 7 पद कुल है, 3 पद अनारक्षित वर्ग के लिए, OBC और अनुसूचित जनजाति वर्गों के लिए 1-1 पद रखा गया है और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 2 पद है। रिक्तियां अस्थाई है जो बदल सकती है। महिलाओं के लिए क्षैतिज आरक्षण लागू होगा। कुछ पद केवल पुरुष उम्मीदवारों के लिए हैं। ST और OBC वर्गों के लिए आरक्षण सरकारी नियमों के अनुसार होगा। EWS, MSP, ESM भूतपूर्व सैनिक के लिए आरक्षण लागू है। भूतपूर्व सैनिकों को अपना नाम संबंधित बोर्ड में पंजीकृत कराना होगा। रिक्तियों की उपलब्धता के अधीन प्रत्येक पद के लिए नियुक्ति पत्र योग्यता क्रम के अनुसार लागू किए जाएंगे। अभ्यर्थी अपने आवेदन अंडमान एवं निकोबार पुलिस की वेबसाइट police.andamannicobar.gov.in या recruitment.andamannicobar.gov.in से डाउनलोड कर सकते हैं। उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि आवेदन जमा करने से पहले भर्ती सूचना को ध्यान पूर्वक पढ़ें।
1: पुलिस विभाग में विभिन्न ग्रुप बी अराजपत्रित और ग्रुप सी पदों

0: पर भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि बढ़ाकर 26 मई की मध्य रात्रि तक कर दी गई है। पात्रता की शर्तें और अन्य निर्देश संदर्भ के लिए उपलब्ध पूर्ण भर्ती सूचना में विस्तार से दिए गए हैं। इसके अलावा ऑनलाइन आवेदन में सुधार के लिए संशोधन खिड़की 28 मई की मध्य रात्रि तक खुली रहेगी। अधिक जानकारी के लिए उम्मीदवार भर्ती प्रकोष्ठ पुलिस मुख्यालय से सभी कार्य दिवसों में सुबह 9:30 बजे से शाम 5 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन जमा करने के लिए अंडमान एवं निकोबार पुलिस की वेबसाइट police.andamannicobar.gov.in या e-recruitment.andamannicobar.gov.in पर उपलब्ध है। और अधिक जानकारी के लिए 25 अप्रैल 2026 का डेली टेलीग्राम देखा जा सकता है।
1: इसी के साथ ही रोजगार समाचार समाप्त हुए।
2: It's raining offers on the new age Baleno this season. Upgrade to the bold and techie new age Baleno and get amazing benefits, easy finance options and incredible exchange deals. Rush to your nearest Nexa showroom today and take home the new age Baleno with amazing offers and a 1 lakh kilometer or 3-year warranty. TNC apply.
3: Nexa. अब सुनिए गौरव गान।

अभी आप रोजगार समाचार और गौरव गान सुन रहे थे। आकाशवाणी का ये श्री विजयपुरम केंद्र है। रात के 8:45 होने को हैं। कुछ ही पलों में समाचारों का प्रसारण होगा, जिसे हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

0: नमस्कार। आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। मुख्य समाचार। केंद्र सरकार ने घुसपैठ और अन्य कारणों से उत्पन्न जनसांख्यिकी परिवर्तन की चुनौतियों से निपटने के लिए उच्च स्तरीय समिति का गठन किया। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, ड्रोन के जरिए नशीले पदार्थों और हथियारों की तस्करी रोकने के लिए 6 महीने के भीतर ड्रोन रोधी प्रणालियां स्थापित कर दी जाएंगी। क्वाड देशों ने हिंद प्रशांत समुद्री निगरानी सहयोग की शुरुआत की। आतंकवाद के सभी रूपों और अभिव्यक्तियों की निंदा की। सरकार ने प्याज का न्यूनतम सुनिश्चित खरीद मूल्य प्रति क्विंटल 1,270 रूपये से बढ़ाकर 1,580 रूपये किया। खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने भविष्य में ओलंपिक खेलों के लिए योगासन का समर्थन किया। पहली विश्व योगासन चैंपियनशिप अगले महीने अहमदाबाद में होगी और एशियाई अंडर-23 कुश्ती चैंपियनशिप में भारतीय पहलवान मोहित कुमार और चंद्र मोहन ने पुरुषों की फ्री स्टाइल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीते। अब समाचार विस्तार से। केंद्र सरकार ने घुसपैठ और अन्य कारणों से होने वाले जनसांख्यिकी बदलाव की चुनौतियों से निपटने के लिए एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया है। इस समिति की अध्यक्षता सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश प्रकाश प्रभाकर नावलेकर करेंगे। जनगणना आयुक्त के साथ साथ पूर्व आईएएस अधिकारी दुर्गा शंकर मिश्रा, पूर्व आईपीएस अधिकारी बालाजी श्रीवास्तव और अर्थशास्त्री डॉ शमिका रवि को इस समिति का सदस्य नियुक्त किया गया है। गृह मंत्रालय में संयुक्त सचिव इस समिति में सदस्य सचिव के रूप में कार्य करेंगे। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि ये समिति अवैध प्रवासन और अन्य अस्वाभाविक कारणों से पूरे देश में हो रहे जनसांख्यिकी बदलावों का व्यापक मूल्यांकन करेगी। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: ये उच्च स्तरीय समिति अवैध अप्रवासन और अन्य अप्राकृतिक कारणों से पूरे देश में हो रहे जनसांख्यिकीय परिवर्तनों का व्यापक आकलन करेगी। ये धार्मिक और सामाजिक समुदायों के स्तर पर असामान्य जनसंख्या स्थानांतरण का भी विश्लेषण करेगी और इसके लिए एक योजनाबद्ध और समयबद्ध समाधान प्रस्तुत करेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले वर्ष लाल किले से अपने स्वतंत्रता दिवस भाषण में जनसांख्यिकीय परिवर्तन पर उच्च स्तरीय समिति की घोषणा की थी।
2: मैं आज देश के सामने एक चिंता चुनौती के संबंध में आगाह करना चाहता हूं। षड्यंत्र के तहत देश की डेमोग्राफी को बदला जा रहा है, एक नए संकट के बीज बोए जा रहे हैं और ये घुसपैठी मेरे देश के नौजवानों की रोजी रोटी छीन रहे हैं। ये देश सहन नहीं करेगा और इसलिए एक हाई पावर डेमोग्राफी मिशन शुरू करने का निर्णय किया है।
1: समिति एक वर्ष के भीतर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी। वहीं आवश्यकता पड़ने पर समिति का कार्यकाल 6 महीने तक बढ़ाया जा सकता है। अनुपम मिश्र के साथ शिवांग मिश्रा, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि सरकार ड्रोन के जरिए नशीले पदार्थों और हथियारों की तस्करी पर रोक लगाने के लिए अगले 6 महीने के भीतर ड्रोन रोधी प्रणाली लगाने की प्रक्रिया में है। राजस्थान के बीकानेर जिले में सांचू सीमा चौकी पर सीमा सुरक्षा बल के जवानों को संबोधित करते हुए गृह मंत्री ने ये घोषणा की।
3: ड्रोन और अन्य उपकरणों के लिए भारत सरकार ड्रोन रोधी संयंत्र लगाने की शुरुआत अगले 6 माह में ही कर लेगी, परंतु ड्रोन उतरता तो भारत की भूमि में है, कौन इसके अंदर के मटेरियल को देश विरोधी कार्यों के लिए उपयोग करता है, इस पर हमारी पैनी नजर होनी चाहिए और इसके न्यूट्रलाइजेशन के लिए सिविल अथॉरिटी और डिस्ट्रिक्ट पुलिस से हमारा जीवंत संपर्क होना चाहिए और परिणाम लक्षी कार्यवाही भी हमने करनी पड़ेगी।
0: विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर की अध्यक्षता में आज क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक नई दिल्ली में संपन्न हुई। ऑस्ट्रेलिया की विदेश मंत्री पेनी वोंग, जापान के विदेश मंत्री तोशिमित्सु मोतेगी और अमरीका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने बैठक में हिस्सा लिया। सदस्य देश वैश्विक ऊर्जा बाजारों में व्यवधान के समय एक दूसरे की ऊर्जा सुरक्षा आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए सहयोग बढ़ाने पर सहमत हुए। क्वाड देशों ने हिंद प्रशांत क्षेत्र में निगरानी से जुड़ी पहल तथा दृश्यों के माध्यम से समुद्री गतिविधियों की साझा जानकारी उपलब्ध कराने पर भी सहमति व्यक्त की। बैठक के बाद संयुक्त प्रेस वार्ता में डॉ जयशंकर ने कहा कि क्वाड देशों के बीच सहयोग को और मजबूत किया जाएगा।
4: इकोनॉमिक रेजिलियंस शुड बी प्रमोटेड।
5: बैठक में आर्थिक मजबूती बनाए रखने, आपूर्ति श्रृंखला को मजबूत करने, विश्वसनीय और सुरक्षित तकनीकों का प्रसार करने तथा

0: उत्पादन क्षमता में वृद्धि करने पर चर्चा हुई। हमारा लक्ष्य आपसी सहयोग को मजबूत करना तथा दूसरों की सहायता करना है। हम क्वाड देश आदान प्रदान से विकास और समृद्धि की खोज में नवाचार और रचनात्मकता को बढ़ावा देते हैं।
1: बाद में विदेश मंत्रालय में अपर सचिव के नागराज नायडू ने संवाददाताओं को बताया कि क्वाड देशों ने पहलगाम आतंकवादी हमले की भी निंदा की।
2: काउंटर टेररिज्म इज अ सिग्निफिकेंट पिलर ऑफ
3: आतंकवाद से सख्ती से निपटना क्वाड सहयोग का एक महत्वपूर्ण स्तंभ बना हुआ है। विदेश मंत्रियों ने सीमा पार आतंकवाद और आतंकवाद के सभी रूपों की कड़ी निंदा की। संयुक्त बयान में विशेष रूप से पहलगाम आतंकी हमले की निंदा की गई और आतंकवादी गुटों, उनके वित्त पोषण और प्रायोजकों के खिलाफ निर्णायक अंतर्राष्ट्रीय कार्रवाई की आवश्यकता पर बल दिया गया।
2: टेररिस्ट एंटिटीज, फाइनेंसेस एंड स्पॉन्सर्स।
1: विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा है कि पिछले कुछ वर्षों में ऑस्ट्रेलिया के साथ भारत की व्यापक रणनीतिक साझेदारी ने नई गति पकड़ी है। उन्होंने ऑस्ट्रेलिया की विदेश मंत्री पेनी वोंग के साथ बैठक के दौरान ये टिप्पणी की। उन्होंने कहा कि परमाणु ऊर्जा के उत्पादन के लिए यूरेनियम की आपूर्ति सहित ऊर्जा क्षेत्र में सहयोग बढ़ रहा है। इस बीच ऑस्ट्रेलिया की विदेश मंत्री पेनी वोंग ने आज नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी से भी मुलाकात की। श्री मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि इस दौरान रक्षा, व्यापार, प्रौद्योगिकी और आपूर्ति श्रृंखला की मजबूती सुनिश्चित करने जैसे क्षेत्रों में दोनों देशों की व्यापक रणनीतिक साझेदारी के विस्तार पर चर्चा हुई। जापान की विदेश मंत्री तोशिमित्सु मोतेगी ने भी प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात की। उन्होंने हिंद प्रशांत क्षेत्रों में शांति, स्थिरता और समृद्धि को बढ़ावा देने में भारत जापान विशेष रणनीतिक और वैश्विक साझेदारी की महत्वपूर्ण भूमिका की पुष्टि की। भारत ने चीन और पाकिस्तान के संयुक्त बयान में केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के अवांछित संदर्भों को स्पष्ट रूप से खारिज कर दिया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि भारत का रुख स्वयं सुसंगत है और संबंधित पक्षों को इसकी जानकारी है। उन्होंने कहा कि केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर और लद्दाख भारत के अभिन्न तथा अविभाज्य अंग थे, हैं और हमेशा रहेंगे। प्रवक्ता ने कहा कि किसी अन्य देश को इस टिप्पणी पर करने का अधिकार नहीं है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

सुरक्षा स्कीम के टेलीलॉ न्याय बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेलीलॉ के टोल फ्री नंबर 1-4-4-5-4 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: हर उड़ान से पहले एक फैसला होता है, हर फैसले से पहले एक सवाल, क्या मैं तैयार हूँ? अगर जवाब है हाँ, तो भारतीय वायुसेना आपका इंतजार कर रही है। AFCAT 1 of 2026 के आवेदन 10 नवंबर से 9 दिसंबर तक खुले हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें careerairforce.gov.in या afcat.edcil.go.in पर।
2: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। सरकार ने प्याज के भंडार का न्यूनतम सुनिश्चित खरीद मूल्य 1,270 रुपए से बढ़ाकर 1,580 रुपए प्रति क्विंटल कर दिया है। ये बढ़ोतरी राज्य सरकारों के अनुरोध पर की गई है। नई दरें आज से लागू हो गई हैं। इस संबंध में उपभोक्ता कार्य, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री प्रहलाद जोशी ने आज नई दिल्ली में उपभोक्ता मामलों के विभाग, भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ और भारतीय राष्ट्रीय सहकारी उपभोक्ता संघ के अधिकारियों के साथ बैठक की अध्यक्षता की। सरकार ने राष्ट्रीय राजमार्ग 83 के नागपट्टनम तंजावुर खंड पर 14 किलोमीटर से अधिक लंबे 4 लेन वाले तिरुवरूर बायपास के निर्माण के लिए 1000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि को मंजूरी दे दी है। राष्ट्रीय राजमार्ग 129 और राष्ट्रीय राजमार्ग 134A पर 2 अतिरिक्त ओवरब्रिज भी बनाए जाएंगे। सोशल मीडिया पोस्ट में सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि ये मार्ग तिरुचिरापल्ली और कोयम्बटूर जैसे औद्योगिक केंद्रों को

0: कराईकाल और नागपट्टनम जैसे बंदरगाह शहरों से जोड़ेंगे। श्री गडकरी ने आज पंजाब में 4000 किलोमीटर से अधिक और दिल्ली तथा हरियाणा में 3000 किलोमीटर से अधिक की राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं की गुणवत्ता और रखरखाव की प्रगति की समीक्षा की। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE की पेमेंट गेटवे प्रणाली में सुधार के लिए सार्वजनिक क्षेत्र के 4 प्रमुख बैंकों के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ विस्तृत चर्चा की है। बैठक के दौरान श्री प्रधान ने विद्यार्थियों को असुविधा से बचाने के लिए निर्बाध और सुरक्षित भुगतान प्रणाली की आवश्यकता पर जोर दिया। CBSE ने स्पष्ट किया है कि उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन के लिए उपयोग की जाने वाली ऑन स्क्रीन मार्किंग प्रणाली में कोई सुरक्षा उल्लंघन नहीं हुआ है। CBSE ने कहा कि वास्तविक मूल्यांकन कार्य के लिए उपयोग किए जा रहे पोर्टल पर कोई सुरक्षा उल्लंघन सामने नहीं आया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज अपने पद पर 12 वर्ष पूरे कर लिए हैं। 2014 में आज ही के दिन श्री मोदी ने प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली थी। एक रिपोर्ट।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नेतृत्व वाली सरकार ने पिछले 12 वर्षों में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के सिद्धांतों पर अनेक जन कल्याणकारी पहलें की है, जिनका उद्देश्य नागरिकों का उत्थान करना रहा है। गरीबों और मध्यम वर्ग के कल्याण से लेकर महिलाओं, किसानों और युवाओं के सशक्तिकरण तक मोदी सरकार ने समाज के सभी वर्गों का ध्यान रखा है। इसी तरह मोदी सरकार ने आर्थिक विकास, बुनियादी ढांचे का विस्तार और नागरिकों के जीवन को आसान बनाने पर भी विशेष ध्यान दिया है। मोदी सरकार ने वस्तु और सेवा कर GST और डिजिटल भुगतान जैसे संरचनात्मक सुधार भी लागू किए हैं। सरकार ने राष्ट्रीय सुरक्षा पर विशेष ध्यान दिया है। इसके अलावा मोदी सरकार ने विरासत संरक्षण, संस्कृति पर भी अपना ध्यान केंद्रित किया है। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध है।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: ये आकाशवाणी है। केंद्रीय युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा है कि वर्ष 2036 के ओलंपिक खेलों की मेजबानी के भारत के दावे को ध्यान में रखते हुए योगासन को भविष्य के ओलंपिक खेलों की सूची में शामिल करने के लिए प्रयास किए जाएंगे। डॉ मांडविया ने आज नई दिल्ली में कहा कि अहमदाबाद में 4 से 8 जून तक पहली विश्व योगासन चैंपियनशिप आयोजित की जाएगी। भारतीय पहलवानों ने वियतनाम में एशियाई अंडर 23 कुश्ती चैंपियनशिप में आज भी शानदार प्रदर्शन जारी रखते हुए पुरुषों की फ्रीस्टाइल वर्ग में 2 स्वर्ण, 2 रजत और 1 कांस्य पदक जीते। मोहित कुमार ने 65 किलोग्राम और चंद्र मोहन ने 79 किलोग्राम भार वर्ग में स्वर्ण पदक जीता। आईपीएल क्रिकेट का पहला क्वालिफायर मुकाबला गुजरात टाइटंस और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के बीच जारी है। ताजा समाचार मिलने तक बेंगलुरु ने 16 ओवर में 3 विकेट पर 189 रन बना लिए हैं। इससे पहले गुजरात ने टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला किया। मौसम विभाग ने मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और विदर्भ में कल तक भीषण गर्मी का रेड अलर्ट जारी किया है। अगले 2 से 3 दिन तक दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, राजस्थान, छत्तीसगढ़, तटीय आंध्र प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, झारखंड, उड़ीसा, तेलंगाना और उत्तराखंड में भी भीषण गर्मी की आशंका है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्र सरकार ने घुसपैठ और अन्य कारणों से उत्पन्न जनसांख्यिकीय परिवर्तन की चुनौतियों से निपटने के लिए उच्च स्तरीय समिति का गठन किया। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, ड्रोन के जरिए नशीले पदार्थों और हथियारों की तस्करी रोकने के लिए 6 महीने के भीतर ड्रोन रोधी प्रणालियां स्थापित की जाएंगी। क्वाड देशों ने हिंद प्रशांत समुद्री निगरानी सहयोग की शुरुआत की। आतंकवाद के सभी रूपों की निंदा की। सरकार ने प्याज का न्यूनतम सुनिश्चित खरीद मूल्य प्रति क्विंटल 1,270 रुपए से बढ़ाकर 1,580 रुपए किया। और खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने भविष्य के ओलंपिक खेलों के लिए योगासन का समर्थन किया। इसके साथ ही समाचार संध्या का यंग समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: Manthan.
1: नमस्कार श्रोताओं, कार्यक्रम मंथन के आज के इस अंक में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं कमल कुमार प्रजापति। भारत में पोषण से स्वास्थ्य को मजबूत करने की दिशा में हाल ही में सेहत मिशन की शुरुआत हुई और आज हम सेहत मिशन के बारे में विस्तार से चर्चा कर रहे हैं। इस कार्यक्रम में आज हम सेहत मिशन पर दो विशेषज्ञों से विस्तार से जानकारी लेंगे। हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ेंगे भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद में उप महानिदेशक डॉक्टर डी के यादव और भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद में

0: सीनियर साइंटिस्ट डॉक्टर प्रियंका बंसल।
1: तो हाल ही में लॉन्च हुए सेहत मिशन पर हम बात करने के लिए अब सीधे जुड़ रहे हैं डॉक्टर डीके यादव, फसल विज्ञान भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद नई दिल्ली। बहुत बहुत स्वागत है सर कार्यक्रम में आपका।
2: धन्यवाद।
1: साइंस एक्सीलेंस फॉर हेल्थ थ्रू एग्रीकल्चरल ट्रांसफॉर्मेशन, ये सेहत का पूरा फुल फॉर्म है और इसमें जो हेल्थ थ्रू एग्रीकल्चरल ट्रांसफॉर्मेशन है ये एक बड़ा महत्वपूर्ण पहलू है कि हम किस तरह से खेती के जरिए, फसलों के जरिए सेहत में पोषक तत्वों को बढ़ा सकते हैं। तो ऐसे में आप कैसे देखते हैं सेहत मिशन में खेती के रोल को और किस तरह से इसमें आपकी भूमिका है?
2: सेहत मिशन का जिस तरह से आपने भी जो इलोबरेट करके बताया कि साइंस एक्सीलेंस फॉर हेल्थ थ्रू एग्रीकल्चर ट्रांसफॉर्मेशन, तो आप जानते हैं भली भांति जो हमारा भोजन का जितना भी सप्लाई है उसमें कृषि का एक बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है, और हम विभिन्न खाद्य फसलों में, जो बागवानी फसलों में किस्मों का विकास करते हैं जो हमारे भोजन का हिस्सा बनती हैं, तो उनके द्वारा किस तरह से हम हमारे हेल्थ को सुधार सकें, किस तरह से आम जन का जो स्वास्थ्य संबंधित बहुत सी, जैसे हम बात करें कुपोषण की समस्या है, न्यूट्रिएंट्स की कमी रहती है, तो एक बड़ी भारी, ना कि भारत में, पूरे विश्व में एक बड़ी समस्या है, तो उस समस्या को कृषि के द्वारा किस तरह से हम एक तरह से उसको एड्रेस करें, क्योंकि हम देखते हैं कि जो पोषण कार्यक्रमों के द्वारा और जिस तरह का सेहत पर जो आम जन के असर पड़ता है, तो उससे देश को काफी, जो जीडीपी में काफी नुकसान होता है, और उस नुकसान को किस तरह से कम करें, और जो भी हमारे आम जन है, चाहे वो खेतिहर मजदूर है चाहे किसान है, सभी को कहीं ना कहीं इम्बेलेंस न्यूट्रिएंट्स की वजह से, कुपोषण की वजह से उनकी जो क्षमता है या बीमारी पकड़ने की जिस तरह की एक टेंडेंसी रहती है वो अधिक रहती है। तो इस मिशन का मेन मुद्दा यही है कि जैसे जो कृषि में हमने जिस तरह से पोषण युक्त विभिन्न किस्में उत्पन्न की, उन किस्मों को किस तरह से हम आमजन तक ले जाएं, और उसको ले जाने के बाद उसका क्या इम्पैक्ट होता है। सेहत मिशन के द्वारा जो हमारा भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद है और भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद है, तो उन दोनों का जो एक कोलैबोरेशन हुआ है, तो उसमें एक तरह से हमने चार पांच मुद्दे उसमें रखे हैं, जिसमें एक जो मुख्य मुद्दा है, इसमें एक कंपोनेंट है कि पौधों और पशुओं से मिलने वाले बायोफोर्टिफाइड प्रोडक्ट का स्वास्थ्य पर असर। तो इसमें जैसे हम देखते हैं कि हमारा जो बायोफोर्टिफिकेशन का कार्य सिर्फ फसलों में ही नहीं है, जैसे खाद्य फसलों और बागवानी में, उसमें हम पशुओं में, मछलियों में भी उस पर कार्य कर रहे हैं, और उससे किस तरह से हमारे दिन प्रतिदिन के भोजन में जो हमारी न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट है वो पूरी हो, तो उसके लिए इसमें अध्ययन हम ICMR के साथ मिलकर करेंगे। तो उसमें जो हमारा मुख्य जो उद्देश्य होगा कि किस तरह से हम ज्यादा बायोफोर्टिफाइड किस्में पैदा करें, और इन किस्मों को किस तरह से हम आम जन तक, जो हमारी फूड चेन में ले जाएं। उसके बाद जो ICMR का जो मेन मुद्दा, जो उनके रिसर्च के कंपोनेंट रहेंगे, उसमें एक बायो अवेलेबिलिटी का इश्यू होता है कि आपने किसी किस्म में आपने कहा कि जो प्रोटीन है वो 12% है, गेहूं में जैसे हम कहते हैं 12.5% है, और आमतौर पर जो गेहूं में प्रोटीन 8-9% होता है, तो 12.5% की बायो अवेलेबिलिटी कितनी है कि भाई वो जो भी कंज्यूमर उसको खाता है उसका एक्चुअल में अवेलेबिलिटी उसको कितनी होती है, उस तरह की स्टडी हमारे सिस्टम से हम नहीं कर पाते हैं। इसी तरह से बायोमार्कर का रिस्पॉन्स क्या आता है और उसका ओवरऑल हेल्थ पर उनके नतीजे जो आते हैं उनका मूल्यांकन कैसे करें कि आपका नॉर्मल भोजन करता है और उसमें जो बायोफोर्टिफाइड जो भोजन करता है तो उससे कितना उसके हेल्थ पर उसका असर पड़ता है, उसकी स्टडीज हम ICMR के साथ मिलकर साइंटिफिक तरीके से करेंगे।
1: जी, आपने बड़ी महत्वपूर्ण बातें बताई, लेकिन हम आपसे ये भी समझना चाहेंगे कि वो कौन सी किस्में या फसलें हैं जिन पर काम हो रहा है जिससे कि ज्यादा मात्रा में पोषण मिल सकता है, और बायोफोर्टिफाइड फसलों के उन किस्मों के बारे में थोड़ा विस्तार से बताएं, और खासतौर पर किसान उन फसलों को पैदा करने की ओर प्रोत्साहित हों इस बारे में भी क्या कुछ ICAR की तरफ से कुछ काम हो रहा है?
2: हाँ बिल्कुल, बहुत अच्छी आपने ये प्रश्न पूछा। अभी हम हाल में जो है 16 खाद्यान्न फसलों में और 16 ही बागवानी फसलों में बायोफोर्टिफिकेशन पर कार्य कर रहे हैं, तो जो उसमें मुख्य उद्देश्य यही है कि जिन जिन फसलों में, जैसे जो आमतौर पर जितने भी पोषक तत्व, जैसे प्रोटीन है, आयरन, जिंक है,

0: और कुछ एक में जो एंटी न्यूट्रिशनल फैक्टर्स हैं उनको भी रिमूव करने का, क्योंकि उनका भी स्वास्थ्य पर जो है विपरीत प्रभाव पड़ता है। तो अभी तक हमने पिछले जो 11 वर्षों में 203 बायोफोर्टिफाइड किस्मों का विकास किया, जिसमें जैसे मैंने बताया 16 खाद्य फसलों की 187 किस्में हैं, जिसमें चावल की 16 किस्में हैं, गेहूं की 70 हैं, जौ की 1 है, मक्का की 43 हाइब्रिड्स हैं, बाजरा के 18 हाइब्रिड्स हैं, रागी के 4 हैं, कुटकी की 2 किस्में हैं, कंगनी की 1 है और मसूर की 2 तथा चना और फावा बीन की 1-1 किस्में हैं।
1: अंत में थोड़ा सा ये भी बताएं कि किसानों तक इनके बीजों को पहुंचाने के लिए, किसान इन फसलों को उगाने के लिए प्रोत्साहित हों, इस मामले में क्या कुछ किया जा रहा है?
0: इस मामले में हमने निश्चित रूप से पिछले ये माननीय आपके 8-9 वर्षों में काफी प्रयास किए। तो बीज का जब किसान तक बीज जाता है तो उसकी पहली श्रेणी होती है प्रजनक बीज का उत्पादन, जो कि हमें विभिन्न राज्यों से और सीड प्रोडक्शन की एजेंसी से उसको आईसीआर में प्राप्त होता है मिनिस्ट्री के द्वारा, कृषि मंत्रालय के द्वारा। तो उनको हम जितनी भी बायोफोर्टिफाइड किस्में हैं, जब हम इसका स्टेट का सीड रोलिंग प्लान बनाते हैं, जो ब्रीडर सीड के लिए जब डिस्कशन होता है स्टेट्स की सीड एजेंसी, प्राइवेट सेक्टर और जितने भी जो बीज उत्पादक होते हैं, पब्लिक एनजीओ हैं, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है, नेशनल सीड कॉरपोरेशन है, तो हम उनसे डिस्कस करते हैं और हमारा एक यही प्रयास रहता है कि वो ज्यादा से ज्यादा बायोफोर्टिफाइड किस्मों के इंडेंट दें ब्रीडर सीड उत्पादन के लिए। उसके अलावा जो हमारा नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन है मिनिस्ट्री ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर का, उसमें भी एनएफएसएम में भी जो बायोफोर्टिफाइड किस्मों के लिए एक विशेष उसको प्रोत्साहन देने के लिए एक घटक रखा गया है, ताकि किसानों के पास ज्यादा से ज्यादा उसका बीज पहुंचे। फार्मर्स के लिए हम अवेयरनेस प्रोग्राम जितने भी दूरदर्शन के द्वारा, रेडियो के माध्यम से और हमारे केवी के जो काम करते हैं हर डिस्ट्रिक्ट में, कृषि विश्वविद्यालय है, आईसीआर के इंस्टीट्यूट, तो हमारा प्रयास रहता है कि हम बायोफोर्टिफाइड किस्मों के बारे में किसानों को ज्यादा से ज्यादा जानकारी दें और उनका बीज पैदा कर किसानों तक पहुंचाएं।
1: बिल्कुल, तो आईसीएमआर और आईसीएआर की जो ये संयुक्त पहल है प्रिवेंटिव हेल्थ की, कि पोषण के जरिए हम अपने स्वास्थ्य को मजबूत करें देश भर में, तो इस पहल के हमें निश्चित तौर पर आगे आने वाले समय में वो सकारात्मक नतीजे जरूर दिखेंगे, जिस तरह से अभी हमने डॉक्टर डीके यादव के साथ चर्चा की कि किस तरह से बायो फोर्टिफाइड फसलों के जरिए हमारे शरीर तक पोषण को पहुंचाने का काम अब तेजी से हो रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर डीके यादव, आपने विस्तार से हमारे श्रोताओं को सेहत मिशन के जो एग्रीकल्चर का पहलू है, खेती का पहलू है, उसके बारे में विस्तार से बताया।
0: धन्यवाद।
1: हम बात करने जा रहे हैं इस सेहत मिशन पर डॉक्टर प्रियंका बंसल के साथ। डॉक्टर प्रियंका बंसल आईसीएमआर में सीनियर साइंटिस्ट हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में।
2: धन्यवाद।
1: डॉक्टर प्रियंका बंसल, सबसे पहले हम आपसे यही जानना चाहेंगे कि सेहत मिशन में प्रिवेंटिव हेल्थ पर ज्यादा फोकस किया गया है, कि बीमारी से पहले ही देश इतना स्वस्थ हो जाए कि पूर्ण पोषण के जरिए गंभीर बीमारियों तक हम ना पहुंचे, तो कैसे आप देखती हैं इस मिशन के मकसद को?
2: आपने बिल्कुल सही बोला है कि सेहत मिशन पे हम प्रिवेंटिव की तरफ ज्यादा जा रहे हैं, जहां पे हम ये कह रहे हैं कि लोग जहां बीमार होने से पहले ही हम किस तरीके से उनके लाइफस्टाइल में, उनके जीवन के तरीके में हम चेंजेस ला पाएं जो उनको हेल्थ की तरफ ले जाए।
1: जी
2: तो अगर मैं सरल भाषा में बोलूं तो जो ये सेहत मिशन है इसकी सोच बहुत सरल है, जो कहती है कि जैसा भोजन वैसा मन और वैसा तन। तो हम इसमें कोशिश कर रहे हैं कि आम जनता के लिए जो हमारे देश के लोग हैं, हम उनकी थाली को अधिक पौष्टिक कैसे बना पाएं। तो जो हम खाना खाते हैं हम उसी खाने को, उनको कुछ अलग से नहीं करना पड़े, मगर हम उसी खाने में जो न्यूट्रिएंट्स हैं, जो पोषण तत्व हैं, उसको कैसे बढ़ा पाएं। और इसी सोच के साथ ये सेहत मिशन स्टार्ट किया गया है। एक संयुक्त राष्ट्र का मिशन है जिसमें आईसीएआर जो है वो अपने बायो फोर्टिफाइड क्रॉप्स और अपनी फसलें
1: जी
2: बनाएंगे जिनमें पोषक तत्व ज्यादा हैं, और उन्हीं चीजों को हम उनका जो वैज्ञानिक प्रमाण है कि उनका स्वास्थ्य पे लाभ क्या होता है वो आईसीएमआर टेस्ट करेगा, और जिससे कि हमारे को पता चले कि कौन सा खाना, कौन सी क्रॉप, कौन सा इनोवेशन जो एग्रीकल्चर में हुआ है, हम उसको बेहतर हेल्थ के लिए यूज कर सकते हैं।
1: जी डॉक्टर प्रियंका बंसल, कुपोषण के हमारे सामने पहले बड़े आंकड़े आते रहे थे, और अब सरकार के पोषण अभियान पहल और तमाम पहलों के जरिए कुपोषण को हम धीरे धीरे खत्म करते जा रहे हैं। सेहत मिशन भारत में कुपोषण को खत्म करने में किस तरह से भूमिका निभाएगा, और साथ ही जो देश में हम सभी में माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की कमी पाई जाती है, इस तरह की समस्या को दूर करने में भी सेहत मिशन की किस तरह से भूमिका होने वाली है?
2: सरकार के जितने भी उन्होंने प्रयत्न करे हैं उससे हम धीरे धीरे कुपोषण के अगेंस्ट लड़ पा रहे हैं, खड़े हो पा रहे हैं और उसको कम कर रहे हैं।

0: हैं। मगर दूसरी तरफ ये भी एक सच बात है कि हमारे देश में नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस जैसे कि डायबिटीज है,
1: जी
0: हाइपरटेंशन है, मोटापा है, ये सब बढ़ रहा है। तो इन्हीं चीजों के लिए ये सेहत मिशन बना है। जैसे मैंने बोला कि इसमें हम क्या करेंगे, जो पोषक फसलें हैं, बेहतर आहार प्रणालियां हैं, इन सबको हम टेस्ट करेंगे और हम ये देखेंगे कि इनको हम अपने राष्ट्रीय कार्यक्रमों में प्रभावी ढंग से कैसे शामिल कर सकते हैं। जो
1: जी
0: हमारे देश में इतने राष्ट्रीय कार्यक्रम है, चाहे वो कुपोषण को लेकर है, अनीमिया को लेकर है, उनमें हम क्या बदलाव ला सकते हैं फूड से रिलेटेड, जो कि सेहत हमें बताएगा और इससे हम अनीमिया, कुपोषण और गैर संचारी रोगों की रोकथाम में हमें मदद मिलेगी। तो सरल शब्दों में स्वस्थ खेत से स्वस्थ भारत हमारा मिशन है।
1: जी तो जो स्वास्थ्य के मानक हैं, हेल्थ इंडिकेटर्स हैं, आपको क्या लगता है कि आगे आने वाले सालों में सेहत मिशन के जरिए उसमें हम सुधार देख पाएंगे, जिससे कि सूक्ष्म पोषण लोगों तक जब इस मिशन के जरिए पहुंचेगा तो क्या प्रभाव देखने को मिल सकता है भविष्य में?
0: मुझे पक्का यकीन है कि इस मिशन से और इससे जो हम डेवलप कर पाएंगे फसलें या मॉडल, हम किस तरीके से फार्मर्स की हेल्थ पे भी काम कर रहे हैं, किसान भाइयों की हम हेल्थ पे भी इस मिशन के अंडर काम कर रहे हैं, तो इससे जो मुझे लगता है कि एक तो हम माइक्रो न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी, जिसकी आपने भी बात की थी, चाहे वो आयरन हो, विटामिन डी है, कैल्शियम है, जिसमें हमारे देश में कई लोगों में कमी पाई जाती है, हम उसको एड्रेस कर पाएंगे। और अनीमिया या जो भी आप माइक्रो न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी की बात करते हैं, वो हमें उस तरीके से दिखती नहीं है, मगर वो हमारी वर्क प्रोडक्टिविटी, हमारा जो डेली का रहना सहना, काम, इन सबको इफेक्ट करता है, उसको कम करता है। तो माइक्रो न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी हम ये मानते हैं कि इस मिशन से हम उसको रोक पाएंगे, उसको कम कर पाएंगे डेफिशिएंसी को। दूसरा, कुपोषण को हम इससे देख पाएंगे। और तीसरा, जो हमारा बड़ा एक इसमें हम जो देख रहे हैं वो है नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस को, हम इसमें इस तरीके का देख रहे हैं कि क्या कोई फसल ऐसी है जो ग्लाइसेमिक इंडेक्स, जिससे आपका जो खून में शुगर की मात्रा
1: जी
0: है वो पता चलती है, वो आपकी कम रेज हो उसको खाने से, या फिर आपका जो रक्तचाप है वो कम हो उस चीज को खाने के लिए। तो हम नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस जो हमारे देश में अभी बढ़ते हुए की तरफ है, वो हम किस तरीके से कम कर पाए।
1: हमने अभी थोड़ी देर पहले बातचीत की थी ICAR के उप महानिदेशक, जिन्होंने हमें बताया था कि किस तरह से फसलों के जरिए पोषक तत्वों की कमी को पूरा किया जाएगा। हम ICMR की भूमिका के भी बारे में थोड़ा संक्षेप में आपसे जानना चाहेंगे कि तकनीक के स्तर पर या चिकित्सा के स्तर पर ICMR की क्या भूमिका होने वाली है इस मिशन में?
0: देखिए, जैसे कि आपको यादव सर ने बताया कि ICAR ने क्रॉप्स बनाए हैं, फसलें बनाई हैं जो कि नॉर्मल फसलों से ज्यादा पौष्टिक हैं, मगर उनका जो हमारे देश में और हमारे देश के राष्ट्रीय कार्यक्रम जो है उसमें वो नहीं आ पाए हैं अभी तक। उसका रीजन ये है कि उसके साथ वैज्ञानिक प्रमाण नहीं जुड़ पाया है कि इसका स्वास्थ्य में लाभ क्या है। कि फसल तो बन गई, मगर उनको लोगों को खिलाकर उसका जो असर देखना है कि क्या असर हुआ माइक्रो न्यूट्रिएंट्स पे, कुपोषण पे, वो हमारे पास अभी सीमित है। तो इस मिशन में ICMR का रोल है वो वैज्ञानिक प्रमाण को निकालना, उसको एविडेंस को जनरेट करना कि इसका स्वास्थ्य लाभ क्या है। तो हमारी जो भूमिका है, क्योंकि ICMR का जो रोल है वो यही है कि हेल्थ का, स्वास्थ्य का एविडेंस जनरेट करना, क्या अच्छा है, क्या बुरा है, कितना खाना चाहिए, ये हम सेहत में इसी उस पे चलेंगे।
1: बहुत धन्यवाद डॉक्टर प्रियंका बंसल, आप कार्यक्रम में जुड़ी।
0: धन्यवाद।
1: श्रोताओं, ये कार्यक्रम आप हमारे YouTube चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल और हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी सुन सकते हैं।
2: मंथन।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार।
1: आकाशवाणी का ये श्री विजयपुरम केंद्र है। रात के 10 बजे है, प्रस्तुत है फिल्मी गीतों का कार्यक्रम संदेशे आते हैं।

स्वागत है। अगर आप भी हमारे ज़रिए अपना मनपसंद गीत सुनना चाहते हैं तो आपके फ़ोन में टाइप कीजिए फिल्म का नाम, गीत के बोल, आपका नाम और पता, और हमें संदेश भेजिए इस नंबर पर। हमारा नंबर है 9474234000। नंबर एक बार फिर नोट कर लीजिए, 9474234000। आज के इस कार्यक्रम में सबसे पहला संदेश हमने शामिल किया है दिगलीपुर से काशिफ का।

चांद छुपा बादल में शर्मा के मेरी जाना, यह गीत सुनवाने का संदेश हमें भेजा है सिप्पीघाट से रजनी ने। सुनिए रजनी जी, आपका मनपसंद गीत।

दिल का रिश्ता फिल्म के इस गीत के साथ ही आज का हमारा कार्यक्रम संदेशे आते हैं अब यहीं समाप्त होता है। आकाशवाणी का ये श्री विजयपुरम केंद्र है। मौसम कार्यालय से प्राप्त सूचना के अनुसार अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह के अनेक स्थानों पर हल्की से बहुत हल्की वर्षा हुई। जन सेवाओं और मछुआरों को सूचित किया जाता है कि हवा की गति 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से होगी। मछुआरों को सलाह दी जाती है कि उन्हें समुद्र में न जाएं। कल सवेरे तक के मौसम संबंधी पूर्वानुमान में बताया जाता है कि अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह के अनेक स्थानों पर हल्की सी मध्यम वर्षा होगी या गरज के साथ छींटे पड़ेंगे। ये था मौसम का हाल। इस समय रात के 10:30:30 हुए हैं। आज की हमारी दूसरी सभा अब यहीं समाप्त होती है। प्राइमरी चैनल पर कल सवेरे 5:23 पर हम अपनी पहली सभा में, जबकि FM 100.9 MHz पर कल सुबह 6 बजे फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। जय हिंद।

मीडियम वेव 438.6 मीटर अर्थात 684 किलोहर्ट्स पर ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। आज बुधवार है, शक संवत 1948 की ज्येष्ठ माह की छठवीं तिथि, तदनुसार 27 मई सन 2026। समय मिला लीजिए, इस समय सवेरे के 5:28.35 वे हैं। हमारी आज की पहली सभा में आप सभी श्रोताओं का हार्दिक स्वागत है।

सवेरे के 5:30 और 32 सेकंड हुए हैं। सभा की शुरुआत अनमोल विचार के साथ। ज्ञान एक ऐसा दीपक है जो दूसरों को रोशनी देने से खुद और अधिक प्रकाशित होता है। जो व्यक्ति अपना ज्ञान बांटता है वो समाज में जागरूकता, प्रेरणा और नई सोच का संचार करता है। ज्ञान वो धन है जिसे जितना बांटो उतना ही बढ़ता है। अनमोल विचार के पश्चात अब आरंभ होता है हमारा भक्ति रस का कार्यक्रम प्रभाती वंदना। सबसे पहले श्रोताओं लीजिए सुनिए मातृ वंदना।